FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सासाराम है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 40 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। विविध भारती के कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग, डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर उपलब्ध हैं। इन सभी साधनों के जरिए आप विविध भारती के कार्यक्रम 24 घंटे और दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

पहले सुनते हैं आज का चिंतन। मुंशी प्रेमचंद का कथन, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना ठीक नहीं। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, आज भाग 267। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से शुरू हो रही है एक नई श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर आप सुन सकते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। सुबह 7 भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम दोबारा दिन में 2 सुना जा सकता है। सुबह 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है अभिनेत्री मीना कुमारी पर।

सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है मिसमैच, लेखिका डॉक्टर जया आनंद। 11:30 पर मैटिनी शो कार्यक्रम होगा। जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति थी श्री कांबले। 12:05 पर यादों की महफिल, दिन में 1 बजे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम होगा। 3 बजे मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम होगा। आज नाटक सुनवाया जाएगा विवाह का प्रस्ताव। मूल रूसी कहानी एंटोन चेखव की, रूपांतरकार उग्रसेन, निर्देशक मधुप शर्मा। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत शाम 4 बजे फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर जो संगीत सरिता कार्यक्रम प्रसारित होता है उसका पुनः प्रसारण होता है शाम 6:45 पर। वर्षा चौमासा श्रृंखला की पहली कड़ी सुनिएगा शाम 6:45 पर। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल, संगीतकार जयदेव द्वारा प्रस्तुत जयमाला कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। 7:45 पर ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा। पिसनहारी का कुआं, सुनो कहानी श्रृंखला में आज इस कहानी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा हवा महल के अंतर्गत रात 8 बजे। वाचन अमरकांत दुबे।

राष्ट्रपति हर्षवर्धन गवई। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भगवान दादा पर। रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे मैटिनी शो में क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति श्री कामले की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान, आज भाग 267।

पवन पुत्र हनुमान सुग्रीव के गुप्तचर के रूप में श्री राम लक्ष्मण के पास गए थे, किंतु उन्हें अपने इष्ट देव को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। सीता हरण की घटना सुनकर वे तुरंत श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले आए, जिनकी असंख्य वानर सेना के लिए जगत जननी सीता को ढूंढ लेना असंभव नहीं। सुग्रीव ने विलाप करती परवश सीता को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हाराम हाराम कहकर रोती बिलखती सीता का एक वस्त्र वहां गिरा था। श्रीराम को धीरज बंधाते हुए सुग्रीव ने वह वस्त्र खंड उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें श्रीराम के विश्वास और मैत्री का गौरव प्राप्त हुआ। जब श्रीराम ने सुग्रीव से उनके वन में निवास करने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अत्यंत स्नेही भाई बाली उनका शत्रु बन बैठा। उसने न केवल उनका राज्य बल्कि पत्नी तक छीन ली। यह सब उस मायावी राक्षस के कारण हुआ, जिसका पीछा करते बाली ने यह कहकर गुफा में प्रवेश किया कि यदि वो राक्षस का वध करके 15 दिनों में लौट कर ना आवे तो उन्हें मृत मार लिया जाए। सुग्रीव ने पूरे 1 माह तक भाई की प्रतीक्षा की और गुफा से बाहर आती लहू की धार देखकर यह मान लिया कि बाली की हत्या हो गई।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता के श्रोताओं नमस्कार। आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वर्षा चौमासा। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: शुभा जी आपका तो हम सभी, मैं व्यक्तिगत रूप से, विविध भारती परिवार की ओर से और विविध भारती के अनगिनत श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं वर्षा चौमासा, तो इसकी भूमिका में तो मैं अगर ज़्यादा बोलूँ तो अच्छा नहीं रहेगा, आप ही कुछ समझाएं बताएं कि आपके मन में क्या क्या सारी बातें हैं, हम कड़ी दर कड़ी बातचीत करते जाएंगे।
1: पहले तो ये बात आपको याद दिला दूं कि उत्तर भारतीय संगीत का और उत्तर भारतीय संगीत के जो विभिन्न प्रकार हैं, चाहे वो शास्त्रीय हों या उपशास्त्रीय हों या लोक संगीत हो, सभी का ऋतु से सघन संबंध रहा है। ये सत्य है एक, जो कि सर्वविदित है, सर्वमान्य है, तो इसे बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता भी नहीं। और जो वर्षा का एक आप कह सकते हैं विशेष स्नेह रहा है संगीत के साथ, उसके बारे में भी सबको पता ही है। बल्कि मज़े की बात यह है कि बारिश ना हो सामान्य जीवन में या कम हो तो अकाल का डर
0: तो
1: पड़ जाता है,
0: आंखों से शुरू हो जाती है।
1: नहीं, अकाल का डर हो जाता है। यदि ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ का कहर ढा सकता है। लेकिन जो रचनात्मक लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो कि कलाकृति करते हैं, उनके लिए बारिश हो ना हो, कम हो, बूंदाबांदी हो, मूसलाधार हो, वो उसके बारे में लिखते हैं, उसे संगीत में ढालते हैं और अलग अलग प्रकार का साहित्य, अलग अलग प्रकार की रचनाएं हमें मिलती हैं। तो इससे लगता है कि वर्षा और ये जो चार मास हैं जिसमें कि बारिश हमको मिलनी चाहिए, यदि कृषियों के लिए लाभदायक हम मानते हैं इसे, तो इस दौरान शायद इतनी प्रेरणा मिली है कलाकारों को कि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा खजाना है हमारे पास जिसके जिसमें कितने भी आप गोते लगा लें तो कभी उसका अंत नहीं मिलता, इतना गहरा है वो खजाना।
0: और इसी खजाने को हम टटोलते जाएंगे कड़ी दर कड़ी। शुभा जी, वर्षा काल या बारिश या वर्षा ऋतु कहने से बंदिशें जो आपसे अब हम सुनेंगे, बहुत से ऐसे कुछ शब्द जो मन को बड़ा मोह लेते हैं। आप तो कह रही थी कि बरखा हो ना हो, बूंदाबांदी हो या अकाल हो, तो ये जो साहित्यिक रूप है शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत

0: में या लोक संगीत में बारिश का, उसको लेके कि घने बादल, बादलों की उमड़ घुमड़, काली घटा, दादुर मोर पपीहे की बोली, और बिजरी छाने वाली बदरी, और ये बदरी न सिर्फ आकाश में, आंखों में भी बदरी छा जाती है वाली बात, तो संयोग और वियोग, श्रृंगार की बातें, काफी सारी चीजें आप हमसे बतियाती जाएंगी और हमारे सभी श्रोताओं को ये श्रृंखला बहुत ही पसंद आएगी। आज हम किस राग से या किस पद से आरंभ कर रहे हैं?
1: मैंने सोचा है कि आज जो पहली प्रस्तुति मैं करूं वो राग शुद्ध मल्हार की एक मध्यलय रचना आपको सुनाना चाहूँगी। शुद्ध मल्हार न केवल रागांग राग है, यानी कि शुद्ध मल्हार के जो अंग हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रख के अलग अलग मल्हार के प्रकार, जो कि बहुत विभिन्न प्रकार हैं हमारे पास, इसका कुछ अंश लेके उनकी रचना की गई है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जनक सा साधक माना जा सकता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो विशेष स्वर संगतियां हैं, वो आपको अन्य मल्हारों में मिलेंगी। प्राचीन राग भी है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ में इसे मल्हार कहा गया है, कुछ में मलार कहा गया है, कुछ में मल्लारी कहा गया है, कुछ में मेघ भी कहा गया है, मेघ मल्हार भी कहा गया है। लेकिन जो मुझे तालीम में बताया गया है कि राग शुद्ध मल्हार जो है वो ही रागांग राग है, और इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगी। बिलावल थाट का राग है ये, और इसमें जो विशेष स्वर संगतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मल्हार का आप कह सकते हैं कि जो प्राण स्वर समूह है वो एक ये है, मारे रे पा सामा

0: तो ये शुद्ध मल्हार का स्वरूप हमें बताया गया है जी। और इसमें एक तीन ताल में निबद्ध रचना मैं सुनाना चाहूंगी, धूम धाम ते आई बदरिया।
1: तो धूम धाम हाँ, ते आई बदरिया, वाह।
0: जो स्वर में जो इसके जो अक्षर हैं इसमें ही एक एक भारी भरकम एक चीज है, धूम धाम ते आई बदरिया, गरज बरसे झहरे झूम झूम।
1: झहरे
0: जी मतलब जो एक झरने की तरह जैसे फूटता है उस तरह, गरज बरसे झहरे झूम झूम। अंतरा कहता है मोरवा शोर करे पपिहा पुकारे,
1: वही जो मोर शोर करत है
0: जी
1: जी,
0: मोरवा शोर करे पपिहा पुकारे, तापे पवन चलत सूम सूम।
1: हाँ,
0: तो ये रचना सुनाऊंगी
1: जी। ये ताल कौन सी?
0: तीन ताल,
1: तीन ताल में निबद्ध है। और शुभा जी, शुद्ध मल्हार किस जाति का राग है?
0: इसमें पांच स्वर
1: स्वर
0: लगते
1: है
0: हैं तो
1: तो ये
0: औड़व जाती है।
1: औड़व जाती है, तो मैं तो उत्कंठित हूँ ही, सुनाइए ना।

0: श्रोता मित्रों, आज की कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभा दीदी से हम अगली कई कड़ियों में मुलाकात करेंगे। आज शुभा जी को भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगीतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर।

0: दीपक नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अगस्त की पहली तारीख, और आप जानते हैं कि जब पहली तारीख होती है तो भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में पहला गाना कौन सा होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस गाने को बनाने वाले लोग कौन हैं? कमर जलालाबादी, बेमिसाल गीतकार जिन्होंने ये गाना लिखा और इसे स्वरबद्ध किया, हिंदी और मराठी के बहुत ही शानदार संगीतकार सुधीर फड़के ने किशोर कुमार की आवाज। और अगस्त के महीने का आगाज इस गाने के साथ कर रहे हैं। ये भी जरा गौर कीजिए कि 8 महीने 7 महीने बीत गए और 8वां महीना शुरू हो गया साल का।
1: दिन है सुहाना

जल्दी घर जरा जल्दी से आना शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना हमें सिनेमा दिखाना करो ना बहाना बहाना बहाना करो ना बहाना।

वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना। आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

मेहमान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाता ने कत साला।
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना, जाना, वापस नहीं जाना।

खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख फिल्म का ये गाना और अगस्त की ये पहली तारीख कुछ बड़ी हस्तियों की याद दिलाती है और उनमें से एक याद आती है महजबीन बानो की, जो मीना कुमारी के नाम से फिल्मी दुनिया में जानी गईं और उनका आज जन्मदिन है। बस इतनी सी बात कि केवल 38 बरस जी मीना कुमारी।

भाभी की चूड़ियां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना। पंडित नरेंद्र शर्मा की बोल थी और संगीत सुधीर फड़के का था। आशा भोसले का स्वर, साहिर लुधियानवी, रवि। फिल्म का नाम है काजल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज का दिन याद का दिन है जाने माने शायर अली सरदार जाफरी का भी। यूं तो फिल्मों से उनका बहुत ज्यादा लंबा नाता नहीं था। अली सरदार जाफरी वो शायर हैं जिन्होंने वो नज्म कही, जब नहीं आए थे तुम तब भी तो तुम आए थे, आंख में नूर और दिल में लहू की सूरत। पर भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक ऐसा गाना जो जाफरी साहब और मजरूह सुल्तानपुरी ने मिलकर लिखा है, फिल्म का नाम फुटपाथ। तलत महमूद की आवाज, संगीत खयाम का।

फुटपाथ फिल्म का ये गीत आपने सुना। बोले बिसरे गीत कार्यक्रम आप विविध भारती से सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि बोले बिसरे गीत कार्यक्रम के अलावा आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 बजे, और आप उस कार्यक्रम में भी पुराने गाने सुन सकते हैं। आज जाने माने अभिनेता भगवान दादा का भी जन्मदिन है, और ये गाना है उनकी पहचान। सन 1951 फिल्म अलबेला।

एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो।

0: यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

भाई अलबेला फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना, लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजें थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत सी रामचंद्र का था। इसी के साथ आज का बोले बिसरे गीत कार्यक्रम हम यहीं खत्म कर रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के, ठीक सुबह 7:30 पर उसका आगाज करेंगे। दिन की इस भागदौड़ में विविध भारती के संग बने रहिए, देश की सुरीली धड़कन।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते सुप्रभात, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का ऐसा कथन है कि कमज़ोर न बने, शक्तिशाली बने और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखें।

श्रोताओं, आज 1 अगस्त है और एक अगस्त को जिया कुछ घटनाएं घटी हैं, तो आइए डालते हैं इन पर एक संक्षिप्त निगाह। तो आपको बता दें कि 1 अगस्त को 1920 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। एक अगस्त 1957 को भारत में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1975 में 1 अगस्त को दुर्गा बनर्जी पहली पेशेवर महिला कमर्शियल पायलट बनी। 1 अगस्त को 2004 में श्रीलंका ने भारत को 25 रनों से हराकर एशिया कप जीत लिया था। 1 अगस्त 2008 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ने भारत के विशेष निगरानी समझौते को हरी झंडी दी। और अब एक नज़र डालते हैं 1 अगस्त को जन्मे कुछ प्रसिद्ध शख्सियत पर। तो आपको बता दें कि 1 अगस्त को 1899 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी और स्वतंत्रता सेनानी कमला नेहरू का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद निसार का जन्म भी 1 अगस्त को 1910 में हुआ। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक भगवान दादा का जन्म भी 1913 में आज ही के दिन हुआ था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल का जन्म भी 1955 में आज ही हुआ था। बात करें साहित्यकारों की तो प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र का जन्म 1939 में आज ही के दिन हुआ। आज ही की वो तारीख रही जब सुप्रसिद्ध, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री मीना कुमारी जी का 1932 में जन्म हुआ। जी हाँ, आज ही की वो तारीख रही 1 अगस्त जब 1932 में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी जी का जन्म हुआ। और आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका जन्म भी 1882 में आज ही के दिन हुआ था।

और अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं आज 1 अगस्त को दिवंगत हुए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो आपको बता दें कि मुगल दरबार में बादशाह अकबर के प्रसिद्ध कवियों में से एक उर्फी शिराजी का निधन 1591 में आज ही के दिन हुआ था। पंजाब के महाराज रणजीत सिंह की 5वीं रानी और उनके सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह की माँ जिंदा रानी का निधन 1863 में 1 अगस्त को हुआ। हिंदी के महान और प्रथम तिलस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री का निधन भी 1913 में आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक, भारतीय राष्ट्रीयवादी नेता, महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य के नाम से भी हम जानते हैं, जी हाँ, इनका निधन 1 अगस्त को 1920 में हुआ। तो आज इनकी पुण्यतिथि है और इन्हें हम शत शत नमन करते हैं।

तो ये थी थोड़ी सी जानकारी 1 अगस्त के बारे में। और अब सुनवाते हैं आपको एक भक्ति रचना, केदारनाथ इस फिल्म से हमने इसे चुना है। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार अमित त्रिवेदी और गायक स्वर भी है अमित त्रिवेदी का।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

संदेश के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में अब आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। रोहतास जिले के करूप में, जी हां करूप गांव में, केंद्रीय विद्यालय के समीप 15 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक आयुष अस्पताल। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की दिशा में रोहतास जिले को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सासाराम में 50 बेड का अत्याधुनिक आयुष अस्पताल खोलने की मंजूरी दे दी है। आयुष मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इसके लिए विभागीय SOP भी तैयार कर लिया गया है और उपयुक्त भूमि के चयन की कवायद भी शुरू हो गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव, आयुष विभाग के राज्य समन्वयक, जिला भू अर्जन पदाधिकारी रोहतास सहित अन्य ने सासाराम प्रखंड के दुर्गापुर, बसंतपुर और शिवसागर प्रखंड के करूप गांव में चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया है। कैमूर जिला के DM के जनता दरबार में 17 आवेदन आए। DM ने समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया था। इसमें 17 आवेदन प्राप्त हुए जिनकी सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित कल किया गया। आवेदनों में अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ से संबंधित 2 मामले, भूमि सुधार उप समाहर्ता भभुआ से संबंधित 2 मामले, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल भभुआ से संबंधित 2 मामले तथा कैमूर से संबंधित 7 मामले शामिल रहे। कैमूर जिला में प्रेमचंद जयंती पर कल आयोजित हुई संगोष्ठी

साहित्य और समाज पर भी की गई चर्चा। जी हाँ, कैमूर के सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय में शुक्रवार यानी कल मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। सत्र संयोजक डॉक्टर वंशीधर उपाध्याय ने प्रेमचंद के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि उनके बचपन का नाम धनपत राय था और जब उनकी लेखनी पर अंग्रेजी शासन द्वारा पाबंदी लगा दी गई तब उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया था। आगे चलकर वे इसी नाम से हंस पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य करने लगे। प्रेमचंद ने साहित्य और समाज के मापदंड को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने समय में यानी कि साहित्य के मध्यकाल में जो कार्य किया वो आज भी सराहनीय है और साहित्य जगत में मील का पत्थर साबित है।

कैमूर जिले में खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य इत्यादि सेक्टरों से संबंधित 30 से अधिक ट्रेंडों में कौशल प्रशिक्षण संचालित किए जाने के राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। जिला कौशल समिति की कल हुई बैठक में कौशल विकास योजना को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। जिला पदाधिकारी कैमूर के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त कैमूर की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित मां मुंजेश्वरी सभागार में जिला कौशल समिति की कल बैठक हुई। इसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रमों से संबंधित बातों पर चर्चा हुई और हर हाल में युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने पर भी चर्चा की गई। साथ ही नवीन तकनीकों एवं उभरते रोजगारोन्मुखी ट्रेंडों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन 2 दिनों के भीतर जिला नियोजन पदाधिकारी कैमूर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए भी जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया।

कैमूर जिले में हरियाली जिंदा रहे इसके लिए 20,000 सीड बॉल तैयार किए जा रहे हैं। भभुआ शहर के वार्ड संख्या 9 के रहने वाले पर्यावरण प्रेमी ने अपनी टीम के सहयोग से सीड बॉल तैयार करने का कार्य किया है। रोहतास जिले के डालमिया नगर महिला कॉलेज में रोजगार उत्सव में कल 300 छात्राओं का साक्षात्कार लिया गया। 10 कंपनियों ने लिया हिस्सा। चयनित छात्राओं को 14,000 से 22,000 रुपए तक प्रति माह मिलेगा वेतन। जी हां, रोहतास जिले के महिला कॉलेज डालमिया नगर डेहरी ऑन सोन में कल शुक्रवार को छात्राओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय रोजगार उत्सव का कल आयोजन किया गया। नांदी फाउंडेशन के महिंद्रा प्राइड क्लासरूम के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज की करीब 300 पंजीकृत छात्राओं ने भाग लिया। इस रोजगार उत्सव में 10 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लेकर छात्राओं का इंटरव्यू लिया तथा उनके शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन किया। इस दौरान बताया गया कि चयनित छात्राओं के लिए कार्यस्थल बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, बेंगलुरु और पुणे सहित राज्य होंगे।

कल शुक्रवार को रोहतास जिले के शिवशाखर प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गई। शिवशाखर प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवशाखर के अलावा मनरेगा पीओ, कृषि पदाधिकारी, विद्युत विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कमी, प्रखंड के लगभग सभी मुखिया, बीडीसी और जिला पार्षद जो भी अनुपस्थित रहे, उन पर कार्रवाई के लिए भी बीडीओ द्वारा

लिखा गया। बैठक के दौरान 20 सूत्री के सदस्य ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ शिकायतें भी की और साथ ही बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों की भी लंबी फेहरिस्त रही।

चेहल्लुम पर्व को लेकर शांति समिति की कल रोहतास जिले के विक्रमगंज में की गई बैठक और अफवाहों से दूर रहने की गई है प्रशासन द्वारा अपील। जी हां, चेहल्लुम पर्व की शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्नता को लेकर कल शुक्रवार को रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ज्ञातव्य है कि चेहल्लुम पर्व 4 अगस्त को मनाया जाना है। बैठक में अनुमंडल पुलिस अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी सहित प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। शांति समिति के सदस्यों ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। शांति समिति के सदस्यों ने और साथ ही प्रशासन ने भी लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। और श्रोताओं, इसी के साथ स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के बाद अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत, जिसे हमने चुना है आरक्षण फिल्म से। मीठी सी आवाज़ श्रेया घोषाल की है, मोहित चौहान ने इनका साथ दिया है। गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

सीधे पॉइंट पे आओ ना। जी हाँ, हम भी सीधे पॉइंट पर आते हैं और आपको ले चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की दुनिया में। और हमारे पास इस चार अखबार आ चुके हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। तो सबसे पहले हम लेते हैं हिंदुस्तान अखबार में छपे हुए खबर को। मुख्य पृष्ठ पर छपा है कि राज्य यानी बिहार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में मानक से 65,413 शिक्षक अधिक हैं। ऐसे शिक्षक अब आंगनबाड़ी बाल वाटिका में तैनात किए जाएंगे। और आपको एक गमगीन खबर भी बता दें। जी हाँ, हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा का कल निधन हो गया। केंद्र को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कल शुक्रवार को केंद्र सरकार को विदेश मंत्रालय में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। भारत मालदीव में UPI डिजिटल भुगतान सेवा अब शुरू। जी हाँ, यह पहल दोनों देशों के बीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग की दिशा में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया गया है। और अब बिहार राज्य में सिपाही और जमादार वाहन जांच चालान नहीं कर सकेंगे, पकड़े गए तो होगी कानूनी कार्रवाई। दरोगा या उससे ऊपर के पदाधिकारी ही अब काटेंगे चालान, सिपाही का काम सिर्फ ट्रैफिक नियंत्रण। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर लिखता है कि बिहार में 1.6 लाख शिक्षक सरप्लस अब तक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगले 5 साल में आएगी 1 लाख शिक्षकों की बहाली। और चलते चलते अब लेते हैं दैनिक जागरण की खबर। जी हाँ, खेल जगत की ये खबर है। राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे प्रीति पवार और अंकुश पंधाल। मुक्केबाजों ने दिखाया है स्वर्णिम सपना। अस्मिता हर्ष और यामिनी ने जूडो के फाइनल में पहुंचकर पक्के किए अपने पदक। और चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं मौसम पर। तो बता दें आपको कि रोहतास जिला का आज का मौसम कैसा रहेगा। तो रोहतास जिला में आज मुख्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तो अब इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम से मैं आप सभी से चाहती हूँ इजाज़त। नमस्कार। लेकिन चलते चलते इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का नाम बताना चाहूँगी। जी हाँ, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

नमस्ते रोहतास, ये प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात। तब तक कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: गुड मॉर्निंग। और लीजिए, अब समय हो चुका है देश विदेश की जानकारी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार का। लीजिए सुनते हैं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
4: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है।

0: से एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
3: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार

0: सरकार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
2: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। देशभक्ति संगीत में हम आपको आज सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ एक देशभक्ति गीत, जिसकी धुन बनाई है आर्को ने और फिल्म है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया।

ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के? तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जी हाँ श्रोताओं, ये बेहद ही खूबसूरत देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से। जी हाँ श्रोताओं, वतन की खुशबू से ही महकते हैं हम, वतन की खुशबू से ही महकते हैं हम, और इसी भूमि पे पावन भूमि

पे हमने जन्म लिया है तो ये हमारा सौभाग्य है। और हम सब में देशभक्ति का जज्बा इतना ज़्यादा है कि देश के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। और हम सबका हमारे देश से ये प्यार यूं ही हमेशा बना रहेगा। और अब इसी के साथ देशभक्ति संगीत का हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपके कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पत्र पर आधारित इस फरमाइशी कार्यक्रम में आप सभी के पत्र हम तक पहुंच चुके हैं, तो पढ़ते हैं आप सभी के पत्रों को। जी हाँ, ये पहला पत्र जो हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत में, ये आया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की तरफ से। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश आई है अनाड़ी फिल्म के गीत के लिए। जी हाँ, क्या मौसम आया है, बिल्कुल बड़ा ही सुहावना मौसम आ गया है। तो हम आपकी जो ये प्यारी सी फरमाइश है इसे ज़रूर पूरी करेंगे, और इसी के साथ कुछ और श्रोताओं के नाम भी इसी गीत में जोड़ लेते हैं। तो आप सब हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल। मौताला से हैं कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख। करजा रिसोर्ट से हैं कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख। और आप हैं हमारे नियमित श्रोता, जी हाँ, गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, पड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान। और आप हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेज महाराष्ट्र के अभिजीत गहवाड़कर, सरिता और प्रिंस एकांश। बदलापुर मुंबई से हमें ये पत्र लिखकर भेजा है सिद्धांत, प्रणीता और अर्जुन उर्फ टुकटुक ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हमें खत लिखा वैशाली शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि उर्फ परी ने। तो चलिए, आप सभी श्रोताओं को अब सुनवा देते हैं हम अनाड़ी फिल्म का गीत। उदित नारायण साधा सरगम की मीठी सी आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज़ में मदहोश फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। श्रोताओं, लेकिन हम माफ़ी चाहेंगे आपसे कि ये गीत हम आपको टेक्निकल इशू के कारण नहीं सुनवा पाए पूरा। वैसे इस गीत की फरमाइश जिन श्रोताओं ने की थी उनके नाम हम पढ़ देते हैं। आप हैं कुवात से शेख जफर हसन और राकेश रोशन। आपने मदहोश फिल्म का ये गीत मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना सुनना चाहते थे। आप सब हैं ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से आप सभी श्रोता हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक और पंखुरी। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, एम के गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता ने हमें ये पत्र लिखा है। आप सभी हैं नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख। कलेर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान, निखत प्रवीण, नूर बहल महसौल से हैं हुमैरा, सुमैरा, अबीहा, अरहान, हमजा और मुजम्मिल। तो आप सभी श्रोताओं के लिए हमने मदहोश फिल्म का ये गीत सुनवाया। वैसे तो हम पूरा नहीं सुनवा पाए, लेकिन अगली बार हम आपको ज़रूर पूरा सुनवाएंगे। और इसी के साथ अब लेते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म के गीत के लिए आए हुए फरमाइश को। जी हाँ, इसका टाइटल सॉन्ग सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंगी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हैं वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण और अर्श। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं हम कुछ कुछ होता है फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग, जी हाँ टाइटल गीत, जिसे गाया उदित नारायण के साथ अलका याग्निक ने है, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना जतिन ललित का।

तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूं है कुछ कुछ होता है। जी हाँ, अभी आपने कुछ कुछ होता है फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की सुरीली आवाज़ में। और अब इसी के साथ कार्यक्रम पसंद आपकी में समय हो चला है कि हम आपको सुनवा दें जल्दी से कार्यक्रम का अंतिम गीत। और ये जो अंतिम गीत हमने लिया है उसे लिया है हमने कुली नंबर वन से। कुली नंबर एक फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास के श्रोताओं ने। और आपके नाम हैं मुन्ना भाई मंसूरी, नजबून निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज। तो आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवाने जा रहे हैं और कुछ और श्रोताओं के नाम भी हम पढ़ते हैं इसी गीत में, जिन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। तो चलिए इसी गीत में हम आपको भी शामिल करते हैं। ब्रह्मपुरा मनीगाछी से आप सभी श्रोता हैं अच्छे लाल रॉय, पानो देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। तो लीजिए, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था। जी हाँ, पुराने ज़माने का ये गीत जो हमने काफ़ी सुना है इसकी यादें ताज़ा करते हैं। कुली नंबर वन फिल्म का ये गीत है, आवाज़ अलका याग्निक के साथ इस बार कुमार सानू की है, समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है।

और हमारे नए श्रोता जो इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो वो हमारे कार्यक्रम का पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम पसंद आपकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम पिन कोड 8211115।

0: और अब इसी के साथ पसंद आपकी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार, तो कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।
1: KHz पर थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। राज्य सरकार ने फसलों को जंगली सुअर और घुड़पड़ास से बचाने के लिए किसानों को इनके शिकार की अनुमति दी। और मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, सीवान, कटिहार, अररिया और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया है। यह विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह विधेयक छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। कानून में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल किए गए हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय झा ने संसद से पारित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे छात्रों के लिए ऐतिहासिक बताया। श्री झा ने संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।
1: प्रधानमंत्री जी, डे वन से इस इशू को जब ये घटना हुई, चाहे एग्जाम कराना हो टाइम पर, चाहे कानून लाना हो, चाहे हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना हो, अब इस फील्ड में जहां भी, और क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज क्राइम माना गया, सिर्फ जो पेपर लीक करते हैं नहीं, सारे जुड़े हुए हैं, कोई कॉपी करने के लिए बैठा हुआ है विद्यार्थी, सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। अब इसमें बचेगा नहीं और हार्शेस्ट

0: पनिशमेंट मिलेगा उसको।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। योजना और विकास विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में पटना सहित राज्य के 54 शहरों के विकास के लिए 968 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। विभाग के स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के तहत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत तत्काल इन शहरों के लिए 320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किसानों को घोड़पड़ास और जंगली सुअर से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए इनके शिकार की अनुमति दे दी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के चयनित जिलों के चिन्हित ग्राम पंचायतों में स्थानीय मुखिया को घोड़पड़ास और जंगली सुअर के शिकार की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। घोड़पड़ास और जंगली सुअर मारने वाले व्यक्ति को प्रति शिकार 750 रुपए मिलेंगे। वहीं राज्य सरकार ने जंगली जानवरों के हमले से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा राशि में भी वृद्धि की है। अब जंगली जानवर के हमले में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 1,44,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य में भूमि संबंधी पुराने दस्तावेजों के अनुवाद की सुविधा अब जिला स्तर पर उपलब्ध होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों में कैथी लिपि विशेषज्ञों को सूचीबद्ध किया है। प्रत्येक जिले में एक विशेषज्ञ तैनात किया जाएगा, जबकि दो अतिरिक्त विशेषज्ञ विभागीय मुख्यालय में उपलब्ध रहेंगे। भूमि स्वामी जिला मुख्यालयों पर कैथी लिपि में लिखे पुराने दस्तावेजों का देवनागरी में अनुवाद करा सकेंगे। विभाग ने इस सेवा के लिए 220 रुपए प्रति पृष्ठ का शुल्क निर्धारित किया है। प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर त्रिपाठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर राज्यपाल को परामर्श देंगे। तेल कंपनियों ने व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए की कमी की है। घटी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पटना में 3,227 रुपए से घटकर 3,018 रुपए हो गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत देश भर में 10,000 स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में भी अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। कार्यक्रम में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय चयन पर्षद ने सिपाही चालक भर्ती परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। 4,361 पदों के लिए 24 अगस्त से पटना स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में चालक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस परीक्षा की तिथि, स्थान और प्रवेश पत्र की सूचना 10 अगस्त से परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 11,847 अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए चुना गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रोहतास के विक्रमगंज रेलवे स्टेशन परिसर स्थित सहायक मंडल अभियंता कार्यालय के सहायक अभियंता भोला शंकर कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियंता पर एक एजेंसी की बकाया जमा राशि जारी करने के एवज में इन्वर्टर सेट बैटरी और 7,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। इधर निगरानी विभाग ने औरंगाबाद जिले के रिसियप थाने के दारोगा उमेश कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दारोगा मारपीट के मामले में गलत रिपोर्ट बनाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नेपाल के सुनसरी में दो समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धनुषा और सिरहा जिला में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के कारण जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा तक चलने वाली ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इधर नेपाल के तराई क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के बीच प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुपौल और अररिया जिले सहित सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और एसएसबी की टीम सघन गश्त और जांच अभियान चला रही है। भारत का ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में अपना पहला कांस्य पदक जीता और 10 भारतीय मुक्केबाजों ने अपनी अपनी कैटेगरी के फाइनल में जगह बना ली है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज ने 89.75 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि भारत की यशवीर सिंह ने अपने आखिरी प्रयास में 85.41 मीटर के अपने बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक हासिल किया। भारत 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक समेत 23 पदकों के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है। भोजपुर जिले के बिलौटी पुनर्वास स्थल पर गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने कहा है कि नियमित निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाल में पेयजल की गुणवत्ता के संबंध में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए पुनर्वास स्थल पर स्थापित 6 चापाकल के पानी की जांच की गई। इनमें से वर्तमान में 5 चापाकल पूरी तरह कार्यशील हैं और इनका पानी सही है। भागलपुर जिले में श्रावणी मेला के

फल सुरक्षित एवं व्यवस्थित संचालन को लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहलगांव स्थित बटेश्वर स्थान गंगा घाट, तीन पहाड़ गंगा किनारा तथा घोघा एकचारी वेना पुल पर सुविधाओं का निरीक्षण किया। नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बैंकों और अधिकृत वेंडरों को लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए हैं। अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त छापेमारी के दौरान 9 किलो गांजा बरामद किया गया। इधर बेगूसराय जिले के बरौनी रेलवे जंक्शन के दक्षिणी छोर के पास से राजकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के संयुक्त जांच अभियान में 86 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में मानक से 65,413 शिक्षक अधिक। अखबार लिखता है, आंगनबाड़ी बाल वाटिका पर भी तैनात होंगे शिक्षक। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, सिपाही और जमादार वाहन जांच चालान नहीं कर सकेंगे, पकड़े गए तो होगी कानूनी कार्रवाई। प्रभात खबर ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, भाजपा एमएलसी देवेश की जगह विधान परिषद में मनोनीत होंगे मंत्री दीपक प्रकाश। दैनिक भास्कर ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में गिरफ्तारी को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, हत्या के केस में एसटीएफ सिपाही अक्षय गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। राज्य सरकार ने फसलों को जंगली सुअर और घुड़पड़ास से बचाने के लिए किसानों को इनके शिकार की अनुमति दी। और मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, सीवान, कटिहार, अररिया और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
1: स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आसमान में बिजली के चमकने गरजने कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी प्लास्टिक बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:06 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आइए एक नज़र डालते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर बाद 9:10 पर आप सुनेंगे गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। 9:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र कार्यक्रम आज के फनकार के लिए। सुबह 10 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। हमारे सासाराम केंद्र से आप सुनेंगे 10:05 पर साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। 10:30 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपको भोजपुरी एल्बम लोकगीत। 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 12 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग। अपराह्न 12 आकाशवाणी दिल्ली से हम सुनवाएंगे आपको हिंदी समाचार। एक बार फिर विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुनेंगे दोपहर 12:05 से दोपहर 2 तक। दोपहर 2 प्रादेशिक समाचार, 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना हम रिले करेंगे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मध्याह्न समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 2:15 पर। दोपहर 2:30 से शाम 5 तक एक बार फिर आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण जिसे हम अपने सासाराम केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। हमारे सासाराम केंद्र से 5:05 पर आप सुनेंगे उद्घोषणा और कार्यक्रम विवरण। शाम 5:10 पर सुनिएगा वंदन कार्यक्रम में भक्ति संगीत। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। आज के युवाणी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा स्वतंत्रता संग्राम की नींव, असहयोग आंदोलन के बारे में विशेष जानकारी। शाम 6 से 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी पटना से हम आपको सुनवाएंगे। 6:10 से सुनिएगा किसान वाणी प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 से आप सुनेंगे सांझ गीत कार्यक्रम 7:15 तक। 7:15 पर हम लेकर आएंगे गुड इवनिंग रोहतास सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। 7:25 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल के लिए 7:50 से रात 8 तक और 8:15 से रात 8:30 तक आप सुनेंगे हेलो मनपसंद ये फ़ोन इन फरमाइशी कार्यक्रम। रात 8 से 8:15 पर जी हाँ हम सुनवाएंगे आपको आकाशवाणी दिल्ली से इस सप्ताह संसद में और 8:30 से 8:45 तक आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा समाचार संध्या। रात 9 हमारे सासाराम केंद्र से लोकधारा कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत और 9:15 पर महफिल कार्यक्रम में चंद गज़ल। 9:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 सुनिएगा रसरंग कार्यक्रम और 10:30 पर हम लेकर आएंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान आप सुनेंगे रात 10:55 से रात 11 तक। रात 11 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम आपको सुनवाएंगे। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप जानकारी ले रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। गीत मालिका कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की खनकती हुई आवाज़ों से। जावेद अख्तर के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत है और फिल्म का नाम है यस बॉस।

कानों में आती है तो दिल का हर कोना महक उठता है। और जी हाँ, सावन का मौसम भी आ चुका है तो हाथों में हरे रंग की खनकती हुई चूड़ियाँ जो हैं वो तो पर बस किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती हैं। तो ये बेहद ही खूबसूरत गीत अभी हमने आपको सुनवाया यस बॉस फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक की मीठी सी आवाज़ में। और अब कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए उदित नारायण के साथ कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। भैरव और उनके लिखे हुए बोल हैं, आनंद राज आनंद का संगीत है और फिल्म है बंधन।

श्रोताओं, वैसे तो ये जो पूरी कायनात है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कायनात खूबसूरत तभी लगती है जब हमारे पास खूबसूरत आंखें होती हैं। यानी नैनो से बढ़कर तो खूबसूरत मेरे ख्याल से शायद कुछ भी नहीं। तो ये बेहद ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, बंधन फिल्म से, तेरे नैना मेरे नैनों से लागे। और अब सुनवाते हैं आपको सुई धागा फिल्म से लिया गया ये गीत, जिसे गाया पपून के साथ रोंकिनी गुप्ता ने है, वरुण ग्रोवर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत है।

0: और अब इसी गीत के साथ हमारा आज का गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र कार्यक्रम आज के फनकार के लिए।
1: नजर से खुद को देख भी
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब।

आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता।

कार्यक्रम में आज दास्तान उस अदाकारा की, जिसे बचपन में महजबी बानो कहा गया और बड़ी होकर वो कहलाई मीना कुमारी।

मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। बचपन से ही मीना कुमारी बतौर बाल कलाकार फिल्मों की दुनिया में चली आई थीं। उनके बचपन का नाम था महजबी बानो। अली बख्श और इकबाल बेगम की तीसरी बेटी थी महजबी। इसके अलावा बाकी दो बेटियां थीं खुर्शीद और मधु। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नन्ही महजबी को फिल्मी दुनिया में ला दिया गया। मीना कुमारी तब तकरीबन 5 बरस की थी और उनके पिता अली बख्श रूपतारा स्टूडियोज में एक्टर बनने के लिए जद्दोजहद किया करते थे। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने महजबी को भी फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नन्ही महजबी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी। 7 बरस की उम्र में नन्ही महजबी ने फिल्म फर्जंदे वतन में काम किया। फिल्मी दुनिया में आने के लिए नन्ही महजबीन का नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया। प्रकाश स्टूडियोज की फिल्म फर्जंदे वतन सन 1939 में आई थी और इसके निर्देशक थे विजय भट्ट। इसके बाद

नन्ही मीना कुमारी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा और अलादीन और जादुई चिराग। प्रकाश स्टूडियोज में इस नन्ही कलाकार ने अपनी अभिनय प्रतिभा के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था। इसीलिए फर्जंदे वतन के निर्देशक और निर्माता विजय भट्ट ने जब बैजू बावरा बनाने का फैसला किया तो बतौर हीरोइन मीना कुमारी को मौका दिया। बैजू बावरा मीना कुमारी की पहली कामयाब फिल्म थी। सन 1953 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मीना कुमारी ने इस फिल्म में अभिनय के लिए हासिल किया।

इसके बाद बीना कुमारी की एक के बाद एक कई कामयाब फिल्में आईं। परिणीता 1953, फिल्म दायरा 1953, बीआर चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता में भी उन्होंने अभिनय किया। सन 1957 में आई शारदा।

मीना कुमारी ने ज्यादातर वो फिल्में की जिनमें वो एक दुखियारी स्त्री थी, समाज और हालात की सताई हुई एक दुखियारी स्त्री जिसके हिस्से में सिर्फ गम आए हैं, आंसू आए हैं, तकलीफें आई हैं और आई हैं ठोकरें।

मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में ना की हों। सन 1955 में आई सी रामचंद्र के नायाब संगीत वाली फिल्म आजाद।

0: आधे घंटे के इस कार्यक्रम में अदाकारा मीना कुमारी के पूरे करियर को समेटना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो मुमकिन है कि हम उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं की बातें करें। सन 1962 में आई फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। गुरुदत्त की यह फिल्म मीना कुमारी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है।
1: मुझे यहां क्यों बुलाया?
2: कुछ भी नहीं देख पाए।
1: क्या बकवास करती हो? मैं यहां बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं? इतनी फुर्सत नहीं मुझे।
2: सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
1: ना जाओ? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझ रखा है क्या?
2: पत्नी के पास रहने

0: मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी। धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया, क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं?
1: जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरू से सीखना पड़े, लाना तो
0: रोज ही तो जाते हो वहाँ, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो।
1: मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों के ये गुच्छे नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं।
0: सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज, कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों?
1: सेवा करना जानती हो तुम लोग?
0: स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ।
1: मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? जैसे चुन्नी दासी गाती है, गा सकोगी? गा सकोगी मेरे साथ?

लोगों ने ये भी कहा कि फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की ये भूमिका, जिसमें मीना कुमारी छोटी बहू बनी थी, असल में उनकी असली जिंदगी से बहुत मेल खाती है। दरअसल मीना कुमारी कमाल अमरोही से अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के 6 साल के अंदर ही वो और कमाल अमरोही अलग हो गए थे। मीना कुमारी ने तलाक के समय लिखा था, तलाक तो दे रहे हो नजर कहर के साथ, जवानी भी मेहर के साथ लौटा दो। मीना कुमारी के अंदर एक ठोकरें खाई हुई स्त्री थी, जिसका दिल छलनी छलनी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी शायरा भी थी। उनकी मौत के बाद जाने माने शायर, गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने उनकी गजलों की किताब छपवाई और उसका संपादन किया। अपनी एक गजल में मीना कुमारी लिखती हैं, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई गर मिले कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। ये सच है कि मीना कुमारी में कमाल का सौंदर्य था, भला की खूबसूरती थी, लेकिन उनकी खासियत थी उनके चेहरे पर झिलमिलाते भाव। उनकी खासियत थी दर्द को अपने चेहरे पर लहर की तरह छा देना। जरा फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना सुनिए और जहन में याद कीजिए स्क्रीन पर झिलमिलाती मीना कुमारी को, जिसके दिल में है दर्द का तूफान।

कहते हैं कि अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों की वजह से मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि जिंदगी उनके हाथों से फिसलती चली गई। सन 1962 मीना कुमारी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल था। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 3 नॉमिनेशन मीना कुमारी को मिले। फिल्म आरती

फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। जाहिर है कि कोई प्रतियोगिता थी ही नहीं, मीना कुमारी का मुकाबला खुद से था और साहेब बीवी और गुलाम के लिए उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1965 में आई फिल्म काजल।

लेखक और गीतकार गुलजार शायरी की वजह से मीना कुमारी के करीब आ गए थे। उनकी शायरी की दुनिया को गुलजार ने जाना पहचाना था। सन 1971 में जब बतौर निर्देशक गुलजार ने फिल्म मेरे अपने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका मीना कुमारी को सौंपी।

मीना कुमारी के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी पाकीज़ा। इसे बनने में कुल 14 साल लग गए, लेकिन फिल्म पाकीज़ा के जरिए पर्दे पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने रचा एक तिलस्म।

एक जगह मीना कुमारी ने लिखा था, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। एक अदाकारा जिसके भीतर था दर्द का समंदर, जो गहरी तन्हाई की शिकार थी, 31 मार्च 1972 को महज 39 बरस की उम्र में इस फानी दुनिया से चली गई। उनके अपने अल्फाज हैं, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए किश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता।

0: शूद आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, और अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बृहस्पतिवार को संसद में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित

0: को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली यह प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। इस बीच तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यामिनी मौर्य को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हीराकुंड जलाशय का जलस्तर बढ़कर 625 फीट के ऊपर पहुंच चुका है। जल नियंत्रण के लिए 22 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। विकास के सोपान कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भारतीय डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और जनहित में संचालित योजनाओं के बारे में एक भेंटवार्ता। इस कार्यक्रम के भेंटकर्ता हैं लाल बहादुर दुबे और भेंटवार्ताकार हैं श्री नीरज कुमार चौधरी, डाक अधीक्षक रोहतास डाक प्रमंडल।

0: कार्यों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं, लगभग 500 साल पुरानी भारतीय डाक प्रणाली आज दुनिया की सबसे विश्वसनीय और बेहतर डाक प्रणाली में श्रेष्ठ स्थान पर है। डाकघर में एक सुविधा है जो पत्रों को जमा करने, छांटने तथा निश्चित स्थान तक पहुँचाने का कार्य करता है। अंग्रेजों ने सैन्य खुफिया सेवाओं की मदद के मकसद के लिए भारत में पहली बार सन 1688 में मुंबई में पहला डाकघर खोला और उसके बाद अपनी सुविधा के लिए देश के अन्य इलाकों में डाकघरों की स्थापना करवाई। सन 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा डाक व्यवस्था के विकास के लिए कई कदम उठाते हुए आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव रखी गई, जो क्रमिक सुधार के साथ चलता रहा और फिर सन 1854 के पोस्ट ऑफिस अधिनियम से पूरी डाक प्रणाली के स्वरूप में एक नया बदलाव आया तथा 1 अक्टूबर 1854 को एक महानिदेशक के नियंत्रण में भारतीय डाक प्रणाली ने आधुनिक रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया। आज भारतीय डाक विभाग आम जनता को पत्र, पार्सल, स्पीड पोस्ट, डाक निर्यात केंद्र, वित्तीय समावेशन के तहत बचत योजनाएं व बीमा जैसी कई जनहित सेवाएं प्रदान कर रहा है। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग के बारे में और जानेंगे कि आज के समय में भारतीय डाक विभाग द्वारा कौन कौन सी सेवाएं जनहित में दी जा रही हैं। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए हमने संपर्क किया सासाराम प्रधान डाकघर स्थित डाक अधीक्षक के कार्यालय में, जहाँ हमारी मुलाकात हुई डाक अधीक्षक रोहतास डाक प्रमंडल श्री नीरज कुमार चौधरी से और हमने उनसे बातें की। विषय है भारतीय डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और जनहित में संचालित योजनाएं। डाक अधीक्षक रोहतास प्रमंडल नीरज कुमार चौधरी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार, आकाशवाणी के सभी सम्मानित श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम।
0: डाक अधीक्षक महोदय, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को भारतीय डाक विभाग के बारे में कुछ जानकारी दें।
1: भारतीय डाक विभाग केवल एक सरकारी संस्था नहीं बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। लगभग 170 वर्षों से अधिक समय से डाक विभाग देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर महानगरों तक संचार, बचत, बीमा और वित्तीय सेवाएं निरंतर उपलब्ध करा रहा है। आज डिजिटल युग में भी भारतीय डाक अपनी विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में डाक विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे डाक विभाग की प्रमुख सेवाएं और योजनाएं कौन कौन सी हैं।
1: डाक विभाग की प्रमुख सेवाएं अभी जो हमारे यहाँ चल रही हैं, सबसे पहले हम स्पीड पोस्ट की सेवाएं दे रहे हैं, डाक निर्यात केंद्र की सेवाएं दे रहे हैं, ज्ञान पोस्ट की सेवाएं दे रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान भी चला रहे हैं, रक्षाबंधन जो आगामी आने वाले हैं उसके अवसर पर हम अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने जा रहे हैं, बैंकिंग की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, IPV के माध्यम से हम जितने भी बैंकिंग फैसिलिटी हैं वो भी दे रहे हैं, आधार और पासपोर्ट की सेवाएं यहां पर दिया जा रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजनशिप स्कीम्स एवं PPF स्कीम्स हमारी प्रमुख योजनाओं में से एक है।
0: जी निश्चित है, डाक विभाग की बहुत सी सेवाएं और योजनाएं संचालित हैं, लेकिन इतने कम समय में हर सेवाओं के बारे में तो बातें नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ प्रमुख सेवाओं के बारे में आज हम जरूर जानना चाहेंगे। तो आपने स्पीड पोस्ट की बातें की, तो हम जानना चाहेंगे कि अभी कुछ समय पूर्व रजिस्टर्ड डाक सेवा थी, उसको बंद कर दिया गया और उसके जगह पर स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई है। लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि जो पहले रजिस्टर्ड डाक सेवा था वह सस्ता था, लेकिन स्पीड पोस्ट शुल्क है वह ज़्यादा लगता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, मैं आज आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्पीड पोस्ट सेवाएं सस्ती सेवाएं हैं। निबंधित पत्र जो थे वो हम 20 ग्राम सेवा के लिए ₹22 लिया करते थे, अब जो है सो स्पीड पोस्ट में 50 ग्राम का ₹55 लिया जाता है, उस हिसाब से यह रजिस्ट्री निबंधित पत्र ₹66 हो जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से स्पीड पोस्ट जो है सो वह सस्ता है। स्पीड पोस्ट की सेवाएं जो है टाइम बोर्ड सिक्योर एंड गारंटेड सर्विस हैं
0: जी। स्थानीय जो इसका शुल्क है, स्थानीय जो हम लोग

0: स्पीड पोस्ट भेजते हैं इसका कितना है?
1: स्थानीय जो हम लोग भेजते हैं उसका अभी 23 रुपया लिया जा रहा है जी।
0: मतलब फिर जो रजिस्टर्ड डाक सेवा था उसी के समकक्ष?
1: जी, उसके समकक्ष लिया जाता है।
0: डाक अधीक्षक महोदय, अब हम जानना चाहेंगे डाक निर्यात केंद्र के बारे में, जो आपने शुरुआत में बताया। डाक निर्यात केंद्र क्या है और यह किसके लिए है, इसमें क्या क्या सुविधाएं सेवाएं लोग ले सकते हैं?
1: जी, डाक निर्यात केंद्र जो है भारतीय डाक की एक खास पहल है, जो छोटे व्यापारियों, कारीगरों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के अपने उत्पाद आसानी से दुनिया भर के देशों में भेजने में यह मदद करती है, सहायता करती है। यह ऑनलाइन कागजी कार्रवाई और सीमा शुल्क की प्रक्रिया को बहुत सरल और आसान बनाती है। इसकी सुविधा रोहतास तथा कैमूर जिला के लिए सासाराम प्रधान डाकघर में उपलब्ध है। कस्टम क्लियरेंस पहले यह कलकत्ता में होता था, लेकिन अब यह विभाग खुद पटना जीपीओ में ही होता है। इससे हमारा जो क्लियरेंस में टाइम ज्यादा लगता था वह टाइम बहुत कम हो गया है और व्यापारियों को अपना सामान भेजने में और आसानी हो गई है। अन्य प्राइवेट सर्विस के अपेक्षा शुल्क भी इसकी काफी कम है। हम उद्यमियों से यह अपील करते हैं कि वह हमारे यहाँ आकर के DNK का लाभ लें।
0: जी, तो डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से जो छोटे छोटे उद्यमी हैं या जो व्यापारी हैं, वो अपना प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह अपने देश में ही भेज सकते हैं कि बाहर भी भेजते हैं?
1: वह विदेशों में जाते हैं
0: जी,
1: उसमें कोई दिक्कत नहीं आती।
0: जी, तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा भारतीय डाक विभाग द्वारा दी जा रही है। महोदय, आपने ज्ञान पोस्ट की बात की, ज्ञान पोस्ट क्या है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे?
1: ज्ञान पोस्ट भारतीय डाक विभाग की बहुत अच्छी एवं नई पहल है, जो शिक्षा को समर्पित है। भारतीय डाक विभाग समय समय पर अपने नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप नई एवं जनहितकारी सेवाएं प्रारंभ करता रहा है। इसी क्रम में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य ज्ञान पोस्ट सेवा प्रारंभ विभाग के द्वारा की गई है। यह सेवा विद्यार्थियों, शिक्षकों, पुस्तकालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा प्रकाशकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसके माध्यम से पुस्तकें, पाठ्य सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री, शोध पत्र, जर्नल तथा अन्य मुद्रित शैक्षणिक सामग्री को पूरे देश में अत्यंत किफायती दरों पर भेजा जाता है।
0: यानी कि कोई जो पढ़ने वाला छात्र हो या तैयारी करने वाला छात्र है, वह पुस्तक कहीं से मंगा सकता है कि कहीं से भेज सकता है, क्या उसमें?
1: जी, मंगा भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं। जी
0: जी, डाक अधीक्षक महोदय, आपने हर घर तिरंगा अभियान और रक्षाबंधन के अवसर पर अतिरिक्त सेवाओं की बात की। अगस्त का माह चल रहा है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे, इस अवसर पर क्या सुविधाएं हैं हम जानना चाहेंगे?
1: अभी पूरे रोहतास प्रमंडल में 50 डाकघर हैं, जिसमें एक हमारे प्रधान डाकघर हैं। सभी डाकघरों में हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा झंडे का बिक्री करने जा रहे हैं। हर एक डाकघर में यह अपने वो स्टॉक के अनुसार उपलब्ध कराएंगे, जितना डिमांड होगा उसकी सप्लाई कराएंगे, और कोई लोग चाहेंगे तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, हम ऑनलाइन उनके घर पर डिलीवरी कराएंगे।
0: जी, इसका क्या शुल्क रहेगा?
1: जी, डाकघर में आएंगे उन्हें अभी 25 रुपया इसका रेट रखा गया है, और घर पर जाएंगे तो उसका शुल्क अलग से कुछ घर पर है, डिलीवरी शुल्क है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, उनको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी।
0: जी, इसे लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का समय आता है तो अपने घरों पर तिरंगा फहराने की मन में उत्सुकता रहती है, तो सस्ता में मिल जाता है और कोई परेशानी भी नहीं होती है, तो लोगों को डाक केंद्र आकर लेना चाहिए।
1: जी, लेना चाहिए, यह बहुत आसान है, डाकघर में हमेशा उपलब्ध।
0: जी, आपने रक्षाबंधन के अवसर पर बताया था कि अतिरिक्त सेवाएं हम लोग देने जा रहे हैं रोहतास प्रमंडल के तहत।
1: जी, रक्षाबंधन में जितने भी हमारे डाकघर हैं, सभी डाकघरों में, खास करके प्रधान डाकघर सासाराम में, भभुआ उप डाकघर में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है भभुआ का, वहाँ पर हम स्पेशल काउंटर, सिर्फ वहाँ राखी की बुकिंग होगी, और जब राखी बुकिंग होगी तो उसका हम लोग स्पेशल बैग बना करके भेजेंगे, ताकि आगे हैंडलिंग में हमें समय कम लगे और राखी जो है सो समय अपने गंतव्य पर पहुँच जाए।
0: तो ये अभी शुरू हो गया है कि होने वाला है?
1: अभी शुरू, एक दो दिन में हम लोग करने वाले हैं, अभी शुरू की प्रक्रिया में हम लोग हैं।
0: बहुत अच्छी सेवाएं आप देने जा रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के अवसर पर हर बहन चाहती है कि हमारे भाई के पास राखी पहुंचे, और इसके लिए आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। समय पर अगर वह मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है।
1: जी
0: डाक अधीक्षक महोदय, अब हम आपसे

0: ना चाहेंगे कि आपने कुछ बैंकिंग सेवाओं के बारे में जिनमें IPPB और DOP इंटरनेट बैंकिंग की बातें की थी, वह क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को दें।
1: जी, IPB हमारा जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहलाता है। इसके माध्यम से आप खाता खोल सकते हैं, इसके माध्यम से आप कितनों भी रकम हो आप भेज सकते हैं। ये काफी सुरक्षित भी है, बैंकों के बनिस्पत हमारे यहाँ पैसे लेन देन काफी सुरक्षित रहते हैं। अभी देखते हैं आप साइबर क्राइम का बहुत ज्यादा प्रचलन चला हुआ, परंतु डाकघर जो है अभी भी काफी सुरक्षित है।
0: तो ये सुविधाएं जो बैंकों में मिलती हैं, वैसी सुविधाएं आपके पोस्ट ऑफिस में भी है उपलब्ध है?
1: जी हाँ, जो बैंकों में मिलती है वही सुविधाएं हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ भी जो आपने पोस्ट ऑफिस में 500 रुपये में SB खाते खुलाए हैं, उसमें से आप RTGS कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं। उसके लिए एक साधारण फॉर्म भरनी होती है और वह पैसा सुरक्षित ढंग से आपके खाते में मिनटों में चले जाएंगे।
0: आजकल तो लोग डिजिटल सेवा का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसमें आप देखते हैं कि ऐप के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करना या मंगाना, ये सब सुविधाएं डाक विभाग में जो बैंकिंग सेवाएं IPPB है इसमें है उपलब्ध?
1: जी हाँ, IPPB में भी है और डाक ऐप भी है, दोनों के माध्यम से आप इस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। IPPB में मैं पूर्व में भी बताया हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि इसमें से आप पैसा सुरक्षित आप भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं।
0: आधार और पासपोर्ट सेवाओं के बारे में भी आपने चर्चा की थी, तो क्या सुविधाएं आपके रोहतास डाक प्रमंडल में आधार और पासपोर्ट सेवाओं के लिए है, इसके बारे में आप बताएं।
1: जी, आधार का जो सेंटर है पहले यहाँ पर सासाराम में 6 जगहों पर चल रहा था, वर्तमान में 10 जगहों पर अभी चल रहे हैं और 5 जगहों पर अगले शनिवार तक शुरू करने जा रहा हूँ, तो कुल 15 जगहों पर चलेंगे। और 5 जगहों पर आधार के लिए हम प्रयासरत हैं, वो भी जल्द शुरू कर देंगे। तो अभी जो मेरे यहाँ सासाराम प्रधान डाकघर में है, पहले यहाँ पर एक आधार काउंटर चलते थे, अभी 3 काउंटर चला रहे हैं। तीनों पे लगभग यहाँ पे 120 लोगों का इनरोलमेंट आधार में सुधार किया जा रहा है पर डे, और किसी प्रकार की कोई यहाँ पर लोगों को कठिनाई नहीं हो रही है। इसी तरह अन्य जगहों पर भी चल रहे हैं, तो वहाँ भी कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आधार बनवाने के लिए जितने भी 15 सेंटर हैं वो सब पर बन रहे हैं, और खास करके जो गाँव में हैं वहाँ हमारे 5 साल के जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनका IPPB के माध्यम से हमारे जो गाँव के पोस्टमैन हैं, डाकिया हैं, पोस्टमास्टर हैं, वो घर पर जाकर के बना रहे हैं।
0: और पासपोर्ट सेवाओं के बारे में कुछ बताइए।
1: पासपोर्ट सेवाएं हमारा बहुत ही अच्छा सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। और हमारे यहाँ एक सासाराम प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र है, दूसरा हमारा डालमिया नगर में पासपोर्ट सेवा केंद्र है। दोनों जगहों पर मेरा 50-50 का स्लॉट है, प्रत्येक दिन 50 स्लॉट मेरा बुक रहता है और दोनों जगहों पर लोगों को हम 50 लोगों की सेवा पर डे दे रहे हैं।
0: यानी कि अभी रोहतास प्रमंडल में केवल सासाराम और डालमिया नगर यही 2 जगह उपलब्ध है?
1: जी जी, यह 2 जगह इसलिए उपलब्ध है कि यह पासपोर्ट सेवा केंद्र जो खुलती है वह एक MP के कंस्टिट्यूएंसी में एक ही खुलती है, तो इसलिए हमारे 2 हैं, तो दोनों जगह भी काम कर रहे हैं।
0: जी, डाक अधीक्षक महोदय, बातें हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन अभी श्रोताओं को गीत सुनवा दिया जाए, तो आज हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई गीत हमारे श्रोता सुने, तो श्रोताओं के लिए आप कौन सा गीत पसंद कर रहे हैं?
1: आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की।
0: जी जी जी,
1: यह दुल्हन फिल्म के है, लता मंगेशकर गाए हैं।
0: बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है, तो आइए आपकी पसंद पर श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म दुल्हन का यह खूबसूरत गीत लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज में।

0: श्रोताओं,
1: गीत से पूर्व हमारी बातें हो रही थी डाक अधीक्षक रोहतास डाक प्रमंडल श्री नीरज कुमार चौधरी जी से, और हम लोग बात कर रहे थे भारतीय डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और जनहित में संचालित योजनाओं के बारे में। तो आइए कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में अब जानते हैं। डाक अधीक्षक नीरज कुमार चौधरी जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।
2: जी धन्यवाद सर।
1: तो अब कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बताइए। सुकन्या समृद्धि योजना की आपने चर्चा की, कुछ इसके बारे में जानकारी दें।
2: जी, सुकन्या समृद्धि योजना बच्चियों के नाम से खाता खोला जाता है। यह 0 से 10 वर्षों की बच्चियों का खाता खोला जाता है। इसमें मिनिमम हम 250 रुपया से अकाउंट खोलते हैं। 1 वर्ष में 1000 रुपया मिनिमम जमा होता है, मैक्सिमम 1,50,000 जमा किया जाता है। इसको 15 वर्ष तक जमा किया जाता है, उसके बाद इन्हें 21 वर्ष में हम इसे वापस पैसा ले सकते हैं। यदि किन्हीं बच्चियां की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो रही हो तो वो अपना पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पूर्ण पैसा सूद सहित वो वापस ले सकते हैं।
1: जी महोदय, इसमें तो सिर्फ 2 बच्चियों के लिए होता है, इसमें तो उससे अधिक बच्चियां किसी को हो तो नहीं हो सकता है?
2: जी नहीं, इसमें मात्र 2 बच्चियां का होता है। यदि दूसरी बच्ची जुड़वा है तो 3 बच्चियों का हो जाएगा।
1: अगर किसी बच्चे के साथ कोई घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, वह न रहे, तो क्या उसका पैसा सुरक्षित रहेगा, उसके माता पिता को मिल जाएगा?
2: जी, जो गार्जियन है उन्हें पैसा वापस मिल जाएगा, समय पर मिल जाएगा। वो उनका वो डेथ सर्टिफिकेट लगा के देंगे और उन्हें पैसा सुरक्षित वापस कर दी जाती है।
1: आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बातें भी की थी, तो इसमें क्या लोगों को लाभ है, क्या आप बताएंगे?
2: जी, इसमें जो है सो जो 60 वर्ष से उम्र से अधिक हो जाते हैं, 60 वर्ष से उससे अधिक, उनका यह खाता खोला जाता है। इसमें मैक्सिमम 30 लाख तक का खोला जाता है, और यदि कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं या सेना से रिटायर करते 55 वर्ष या एवं, तो फिर उनका भी इसमें खाता खोला जाता है।
1: तो इसमें क्या कुछ विशेष लाभ है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में?
2: इसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा हो, और इसमें खास करके सीनियर लोगों का ही खोला जाता है।
1: वो रिटायर्ड पर्सन होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति?
2: कोई भी व्यक्ति हो।
1: अंत में हम आपसे

0: चाहेंगे पीपीएफ के बारे में, चूंकि उसकी भी चर्चा आपने की थी, उसके बारे में संक्षेप में बता दिया जाए।
1: जी, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स कहलाते हैं। इसमें 500 से मिनिमम खाता खुलते हैं और यह 15 वर्षों तक चलता है या बीच में बंद नहीं होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और इसमें इनकम टैक्स, सबसे अच्छी बात है इसमें इनकम टैक्स फ्री है
0: जी।
1: इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगते हैं। सुकन्या भी इनकम टैक्स फ्री है और पीपीएफ भी इनकम टैक्स फ्री है।
0: पीपीएफ किन के लिए होता है?
1: पीपीएफ सबों के लिए है, सभी जो 18 वर्ष से ऊपर है सबों का खुलेगा
0: जी। नीरज कुमार चौधरी जी, आपसे बातें करते हुए अच्छा लगा। अंत में कुछ हमारे श्रोताओं से कहना चाहे तो कह सकते हैं।
1: जी निश्चित रूप से, रोहतास डाक प्रमंडल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल सेवाएं प्रदान करना नहीं है बल्कि जनता के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने निकटतम डाकघर से जुड़ें और डाक विभाग की बचत, बीमा, बैंकिंग, पार्सल तथा अन्य जनउपयोगी सेवाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं। डाकघर आपकी अपनी

0: निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल सेवाएं प्रदान करना नहीं है बल्कि जनता के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने निकटतम डाकघर से जुड़ें और डाक विभाग की बचत, बीमा, बैंकिंग, पार्सल तथा अन्य जनउपयोगी सेवाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं। डाकघर आपकी अपनी संस्था है जो सदैव आपकी सेवा के लिए समर्पित है। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत और वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दें। अंत में मैं आकाशवाणी सासाराम का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे डाक विभाग की जनहितकारी सेवाओं की जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।
1: डाक अधीक्षक रोहतास डाक प्रमंडल नीरज कुमार चौधरी जी, आपने अपना कीमती समय दिया और भारतीय डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और जनहित में संचालित योजनाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे डाक अधीक्षक रोहतास डाक प्रमंडल श्री नीरज कुमार चौधरी से की गई हमारी बातचीत। विषय था भारतीय डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और जनहित में संचालित योजनाएं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन 8211115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisassaram akashvanisasaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
2: जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी आपकी आवाज है और आपके साथ है। तो ये प्रोमो था आपके लिए और ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लोक माधुरी कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। तो सबसे पहले सुनवाते हैं आपको शारदा सिन्हा के स्वर में परदेशिया बलमुआ, इस एल्बम का एक पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत। संगीत भी शारदा सिन्हा का है।

श्याम मथुरा परैले हो, परदेशिया बलमुआ एल्बम से लिया गया। ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा के स्वर में। एक बार फिर शारदा सिन्हा के स्वर में ही एक और भोजपुरी एल्बम लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। एल्बम है परदेशिया बलमुआ।

अभी आप ये सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीत शारदा सिन्हा के स्वर में परदेशिया बलमुआ एल्बम से। और अब इसी के साथ हमारा आज का लोक माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:45 हो रहे हैं। तो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रसधार कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं शिव भक्ति की इस रचना से। जी हाँ, सावन का महीना चढ़ चुका है और भगवान शिव की आराधना पूजा शुरू हो चुकी है, तो हम भक्त भी क्यों पीछे रहें। चलिए बनते हैं भोलेनाथ के दीवाने रितेश पांडे के साथ। जी हाँ, इनकी आवाज़ में सुनते हैं अनिल जौनपुरी का लिखा हुआ ये भक्ति गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है रोशन खरवार ने।

शिवम।

रितेश पांडे और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भोलेनाथ के दीवाने, इस एल्बम का ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। जी हाँ श्रोताओं, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र मास में यानी महीने में हम सब शिव भक्त उनकी कृपा पाने के लिए कई तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और उनकी भक्ति भाव में पूरी तरह लीन भी हो चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से गोते लगाते हैं उनके भक्ति सागर में। जी हाँ, भोला जी के टोला एल्बम से लिया गया ये सॉन्ग अब आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं, पवन सिंह की आवाज़ में। विजय चौहान का बोल है, विकास यादव का संगीत।

भोला जी के टोला पवन सिंह की आवाज़ में इस एल्बम का ये एल्बम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। और एक बार फिर पवन सिंह की ही आवाज़ में सुनवाते हैं आपको मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ ये एल्बम सॉन्ग, जिसकी धुन बनाई तनिष्क बागची ने है। एल्बम है लुट गए रिमिक्स।

उनकी नज़रों ने कुछ ऐसा जादू किया कि हम लुट गए पहली मुलाकात में। जी हाँ, पवन सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लुट गए रिमिक्स एल्बम से लिया गया ये एल्बम सॉन्ग। और अब इसी के साथ रसधार कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए स्नेह उपाध्याय की आवाज़ में विनय बिहारी का लिखा हुआ एक एल्बम सॉन्ग, जिसकी धुन बनाई है अविनाश झा ने और एल्बम है रॉक एंड आर डी स्टाइल।

स्नेह उपाध्याय के गाए हुए इसी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग के साथ ही अब रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण। तब तक कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, बने रहिए हमारे साथ।

0: मैटिनी शो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी आवाज मौजूद है जिसने क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया और इनकी आवाज के हम सब दीवाने रहे हैं। हमारे बीच हैं पद्मश्री सुशील दोषी। ये है इस बातचीत का पहला भाग। आइए स्वागत करते हैं सुशील जी का।
1: धन्यवाद यूनुस और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार। ये आवाज़ तो आप बरसों कमेंट्री में सुनते रहे होंगे और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। जीवन की कहानी की यात्रा किस तरह गुजरी, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी, तो जिगर थाम कर बैठिए, बहुत लंबी बातचीत होगी अब।
2: क्या बात है, क्या बात है। मैं ना सर बहुत रोमांचित हूँ और एक चीज़ और है कि आपके सामने बैठने पर थोड़ा घबराया हुआ भी हूँ कि इतना विराट और लंबा अनुभव आपका रहा है। मुझे लगता है यात्रा इंदौर से शुरू करते हैं, अपने बचपन के बारे में बताइए।
1: नहीं देखिए, वैसे तो गरीब परिवार से हम थे, 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहते थे।
2: कौन सा मोहल्ला था वो?
1: वो इतवारिया बाजार, जिसे अब हुकमचंद मार्ग इंदौर
2: जी
1: कहते हैं, वहाँ रहते थे। और 4 भाई हम लोग और माता पिता, मैंने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी संघर्षरत थे। वहाँ से शुरुआत की यात्रा और टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़े,
2: जी जी
1: मास्टरों की रोज मार खाई
2: जी
1: और मुर्गा बने।
2: हाँ,
1: लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दिल में इच्छा हो ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, और माता पिता का आशीर्वाद रहा।

0: तो फिर आप सही दिशा की तरफ प्रवृत्त भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने कहा कि परिवार जो है वो थोड़ा अभावों के रास्ते पर था, और जैसे स्कूलों में आपने पढ़े, सब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है, मास्टर जी कैसे मुर्गा बनाते हैं। ये जो बचपन था, इस बचपन में किताबें बहुत सारी थी। मैंने ये जाना है कि आप लाइब्रेरीज में ब्लेड लेके जाते थे।
0: अब क्या बताएं, देखिए उस समय पैसे तो थे नहीं, और
1: जी
0: क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी, तो हम करते ये थे कि लाइब्रेरीज जाते थे और बहुत कम बड़ी पत्रिकाओं में
1: जी
0: फोटो आते थे। एक पत्रिका में कभी बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर का किसी का फोटो, और मैं एल्बम में क्रिकेटर्स के फोटो इकट्ठे किया करता था,
1: जी
0: और पैसे थे नहीं कि पत्रिकाएं खरीद सकें। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, विनय उसका नाम था, मेरे साथ पढ़ता था, तो हम दोनों जाते, ब्लेड ले जाते और चुपके से वो फोटो काट कर घर ले आते।
1: वाह,
0: एक दिन पकड़े गए,
1: अरे
0: और
1: बाप
0: पकड़े
1: रे,
0: गए तो मेरे दोस्त को आप ये समझिए कि उसने दो चपत लगाई,
1: वो
0: और अब कहा कि इस तरह के काम करते हो, शर्म नहीं आती। तो हम वापस आ गए और बड़ा छोटा मुंह हो गया, लेकिन देखिए पुराने दोस्त कैसे होते हैं। उसने ये कहा कि यार घर पर मत बताना कि आज हमको चपत पड़ी है, क्योंकि घर पर बताएंगे तो ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये कल से नहीं कर पाएंगे। तो
1: जी
0: देखिए कई बार मैं सोचता हूँ कि आज जब पद्मश्री मिल गया, या जिंदगी में आप हम व्यावसायिक तौर पर इतने आगे बढ़ गए, इतना नाम कमाया, लोग इज्जत कर रहे हैं, शोहरत प्राप्त हो गई, सब कुछ है, लेकिन हम उस दोस्त को कैसे भूल सकते हैं जो कि पद्मश्री मिलने के बाद भी उसका हक भी तो कुछ है उस उपाधि पर, जिसने हमें ऐसे वक्त जबकि दुनिया हमारे साथ नहीं थी वो हमारा साथ देने को तैयार थे। तो ऐसे ऐसे दोस्त हुआ करते थे,
1: जी
0: बचपन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी मुझे भावुक कर देती हैं।
1: जी बहुत प्यारी बात है। इंदौर बहुत प्यारा शहर है, संस्कारों वाला शहर है, पारंपरिकता और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। जिन दिनों में आप पढ़ रहे थे, क्रिकेट मैच के बारे में जानने का जरिया सिर्फ अखबार थे, कमेंट्री अंग्रेजी में सुना करते थे।
0: बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोग बाथरूम में जाते हैं और गाने गुनगुनाते हैं ना,
1: जी
0: मैं बाथरूम में जाता था तो कमेंट्री गुनगुनाना था।
1: ओ
0: मतलब आप समझिए कि लोग, अब अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, हिंदी में तो आती नहीं थी। FPS सिस्टम का खेल, यानी कि फुट पाउंड सेकंड,
1: बिल्कुल
0: 22 यार्ड से जो खेल शुरू हुआ, लोग कहते थे हिंदी का इसमें क्या काम, मतलब तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अंग्रेजी में ही कमेंट्री करते थे, और उनकी शैली में जॉन ऑर्लट हो,
1: हाँ,
0: एलन मैकगिलवरी हो, या ऐसे बड़े बड़े कमेंटेटर्स जिनके हम नाम जानते हैं,
1: और
0: उनकी,
1: बैरिटोन एकदम
0: हाँ
1: वो
0: उनकी मोटी आवाज़ में वैसे ही निकाल कर मैं
1: जी
0: वैसे ही कमेंट्री करता था, लोग बड़े प्रभावित होते थे। और स्कूलों में भी कोई मैच चलता था ना, मैं एक झाड़ के नीचे बैठकर कमेंट्री करने लग जाता था।
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: ये एक वहाँ से शौक हुआ, और बचपन से मुझे पता नहीं था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा,
1: जी
0: लेकिन कहीं से कहीं बुनियाद जो पड़ी ना मेरी, शायद वहीं से पड़ी होगी, क्योंकि वही चीज़ आगे जाकर विकसित हो गई।
1: बिल्कुल। तो पिताजी का क्या रवैया था?
0: नहीं देखिए, गरीबी के बावजूद, देखिए मैं पढ़ने में सबसे कमज़ोर, दुबला पतला, 48 किलो, जब मैं कॉलेज में भी जाता था ना, 48 किलो ही वजन था। तो मेरे प्रति उनको एक अलग से ज़्यादा प्यार था। हमारे दूसरे तीन भाई हैं, तीनों भाई एमटेक आईआईटी से,
1: जी
0: मतलब इतने विद्वान और पढ़े लिखे, हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाले, मैं सप्लीमेंट्री लाकर पास होने वाला। उसके बावजूद भी वो इस कारण पिताजी प्यार करते थे कि ये कमज़ोर है, इसको हमारी मदद की ज़रूरत है।
1: ओके
0: और दूसरी बात ये कि उनको लगा कि ये अगर इसको हिंदी में और इसमें ज़्यादा शौक है, तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट की तरफ प्रवृत्त हूँ, तो क्रिकेट मेरी किताबों में वो भी एल्बम में चिपकाते थे खुद बैठकर,
1: अरे गजब।
0: और बड़ी मदद की। और उस समय तो पता नहीं था, लेकिन एक बार मुझे याद है कि 1959-60 में ऑस्ट्रेलिया की रिची बेनो की टीम भारत आई, वो
1: हाँ
0: ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी रिची बेनो की, वो विश्व विजेता टीम थी, और
1: बिल्कुल
0: दुनिया में उसका कोई जोड़ी नहीं था। बड़े बड़े खिलाड़ी, रिची बेनो, लिंडवाल और नॉर्मन ओनील, नील हार्वे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, जिनके फोटो में एल्बम में इकट्ठे किया करता था, तो वो आए हुए थे। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी, मैं 13 साल का था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था,
1: जी
0: मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बम्बई टेस्ट मैच देखना है। और पिताजी, पता नहीं क्यों, मैं पिता होता तो कभी भी अपनी बेटे की ये बात स्वीकार नहीं करता,
1: जी
0: लेकिन वो, उन्होंने कहा कि बेटे की जिद पूरी करनी है, तो वो
1: वाह,
0: मुझे बम्बई ले गए टेस्ट मैच दिखाने।
1: इंदौर से बंबई आए
0: इंदौर
1: आप
0: से
1: लोग?
0: बम्बई ले गए, पैसे थे नहीं, जैसे तैसे टिकट कैसे जुगाड़ किया होगा, यहाँ से बम्बई, बम्बई कहते थे जब,

0: बम्बई जाने का। बम्बई गए, उनको पता नहीं था कि अगर 50,000 लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं तो 50,000 लोग अंदर भी बैठे हैं और 50,000 लोग अंदर घुसने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। तो उनको लग रहा था कि बम्बई जाएंगे, टिकट दिलाएंगे। वो पिता थे, उनको ये बेटे में दिलचस्पी थी, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ले गए। और वहाँ जाकर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोन स्टेडियम
1: जी
0: के
1: जी
0: चक्कर काटते रहे और टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई।
1: जी
0: उसने कहा कि अरे मैंने आपको पहचान लिया है और जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी कहता था पिताजी को, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम बहुत दूर से आए हैं, इंदौर
1: जी
0: से आए हैं, तो जैसे तैसे ये मैच देख ले। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो बाहर आता है ना रेला, चाय पीने और मूंगफली खाने, तो मैं जब वापस जाएगा रेला तो मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: तब देखे आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहे, मैं 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि पिताजी बाहर खड़े हैं।
1: जी
0: मैं
1: जी
0: अंदर फुदकता हुआ चला गया खुशी में,
1: गजब।
0: और अंदर जाकर जो दृश्य देखा, मैंने देखा 50,000, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई तरह तरह के फोटोग्राफ्स लेके ऊंचे दिखा रहा है, प्ले कार्ड्स दिखा रहा है, और ढोल मंजीरे बज रहे हैं, तरह तरह के ड्रेसेस पहनकर लोग खड़े हैं। तब मेरी निगाह पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर, तो
1: वाह
0: मैंने किसी
1: वाह,
0: से पूछा कि यार ये कमेंट्री कौन कर रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा बॉबी तेलियारखा और विजय मर्चेंट यहाँ पर कमेंट्री कर रहे
1: लेजेंड
0: हैं।
1: लोग।
0: मैंने जगह देखी तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि यार क्या जगह है, राइट इन लाइन विद द विकेट, बिल्कुल विकेट की लाइन में है, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी जैसे मैच देख रहा है, सीधी लाइन में स्विंग और सीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, गजब की जगह है। मन में एक विचार आया कि क्या कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए जंगली सपने भी कभी कभी कैसे सच होते हैं, कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से, सन 1972-73 में तब किया जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई। तो
1: 12 बरस लग गए।
0: 12 बरस लग गए। आप देखिए कि कैसे ये काम हो, इसलिए जो कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो,
1: वाह वाह वाह
0: अगर बंद
1: वाह,
0: आंखों से सपने देखोगे तो सपना टूटने के बाद वो बिखर जाएगा, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो शायद वही बात थी कि वो सपना मैंने देखा कमेंट्री बॉक्स का, वो जाकर अब पूरा हुआ। अब
1: कितनी
0: इसमें दो
1: सुंदर
0: बातें
1: बात।
0: हुई साहब, देखिए
1: जी
0: जूनस जी, मैं कहना चाहता हूँ एक तो ये कि खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात उस पिता का सहयोग जो 90 मिनट तक बाहर खड़ा रहा और वापस आने की प्रतीक्षा में इसलिए उसी जगह खड़ा रहा जो कि कहीं बच्चा गुम ना हो जाए वापस आने पे, इतने भीड़ भड़के में,
1: जी
0: बम्बई
1: जी
0: के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये वापस आएगा तो भीड़ में गायब हो जाएगा, तो वहीं खड़े रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पिताजी थे कि
1: कितनी अद्भुत
0: चलो
1: बात।
0: बच्चे ने मैच देख लिया। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, माता पिता, जो कि आपसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर आप करें, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो
1: वाह,
0: जब भी आप बड़े हो जाएं, कॉलर ऊंचे मत करिए, माता पिता को कभी मत भूलिए।
1: क्या सुंदर बात कही है। और आपने कहा कि पिताजी को आप बाबूजी कहा करते थे, तो मुझे गुलजार साहब का गाना याद आया, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे प्यारे बाबूजी थे, एक था बचपन। तो इस गाने की यहाँ पर जगह बनाते हैं।

0: सुशील जी, 1959-60 में हम हैं जहां पर आप ब्रेबोर्न स्टेडियम में 90 मिनट मैच देखते हैं और पिताजी बाहर इंतजार करते हैं और आप एक रोमांच लेकर बाहर लौटते हैं। यहां से आगे की कहानी।
1: नहीं, उसके बाद तो क्या, फिर वक्त बीतता गया, क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ती रही, जैसे आपने कहा
0: और पढ़ाई
1: कि
0: साथ में चलती
1: पढ़ाई
0: रही।
1: साथ में चलती रही। विज्ञान का विद्यार्थी था, मेरा हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा,
0: जी
1: लेकिन अपने खुद की खुशी से मैं बड़े बड़े उपन्यास, यानी कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद, महादेवी वर्मा है ना, या सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका खूब अध्ययन किया मैंने, और धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ी, सारे उपन्यास उनके पढ़े, गुनाहों का देवता, ये सब महादेवी वर्मा की सारी किताबें पढ़ डाली। तो ये तमाम चीज़ों से मेरी हिंदी बराबर बनी रही, हिंदी के प्रति मेरा एक विचित्र तरह का प्रेम बना रहा, एक रिश्ता बना रहा, मुझे लगा कि हिंदी मुझे खींच रही है, तो यहाँ से मेरी हिंदी की बुनियाद पड़ी।
0: यहां
1: और
0: बीच में थोड़ा सा रुकूंगा, आगे चल के धर्मवीर भारती से एक नाता बना, उसका जिक्र थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड करके करते हैं,
1: हाँ जी,
0: जब
1: हाँ
0: वो
1: बिल्कुल,
0: धर्मयुग के संपादक थे।
1: नहीं बिल्कुल, धर्मयुग में मैं जब लिखना शुरू किया 1968, 69 और 70 के आसपास, तब उनको लगा कि हिंदी, देखिए धर्मवीर भारती जी से हमारा कोई रिश्ता तो था नहीं, उनको लगा कि मुझे उस तमाम व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो हिंदी का काम कर रहा हो, उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी। तो जसदेव सिंह और मुझे उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया, उन्होंने काफ़ी लिखवाया भी, तब धर्मयुग घर घर में धर्मयुग जाता था, प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, तो उन्होंने हमसे काफ़ी लिखवाया। और बाद में जब 1979 का, जिसका मैं जिक्र बाद में करूँगा, जब वापस आया ना, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर बुलाया और कहा कि भाई आज तुमने हिंदी का नाम रोशन कर दिया।
0: वाह
1: तो
0: वाह
1: ये जो
0: वाह,
1: मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता कि धर्मवीर भारती जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मिलने को लोग लालायित होते थे, वो मुझे स्वयं घर बुला रहे हैं, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल। तो हम वापस स्कूल के जमाने में चलते हैं जहां आप धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत वगैरह को पढ़ रहे हैं, और हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रुचि है, लेकिन धारा विज्ञान के छात्र की है और रास्ता इंजीनियरिंग की तरफ

0: हाँ, उस समय क्या होता था कि गरीबी के दिन थे, मैंने आपको बताया, किताबें थी नहीं, पैसा था नहीं। हमको लगता था कि भाइयों के जो स्लाइड रूल है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो हमारे काम आ जाएंगे। तो एक मुद्दा ये भी था कि पैसे खर्च नहीं होंगे, और ये कमज़ोर है तो बड़े भाई पढ़ा भी देंगे इनको, और उन्होंने पढ़ाया भी खूब। मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ घुसाने की कोशिश की इंजीनियरिंग की, जैसे तैसे मैं पास भी हुआ। लेकिन ये समझिए कि 5ों साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ मैं, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन इंजीनियर मैं बन गया। शक्ल सूरत से मैं लगता नहीं कि पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से एक बात हुई कि मुझे तकनीकी चीज़ें समझने में बहुत सहूलियत हुई। क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, ये आपके दरवाजे खोलती है,
1: बहुत सही।
0: तो ये आपको चीज़ों को ग्रहण करने में मदद देती है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से क्या हुआ कि गेंद का एरोडायनामिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया, कि कोई गेंद स्विंग होती है तो क्यों होती है, सीम के सहारे कट क्यों होती है, सीम पर पड़ती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, पिच में नमी रहती है तब क्या होता है, तमाम चीज़ें समझने में बहुत आसानी हुई। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भले ही मैं बहुत बड़ा विद्वान न रहा, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और दूसरी बात ये कि जो आसपास के दूसरे कमेंटेटर्स होते थे ना, उन पर दबदबा रहता था कि भाई ये तो इंजीनियर हैं, ये
1: वाह
0: गलत बात नहीं करेंगे। तो ये
1: क्या
0: भी
1: बढ़िया
0: एक ज़रा एहसास रहता था मन में कि
1: जी
0: भाई हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
1: जी आपके बचपन किशोर युवा वाले दिनों में इंदौर क्रिकेट का एक गढ़ था, कुछ बड़े क्रिकेटर वहां से आते हैं, उनसे किस तरह का कनेक्शन रहा या देखना रहा उनको?
0: नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने कर्नल सी के नायडू साहब, उनसे मेरी मुलाकात, पद्म भूषण, जो
1: जी
0: अकेले पद्म भूषण क्रिकेट के उस समय, पहले वाले पद्म भूषण उस समय, तो उनके घर पे भी काफ़ी जाता था, उनके परिवार से काफ़ी रिश्ता था। और उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था, जो स्पोर्ट्स एंड पास टाइम में कवर स्टोरी के रूप में छपा था उस समय,
1: वाह
0: इलस्ट्रेटेड वीकली में भी मैंने उनके बारे में लेख लिखा था। तो मैं हिंदी में लिखता था, मेरे बाबूजी जो थे वो अंग्रेज़ी में अनुवाद करते थे। उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी,
1: वाह
0: अपने समय के भी काम थे। जिस गांव से वो आते थे, प्रतापगढ़ राजस्थान से, जहां मेरा जन्म हुआ, लेकिन बाद में मैं इंदौर आ गया, लेकिन वहां पर कोई अकेले बीकॉम रहे होंगे, तो उनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी थी कि उसका मुझ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, कि छोटे वाक्य ग्रामेटिकली सही वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। उनका हमेशा ये कहना था कि हिंदी भी अगर बोलो या लिखो तो व्याकरण की दृष्टि से सही बोलो या लिखो। ये चीज़ मेरे मन में गहरे तक समा गई थी, और इसी कारण मैं जब भी लिखा या बोला ना, जब भी मैंने कमेंट्री भी जब की, तो मैंने व्याकरण को बड़ा ध्यान रखा, और इसी कारण मेरी हिंदी, जो लोग कहते हैं, काफ़ी शुद्ध रही। तो अब लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि शायद शुद्ध रही होगी।
1: जी, अपने बचपन के ज़माने में फिल्मों से कैसा कनेक्शन था? क्योंकि इंदौर में मुझे याद है कि मैं एक दिन सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने पूरी टॉकीज़ों का बताया, ये यहाँ थी, यहाँ अंग्रेज़ी फिल्में लगती थी, यहाँ हिंदी फिल्में लगती थी, यहाँ मॉर्निंग शोज़ होते थे। आपका फिल्मों से कैसा
0: नहीं,
1: नाता?
0: बहुत ज़्यादा, बहुत। मैं तो शाम को 8-9 बजे के सेकंड शो देखने ही चला जाता था, कुछ ना कुछ।
1: गज़ब।
0: बहुत, मतलब पिक्चर तो एक आदत की तरह हो गया था, कि कोई भी, याद, बाद में जब शादी हो गई तब भी पत्नी को भी काफ़ी शौक था फिल्मों के प्रति, तो हम लोग शाम पढ़ते ही हमारे कदम ऐसा लगता था कहीं जाकर देखें, ज्योति टाकेज या प्रकाश टाकेज या फिर एलोरा टाकेज, जहाँ अब तो रहे नहीं टाकेज, हैं तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बन गई हैं, लेकिन वहाँ जाकर फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और सलीम साहब से तो मेरी मुलाकात भी हुई,
1: जी
0: कई बार मुलाकात हुई। एक इंदौर में एक समारोह में साथ में मिले थे, और मुझे बहुत बहुत जीवंत व्यक्ति है। जावेद
1: जी
0: साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन
1: जी
0: सलीम साहब से ज़रूर मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। और एक बार मुंबई शहर में भी करसन घावरी साहब के बड़े मित्र हैं, जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो जब एक बार कमेंट्री के लिए आया तो घावरी साहब ने कहा कि यार अपन लोग बैठते हैं, सलीम साहब भी याद कर रहे हैं, इंदौर का लड़का कमेंट्री करने के लिए आया है। तो सलीम साहब के, तो और क्या दिलकश आदमी,
1: वाह
0: मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। और बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे साथ बैठकर उन्होंने गाने भी गाए,
1: वाह
0: और
1: वाह
0: क्या आवाज़ उनकी, बिल्कुल लंबा खींचते हैं, बिल्कुल
1: जी
0: ऐसा लगता कहीं गला फटता ही नहीं है उनका। वो
1: जी
0: दुनिया के रखवाले वाला गाना उन्होंने सुनाया था,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: वो
1: है।
0: कितना उसमें लंबी खींच जो आती है ना तान, वो
1: हाँ,
0: पूरा उन्होंने वैसा का वैसा सुनाया।
1: तो दो इंदौरी लोग मिल गए थे उस
0: बहुत
1: दिन
0: बहुत मज़ा आया। और मुझे लगता है कि इंदौरी लोग जब भी मिलते हैं ना आपस में, मालवा के लोग, इंदौर भोपाल के लोग, तो जब भी
1: हाँ,
0: मिल...
1: आप

0: मुझे शामिल कर रहे हो
1: तो बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कि कोई घर के लोग
0: जी
1: मिल गए और
0: बिल्कुल
1: इनके साथ खूब बात करनी चाहिए, और ऐसी भाइयों की एक बढ़ोतरी हो गई है भाइयों
0: यस
1: में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब से ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इस मुलाकात की याद के नाम वो दुनिया के रखवाले सुनते हैं।

0: सुशील जी, बहुत आनंद आ रहा है आपके बचपन के गलियारों में हम घूम रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती रही, आप एक बहुत नामी क्रिकेट कमेंटर रहे और हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के संस्कार जैसे बुनियाद आपने गढ़ी है। आपने स्वयं कितना क्रिकेट खेला है ये जानना मेरे लिए बहुत
1: नहीं,
0: दिलचस्प
1: देखिए, स्कूल में टीम में था, स्कूल में जाकर क्रिकेट खेलता था। वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ इंदौर में, वहाँ जाकर खेलता था। और उस समय गरीबी के दिन थे, मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट का बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शौक था कि क्रिकेट खेला। इतना समझ में आया कि जब मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर गेंद जाती है तो होता क्या है, बल्ला जो बल्ले का हैंडल हाथ में घूम जाता है, इस कारण मिड ऑफ का मिड ऑन में जाता। तो ये तमाम चीज़ों की समझ जब
0: जी,
1: आप थोड़ा बहुत खेलते हैं ना तो आपको समझ में आता है।
0: यस,
1: तो ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत खेलें, ऐसा नहीं होता, सब कुछ सैद्धांतिक रूप से काम नहीं होता है इसमें। थोड़ा
0: नहीं,
1: महसूस करते भी आना चाहिए कि कोई चीज़ कितनी मुश्किल या कितनी सरल क्यों होती है। तो ये एक फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये रॉकेट साइंस नहीं है क्रिकेट का खेल जो है ना। ये एक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाई डिग्री ऑफ कॉमन सेंस अगर आप में है या क्रिकेटिंग सेंस आप में है, तो फिर आप इस खेल की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
0: वाह,
1: आजकल के कई क्रिकेटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं रहती, वो कमेंट्री करते हैं तो वो कहने की कोशिश करते हैं कि साहब क्रिकेट तो हमको ही आता है, ये सब जो है ना बाकी के लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत मामूली विज्ञान है जो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं। तो मैं
0: जी,
1: उनको हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी विधा पर ध्यान दीजिए और साथ ही भाषा पर भी ध्यान दीजिए,
0: यस,
1: और ऐसा मत करिए कि हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, देश की भाषा है, अगर आप बोल रहे हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की भाषा है, इसको
0: बिल्कुल
1: सही बोलिए। और सबसे बड़ी बात, व्याकरण की दृष्टि से सही बोलिए। क्रिकेट खेली नहीं जाती, क्रिकेट खेला जाता है। विकेट गीली नहीं होती, पिच गीला होता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो देश की भाषा खराब होती है। और
0: यस,
1: मैं तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये कहता हूँ कि भाई आपने देश के क्रिकेट की बागडोर या उसके राइट्स, आपने अधिकार बेचे हैं, भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं। तो ये एक देश की भाषा के प्रति उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कोई विदेशी चैनल से इसका मतलब ये नहीं है कि देश की भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें। और क्रिकेटर्स का तो बड़ा स्वागत है, अगर वो क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में उभर रहे हैं या आ रहे हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम रहती वो बता सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण चल रहा होगा, कप्तान क्या सोच रहा होगा, तीन स्लिप और एक गली रखे थे, शॉर्ट थर्ड मैन क्यों रखा है, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर अंदर रखा है तो बॉलर को लेग साइड में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए अन्यथा चौका हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमसे पहले वो समझते हैं, तो अपनी समझ को बरकरार रखें। लेकिन साथ ही भाषा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए, देश की भाषा खराब करने का। ये नहीं समझे कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लेंगे चल जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में कभी आपने सुना है कि आई इज गोइंग
0: नहीं,
1: या फिर दे इज कमिंग, तो आप कितने भी बड़े आदमी हो लोग आपको सहन नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में हर तरह की भाषा चल रही है, तो ये ठीक सहन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो इसको सहन कर रहे हैं ना उनका भी अपराध उतना ही बड़ा है, क्योंकि गलत चीज़ को और खास करके भाषा के साथ अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत बड़ी और ज़रूरी बात कही है। अब मैं उस जगह पर आ रहा हूँ जहाँ पहली बार हिंदी में कमेंट्री की परंपरा शुरू होने का ऐलान होता है और सुशील जी उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
1: नहीं, सच बात है, आपने तो भावुक कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल में पढ़ता था
0: जी
1: और उस समय खबर आई कि पहली बार हर जगह से हिंदी कमेंट्री ज़रूरी है, और तब रणजी ट्रॉफी मैचों की भी हिंदी कमेंट्री, मध्य प्रदेश और

0: राजस्थान का मैच था और 15 दिन पहले कहीं से घोषणा हुई कि वो हिंदी में कमेंट्री होनी है। बड़ी ढूंढ मचाई, सबने कहा कि बेवकूफ़ी की बात है, हिंदी जो FPS सिस्टम का खेल 22 यार्ड से जो शुरू होता है उसमें हिंदी का क्या काम। तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैं पहुंच गया वहां पर स्टेशन डायरेक्टर के पास कि मैंने
1: आकाशवाणी इंदौर
0: मैं
1: में
0: हाँ मैं समझिए कि ये मामूली रहन सहन था। और मैं वहाँ पहुंचकर मैंने स्टेशन डायरेक्टर से कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री कर सकता हूँ और आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे याद है उनकी मुस्कुराहट अभी भी याद है।
1: जी,
0: उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट, क्योंकि
1: हो
0: पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम। और उनका सोच
1: ओ,
0: बिल्कुल सही था। उस समय कमेंटेटर्स 50, 55, 60 साल के होते थे।
1: और आप 18
0: बोले
1: के थे।
0: मैं 18 साल का था, तो तजुर्बे का थोड़ा लेकर तो आइए ज्ञान, उसके बाद फिर बात करिए। तो वो ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया।
1: दिल टूटा।
0: मुझे अपमानजनक भी नहीं लगा, क्योंकि आदत थी, गरीब थे तो शायद अपमान की आदत थी। तो वापस चले गए, कोई बात नहीं, टहलते हुए वापस आ गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री होनी थी, कोई मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाकर पूछते क्या वो कर सकता है। तो मुझे ढूंढ कर फिर बुलाया, तो मैं गया वहाँ पर और उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए ज़रा।
1: हाँ,
0: अब मैं तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में करता ही था, तो मैंने कहा किसकी शैली में बताऊँ,
1: अरे
0: जॉन
1: गजब।
0: ऑर्लॉट की शैली में बताऊं, एलन मिगलबरी की शैली में बताऊं, या ब्रायन जॉनसन की शैली में बताऊं। तो बोले अच्छा करके तो बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में तीनों अलग अलग तरह की शैली में कमेंट्री करके बताइए। वो लोग इतने प्रभावित हुए, यार क्या गजब कमेंट्री करते हो तुम तो, लेकिन एक काम करो कि हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है।
1: हाँ,
0: अब मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने हिंदी में कुछ करने की कोशिश की, अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, किसी की सुनी ही नहीं थी कभी। अच्छा हुआ नहीं सुनी थी, अगर सुनता तो शायद किसी की नकल करता, क्योंकि इतना बुद्धिमान तो था नहीं मैं, कोई नकल करने को मिल जाती तो नकल करता मैं। लेकिन जब नकल करने को नहीं मिली तो फिर अकल लगानी पड़ी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: उसमें यह हुआ कि फिर कमेंट्री की, और उन्होंने कहा कि नहीं ये चलो चला तो लेगा ये लड़का काम। तो मैं कमेंट्री की, और कमेंट्री की तो ये समझिए कि खाली प्याले में एक तूफान सा आ गया।
1: ओ
0: लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या हो गई। किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते। और मैं उन्हें दोष नहीं देता, शायद अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी कम थी और परिपक्वता भी नहीं थी। लेकिन कुछ था जो स्टेशन डायरेक्टर को प्रभावित कर गया, उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये हुआ ना, इतनी ज़्यादा आलोचना हुई, तो पिताजी नाराज़ हो गए कि देखिए अपने पास पैसा तो है नहीं और अब तुम नाम के बजाय बदनामी ज़्यादा मोल ले रहे हो, या तो गंभीरता से काम करो और सोचो, अच्छा काम करो, क्रिकेटर करता क्या है उसके व्यवहार की तरफ दृष्टि डालो, उसके हाव भाव, उसका चाल चाल कैसी चलती, क्या करता है स्ट्रोक खेलते वक्त, ये सब सोच के फिर हिंदी में सोचो, अंग्रेजी में सोचना बंद करो, अंग्रेजी कमेंट्री का भूत अपने सिर से निकालो, और फिर अगर करना हो दिल से महसूस करके दिलों को छूने की कोशिश करो। जब
1: वाह।
0: उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी, मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए।
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: ऐसा जब
1: वाह,
0: सोचा ना, तो मैंने देखा कि ये तो एक वाक्य भी बन गया,
1: रिदम आया।
0: शैली भी बन गई। शैली मतलब जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की शैली बन जाएगी। आज मैं 4 वाक्य बोलता हूँ, लोगों को पता चल जाता है कि कमेंटेटर कौन है ये। तो ये जो पहचान बनी ना, इस कारण बनी कि हिंदी में मौलिक रूप से मैंने सोचना शुरू किया। और इसका ही फल है कि आज हिंदी में जितनी भी भाषा, जितनी भी शब्दावली बहुत सारी जो चल रही है, जैसे कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए मैं शंका का गलियारा मैं कहता था कि किसी ने भी कभी सोचा नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: कई इस तरह के शब्द जैसे अपनी नज़रों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, ये तकनीकी शब्द लेकिन बिल्कुल सरल हिंदी में, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही खेल रहे हैं, नज़रों के ठीक नीचे खेल रहे हैं। तो ये जो सिर बिल्कुल स्थिर रख रहे हैं जब खेलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो ये
1: सीमा
0: तमाम
1: रेखा,
0: चीज़ें, ये सब तकनीकी चीज़ें हिंदी में कभी थी नहीं।
1: आपने सीमा रेखा जैसा शब्द भी गढ़ा।
0: क्यों याद दिलाते हैं, मेरी पत्नी का नाम रेखा है।

0: अच्छा
1: तो क्रिकेट में तो उनकी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी रही नहीं,
0: हाँ
1: लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पहले मैं बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए ऐसा बोलता था, मैंने सोचा कि बाउंड्री लाइन भी क्यों बोलूं,
0: हाँ
1: सीमा रेखा, इसका हिंदी में अनुवाद करो, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के,
0: हाँ
1: ये जब बोला तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया घर में आते ही, बोले
0: अच्छा
1: रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन
0: क्या बात है, शानदार बात
1: है।
0: है। यहाँ ना एक गाने की जगह बन रही है, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, गाना थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुझे समझ में आई कि आपने अंग्रेजी में कमेंट्री करके सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा सुनना चाहता हूं।
1: अब क्या वो इमेजिनरी कमेंट्री करते थे कि
0: जी, और किसकी शैली में है वो भी बताइएगा।
1: नहीं, जॉन ऑर्लेट बोलते थे जैसे
0: जी
1: कि फ्रेडी ट्रूमन कमिंग इन फ्रॉम द वेक्सल एंड कम्स इन एंड बोल्स टू सुनील गावस्कर, एंड गावस्कर फॉरवर्ड डिफेंसिवली बैक टू द बॉलर नो रन, इस
0: वाह वाह वाह वाह, क्या ग्रेन्स, और वो जो रिदम है ना इस कमेंट्री का, ये
1: तरह
0: टिपिकल अंग्रेजी रिदम है, इसको आपने नहीं अपनाया था। और इसकी बात आगे
1: की।
0: करते हैं, यहां गाना लेके आता हूं, इम्तिहान फिल्म का गाना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, सुंदर गाने की जगह बनी।

0: मैं वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कमेंट्री का एक माइलस्टोन तय था, एक पैमाना तय था कि ये ऐसी होती है। हिंदी कमेंट्री का आप अपना एक संसार रच रहे थे, वहां किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी?
1: नहीं देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां, एक तो कारण ये कि

0: बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है।
1: जी
0: 70% आबादी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, राज सिंह डूंगरपुर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई गलती करो ना, ये मत सोचो कि रेडियो कमेंट्री है, किसने देखा कि क्या हुआ था। आप अगर गलत भी कुछ बोल दिया तो उस पर टिके रहो। लोग ऐसा कहते हैं, कई हिंदी कमेंटेटर ऐसा सोचते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को समझो कि आप ईमानदारी से बात करो, कि अगर लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी सत्य की इतनी ज्यादा है कि आप गलती करो तो विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। एक किस्सा है, कानपुर टेस्ट मैच में मुझे याद है कि प्रणव रॉय बोल्ड हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे एक गेंद पर, और किसी कमेंटेटर ने कहा कि ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ गेंद आई। तो मैंने कहा कि राज भाई, वो मुझे लगता है कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई, और बैट के बाहरी किनारे को भी छोड़ती हुई ऑफ स्टंप उड़ गया था। तो बोले यार चलो, राज सिंह जी ने तो वो बोला नहीं था, किसी तीसरे ही कमेंटेटर ने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लंच के समय अपन प्रणव रॉय से ही पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो हम लोग लंच के समय गए, राज सिंह जी कितने बड़े आदमी थे, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वहाँ जाकर प्रणव रॉय से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की तरफ निकल गई थी।
1: गजब।
0: तो देखिए, उस कमेंटेटर ने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये गलती हो गई थी कि हम अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में निकली, ऐसा हमने कहा था, लेकिन गेंद दरअसल बाहर की तरफ निकली।
1: उल्टा हुआ था।
0: हाँ, तो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो मेरे दिल में घर कर गई, कि
1: जी
0: आज भी मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। और सच मानिए, लोगों को ये बात पसंद आती है
1: बिल्कुल।
0: कि आप अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो झूठ बोलने की है नहीं, आपसे कोई गलती हुई, आप भी तो इंसान है ना, बैट्समैन से गलती हुई तो वो आउट हो जाता है, अंपायर से गलती हुई तो गलत आउट दे देता है, आप भी तो आखिर इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो।
1: क्या बात है। पहला बहुत ही बड़ा मैच जिसकी कमेंट्री करने का आपको मौका मिला था, वो यादें हमारे साथ बांटिए।
0: नहीं, 1972-73 का जो मैं
1: जी
0: आपको जिक्र कर रहा हूँ कि
1: ब्रेबोन।
0: ब्रेबोन स्टेडियम, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता कि हमारे सामने ऋषि कपूर बैठे हुए थे, डिम्पल कापड़िया, उस समय बॉबी फिल्म साइन नहीं की थी, तब तक फिल्म आई भी नहीं थी,
1: जी।
0: दोनों दिख रहे हैं, विनोद खन्ना को हमने देखा, फिर सामने बैठे थे डेविड, बिल्कुल गंजे
1: वाह वाह, डेविड
0: डेविड,
1: अब्राहम
0: हाँ,
1: जी।
0: तो डेविड वो अपनी भीड़ के साथ नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, और मतलब अद्भुत दृश्य था। विनोद खन्ना को देखा हमने
1: जी
0: कि अपने मतलब इतने आकर्षक ये लोग,
1: हाँ
0: कि अब मैं भी छोटा था ना, 24-25 साल का ही था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, पहला टेस्ट मैच कर रहा था, और सच मानिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूँ या नहीं, मुझे लग रहा है कि मौका मिल रहा है कर लीजिए, तो कोई एक सपना था कि अच्छे काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं माता पिता की सलाह से, तो उस काम की तरफ बढ़ गए। तो ये वो एक पहला मौका, बहुत बड़ा मौका था, और कुछ गलतियां मैं करता था, जैसे 39, जैसे मालवा के लोग बोलते हैं ना,
1: जी।
0: है ना, 69 को, तो
1: हाँ
0: वो शुरू शुरू में गलतियां होती थी, लोगों ने काफ़ी प्रताड़ित भी किया फिर उसको, लेकिन सीखने की, देखिए हमेशा मैंने ये रखा कि सीखने की इच्छा रखी, गलतियां की तो सीखने की इच्छा रखो, कम उम्र थी, सीखने का मौका मिला, लेकिन धारा प्रवाह कमेंट्री करता था,
1: जी।
0: और धारा प्रवाह तो कई बार मेरी पत्नी से लोग, उनकी सहेलियां पूछती हैं कि इतना धारा प्रवाह ये कमेंट्री करते हैं तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं, तो उन्होंने उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला चलता
1: जी
0: रहा, तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह,
1: बिल्कुल
0: क्रिकेट
1: बिल्कुल।
0: कमेंट्री में सबसे बड़ी बात सही शब्द सही जगह, तो चूंकि इसमें साहित्य बहुत काम आता है,
1: बिल्कुल।
0: आजकल के क्रिकेटर्स के साथ दिक्कत यह है कि साहित्य नहीं पढ़ते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो रोमन लिपि पढ़ते हैं, उनको पता नहीं हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है अधिकांश, उसमें 90% लोग जो आज कमेंट्री कर रहे हैं,
1: जी
0: टेस्ट क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़ें भाई,
1: बिल्कुल।
0: साहित्य पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि संवेदनशीलता आती है, संतुलन की भाषा, संतुलन आप कैसे आएगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, सहवाग की सबसे बड़ी बात क्या थी कि संतुलन, बॉडी बैलेंस, तो ये संतुलन कमेंट्री में भी बहुत होता है, संतुलन कैसे आएगा, निष्पक्ष कमेंट्री कैसे आएगी, आज हम देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण कमेंट्री होती है, भारत ऐसा कर देगा तो अच्छा हो जाएगा, भाई आप निष्पक्ष कमेंट्री के लिए बैठे हो,
1: बिल्कुल
0: रिची बेनो ने भी कहा है कि आप

0: निष्पक्षता बरती है। कमेंट्री हमेशा निष्पक्षता का काम है, आप किसी पक्ष के नहीं हैं, तो ये एक बात समझने की है।
1: बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके सुशील दोषी जी। और अब मुझे लगता है कि ड्रिंक्स ट्रॉली जैसे आती है ना क्रिकेट में, वैसे यहां पर गाना आएगा। ऐसा ही

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आज आपने सुना मैटिनी शो कार्यक्रम में। सुशील जी से बातों का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अगले हफ्ते यानी 8 अगस्त को इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर सुनिएगा मैटिनी शो 8 अगस्त को दिन में 11 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। मिलेंगे अगले हफ्ते, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर

0: सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17,00,000 से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक दक्षिण आंतरिक कर्नाटक कोंकण गोवा केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मदन मोहन की तर्ज पर लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना साहिर लुधियानवी के बोल थे। गजल फिल्म की ये प्यारी सी गजल आपने सुनी।
1: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

सुमन कल्याणपुर और सखियों को आपने सुना फिल्म पूर्णिमा में। भरत व्यास के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज थी, फिल्म थी दिल एक मंदिर।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए।

0: ये 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
1: जी
0: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ

0: की ऊर्जा साझा करेंगी, तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
1: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविधा भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, अपना आंचल फैलाती है,
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे नूरजहां फिल्म का ये दो गाना, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था, रोशन का संगीत।

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे। शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

0: गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्यार ने काम किया।
1: ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने
2: भी। मैं चुप रहूंगी, इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी का गाया, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। यादों की महफिल कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, विविध भारती की सुर लहरियों पर आपके रेडियो सेट पर जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लेकर आते हैं बहुत से ऐसे नगमे जो आपके दिल में समाये हुए हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही नगमे हैं। वैसे हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पर इबारत पढ़ी है और वो समझ ही चुके हैं कि आज इस कार्यक्रम में किस हसीन नाज़नीन और मशहूर अभिनेत्री के गीत हमने शामिल किए हैं। ये इबारत जो आज हमने पोस्ट की है फेसबुक पर, आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उनका आना था, मौसम आशिकाना हो गया, हुस्न का वो नाजो अंदाज देख चांद जाने कहाँ खो गया, कुदरत ने न जाने कहाँ से छलकाई ये बदरिया, सौंदर्य ऐसा जैसे सावन के मौसम की रात, नगमों शेर से छलकते हुए जज्बात उस महजबी के, नरगिस के फूल सी जैसी आंखें, फिर प्यार हो जाए तो हम क्या करें, दो सितारों ने कहा ये कौन हुस्न परी आई है जिसने तन

उनकी सुध-बुध को बेगाना कर दिया। वक्त आज भी वहीं ठहरा है, खामोशी में, कभी धड़कनों में, कभी दुआओं में तेरा इंतजार रहता है। गुलों में रंग भरे, जब बाद नौबहार चले, चांद चमके, खुदा करे उस रोज तू आए। श्रोताओ, आज बात है एक नाजनीन चेहरे की, जो जब भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर नजर आता तो लोग देखते ही रह जाते। ये थी अभिनेत्री मीना कुमारी, जिन्होंने अपने अभिनय के फन से सबके दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो उनकी याद से कभी खाली ना हुआ। मीना कुमारी की याद को आज भी दिल कहीं ढूंढता है। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी फिल्मों के चंद नगमे हमने सुरीला सफर कार्यक्रम में लिए हैं और इन्हीं नगमों से इस कार्यक्रम को आज सजाया है। तो बताइए कि फिल्मों में आपको मीना कुमारी की अदायगी कैसी लगती थी? उनकी फिल्मों की कौन सी यादें हैं जो आपके साथ आज भी हैं? उन पर फिल्माया गया कौन सा प्यारा सा गीत है जो आपको आज भी बहुत पसंद आता है? बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। और आपको बताना है इस गीत के संगीतकार।

ये परिंदों की आवाज़ और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओं, जहाँ मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीज़ा का ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीज़ा जो थी वो अपने डायलॉग्स के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख कर भेज सकते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफ़र ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थीं। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थी जिन्होंने अभिनय को भावनाओं कि सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और इन्होंने कुछ गीत भी अपनी पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज मीना कुमारी जी के फिल्मों के गीत से सजेगी महफिल सुरीला सफ़र कार्यक्रम की। एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी को परिभाषित करता ये गद्यांश नज़र आ रहा है जिन्होंने अभिनय को अलग आयाम से नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थी, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं, और बताना है इस गीत के गीतकार कौन हैं और मीना कुमारी जी के साथ कौन नज़र आते हैं।

शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोताओ लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दद को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आँखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया। शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ झलक था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनकी आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओं, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं मीना कुमारी के, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराते बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक है वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय ऊंची आवाज़ या भव्य दृश्यों से नहीं बल्कि आँखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शायरी, उनकी खामोशी और उनके अमर किरदार हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि कुछ कलाकार समय से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते। और आप तो समझ ही चुके हैं कि मीना कुमारी एक मशहूर शायरा भी थीं और मकबूल भी थीं। तो वो किस नाम से शायरी किया करती थीं? क्योंकि मीना कुमारी तो वो लिखती नहीं थीं और उनका एक और नाम था, बल्कि यूं कहें कि दो नाम थे। तो ये नाम अगर आपको याद आए तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर वो पाकीज़ा की हसीन जिनकी अंदाज़ वो पाकीज़ा की हसीना जिनका अंदाज़ बयां दिल को छू जाता था,

चांद सी उनकी सूरत और उनकी जो हर कोई जो अदा होती है, लगता नहीं कि दिल मेरा उजड़े दयार में। और कुछ फिल्मों के गीत भी इन्होंने लिखे हैं, झील सी आंखें, और उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश की है। इस गीत में, इस फिल्म में मीना कुमारी के जो अभिनेता हैं उनको आपको पहचानना है, यानी को स्टार।

अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में राजन कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा पीड़ा मौन समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज़ देता है ये गीत, इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी।

ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म में एक युग हैं। अभिनय में मीना कुमारी जी का कोई तोड़ नहीं था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। उनकी मनमोहक आंखें संवाद खासकर दर्द में डूबे तो दर्शकों के दिल में छा जाते हैं। मीना कुमारी जी अभिनेत्री यदा कदा ही उनकी तरह होती हैं और चित्रलेखा और आरती फिल्म वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिबजान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज़ और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, पूरा जीवन इसी तरह ख़त्म हो गया चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूँगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत था आजाद फिल्म से। आजाद फिल्म में उनके को स्टार कौन थे श्रोताओं? और अगर आप किसी जो खास उनके को स्टार रहे किसके साथ, यानी आप जोड़ी मीना कुमारी की पसंद करते थे या किन के साथ वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी को अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक और श्रोता लिखती हैं, मीना जी की छोटी छोटी मगर नशीली आंखें बेहद खूबसूरत लगती थीं। वो दर्द से भरी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हों, उनको मेरा शत शत नमन। एक और श्रोता ने लिखा है, आपने मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों में सबसे पसंदीदा गीत की चॉइस पूछी है, जो गीत दिल एक मंदिर फिल्म से है और हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का संवाद जो है वो आपके पाँव मैंने देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पे मत उतारिएगा मैले हो जाएंगे। ज़्यादातर श्रोताओं ने इसी डायलॉग के बारे में लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी अपने कलामों में नाज नाम का इस्तेमाल करती थीं और उनके निधन के बाद उनकी कविताओं का संग्रह तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुआ। जी हाँ, नाज नाम से वो लिखा करती थीं। और हमारी एक और श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी को हंसते हुए बहुत कम देखा गया है, अतः मुस्कुराहट पर टिप्पणी मुश्किल है। वैसे जो गीत हमने आपको सुनवाया आज़ाद फिल्म का, उसमें तो मीना कुमारी बहुत ही प्यारी नज़र आती हैं और खिलखिलाती हुई नज़र आती हैं। तो आपको बताना है कि जब वो छोटी थी यानी बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कौन सी फिल्म थी, और फिल्म जो रिलीज़ हुई और रातों रात जिससे मीना कुमारी स्टार बन गई, ये फिल्म कौन सी थी? आपकी सहूलियत के लिए बता दें, 1952 में रिलीज़ ये फिल्म थी।

आवाज आपको पहचाननी है श्रोताओं की। इस गीत को किसने गाया? नूरजहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूनी का लिखा, रोशन की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था, ये कह सकते हैं कि तमगा, कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है, बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज़ हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओ मीना कुमारी का, ये आप ज़रूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफ़र कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूँगा कि उनकी जो फिल्में थीं उनमें आज़ाद, कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का ज़मीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद, अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज़ में खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती, बोलती, बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ?

भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे ये श्रोताओं, और इसकी इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हाँ, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, खासकर उनकी जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं। तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी हैं। वो उनकी कौन सी जो फिल्में हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं? ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में? और आपको कोई एक फिल्म बतानी है

मीना कुमारी जी बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गजल में। श्रोताओं, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूँगा, ज़रूरी हो गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकिज़ा की शूटिंग के दिनों की है। मीना जी और कमाल अमरोही जी की कार का मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाकया इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज़ में है, ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज़ कौन सी है, मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है।

इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया है श्रोताओं, और आप सुन रहे थे भीगीरात फिल्म का ये गीत। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि मीना कुमारी जी को तो मुस्कुराते हुए कम ही देखा है, तो फिर आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे जो आपने सुना अभी अभी? कितनी प्यारी लगती हैं मीना कुमारी जी इस गीत में, ये आप जब इसका पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो मीना कुमारी की ब्लैक एंड वाइट फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वो अपने चेहरे के भावों से भी जबरदस्त एक्टिंग करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो किरदार को जी रही हूँ।

सितारों को आपने पहचाना होगा श्रोताओं, इन दो सितारों की कौन सी वो फिल्म है दूसरी जो आपको अच्छी लगती है?

नूर फिल्म के इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं, और ये गीत किस फिल्म का है इसकी भी एक झलक आपको सुनवा देते हैं।

खूबसूरत फिल्मों के अलावा श्रोताओं, भाभी की चूड़ियां, जिंदगी और ख्वाब, प्यार का सागर, आजाद, बहाना, चिराग कहां, रोशनी कहां, यहूदी की लड़की, मिस मैरी, शारदा, फूल और पत्थर, ये और फिल्में थी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत देश भर में 10,000 स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में भी अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार इस कार्यक्रम में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए की कमी की है। घटी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के अनुसार व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत पटना में 3,227 रुपए से कम होकर 3,018 रुपए हो गई है। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में संशोधन किया है। शिक्षा विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार सरस्वती विद्यानिकेतन मॉडल विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को अब वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया से अलग नहीं रखा जाएगा। इसके लिए 21 जुलाई को जारी अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि पूर्व अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए ई कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के अंतर्गत मौलवी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 15,000 रुपये तथा फोकानिया प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। राज्य में मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई। इस अवधि में किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे अधिक 74.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। औरंगाबाद जिले ने राज्य में मेडिकल टेली कंसल्टेशन सेवाओं में एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग की जुलाई महीने की रैंकिंग में जिले में 48,438 टेली कंसल्टेशन दर्ज किए गए। इससे पहले जून माह में भी जिला 44,042 टेली कंसल्टेशन के साथ पहले स्थान पर रहा था। आज असहयोग आंदोलन दिवस है। वर्ष 1920 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जन जन का आंदोलन बना दिया था। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज से विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू हो गया है। प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक यह सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर प्रदेश भर में स्वास्थ्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श शिविर और जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नगर निकाय में काम करने वाले सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। हड़ताल के चलते गली मोहल्लों में कचरे का अंबार दिखने लगा है। इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि सफाई कर्मी अपनी नौकरी स्थायी करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मुल्क गिर इंसदाद नशा मुहिम का आगाज़ करेंगे। मुहिम के तहत पूरे मुल्क में 10,000 मकामात पर नशा से पाक बेदारी कैंप का इनाकाद किया जाएगा। रियासत के सभी ज़िलों में मुहिम के तहत नौजवानों को इंसदाद नशा के सिलसिले में बेदार किया जाएगा और विकसित भारत की तामीर में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए तरगीब दी जाएगी। यूथ रोजगार और हुनर फरोग महकमा के मुताबिक इस प्रोग्राम में मुतल्लिका ज़िलों के इंचार्ज वजीर भी शरीक होंगे। तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये की कमी की है। घटी हुई कीमत आज से नाफिज हो गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पटना में 3,227 रुपये से कम होकर 3,018 रुपये हो गई है। रियासती हुकूमत ने असातज़ा ट्रांसफ़र ज़ाब्ता नामा 2026 में तरमीम किया है। महकमा तालीमात के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों में मामूर टीचर्स को अब मौजूदा ट्रांसफ़र के अमल से अलग नहीं रखा जाएगा। इसके लिए 21 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन में दर्ज प्रोविजन्स में नरमी लाई गई है। महकमा तालीमात ने वाज़े किया है कि सबका नोटिफिकेशन की सभी शरायत उसी तरह लागू रहेंगी। वज़ीर आला तलबा हौसला अफजाई मनसूबा के तहत अक़लियती तालिबात के लिए ई कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल शुरू हो गया है। मनसूबे के तहत मौलवी अव्वल डिवीज़न से पास तालिबात को 15,000 रुपये और फ़ौकानिया फर्स्ट डिवीज़न से पास तालिबात को 10,000 रुपये की हौसला अफजा रकम सीधे उनके बैंक खाते में मुंतकिल की जाएगी। रियासत में मानसून के दौरान अब तक मामूल से 43% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई। इस दौरान किशनगंज ज़िले के तैयबपुर में सबसे ज़्यादा 74.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच महकमा मौसमियात ने अपनी पेशगोई में बताया कि आज रियासत के बेशतर हिस्सों में हल्की बारिश का इम्कान है। वहीं शिमाल मशरक़ी, शिमाल मगरबी, जनूब मशरक़ी और जनूब मगरबी खित्तों में कुछ मकामात पर तेज़ हवा के साथ बादल की गरज और बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। औरंगाबाद ने रियासत में मेडिकल टेली कंसल्टेशन खिदमात में एक मरतबा फिर अव्वल मकाम हासिल किया है। महकमा सेहत की जुलाई माह की रैंकिंग में

जिले में 48,438 टेली कंसल्टेशन दर्ज किए गए। इससे कबल जून माह में भी जिला 44,042 टेली कंसल्टेशन के साथ अव्वल मकाम पर रहा था। आज अदम तावुन तहरीक का दिन है। साल 1920 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अदम तावुन तहरीक की अपील की थी। इस तहरीक ने भारत की जंग आज़ादी को अवामुन्नास की तहरीक की शक्ल दी थी। इस मौके पर मुतअद्दिद जगहों पर महात्मा गांधी और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। आज से आलमी रज़ात हफ्ता शुरू हो गया है। फी साल 1 से 7 अगस्त तक ये हफ्ता मनाया जाता है। इसका मकसद बच्चों के लिए रज़ात की अहमियत के तहत बेदार बढ़ाना और माओं को रज़ात के लिए तरगीब देना है। इस मौके पर पूरी रियासत में सेहत अदारों में बेदारी प्रोग्राम और एडवाइजरी कैंप मुनाकिद किए जा रहे हैं। रियासत में बल्दियातों में काम करने वाले सफाई अमले और ड्राइवरों की हड़ताल के सबब सफाई सुथराई का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हड़ताल के सबब गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार नज़र आने लगा है। इससे मुतअद्दी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि सफाई अमले अपनी नौकरी मुस्तकिल करने समेत दीगर मुतलबात की हमायत में पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लिए सुनिए रोजगार सूचना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के कुल 500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.nationalinsurance.nic.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

पर भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट

0: में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
2: वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2000

0: 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस

ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। ये हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का

0: सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे थे फिल्म यहूदी में लता मंगेशकर और सखियों को शैलेंद्र के बोलते शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रख

0: रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगे इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी
1: तो
2: है।
1: सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

नगार शकील बदायूनी मासकार हेमंत कुमार गीता दत्त की आवाज में साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म अर्धांगिनी में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला वसंत देसाई ने। और अब आपकी नजर कर रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: पेशकर चितलकर और साथियों की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सी राम चंद्र के सुरबद्ध के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की,
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम। श्रोताओं, आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत, तो सुनिए प्रोग्राम। देखिए कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो नहीं। आज सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओं, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस बीड शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओं, आइलैंड नगर केटगांव से इसी गीत को पसंद किया भाव साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परभणी से रणजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, पैरी पार्वती और राधा चंद्राकर की फरमाइश आपने सुनी।

राहुल देव बर्मन की तर्ज, गुलजार के बोल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें, फिल्म आंधी में आप सुन रहे थे ये गीत आंधी का। और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। वारुंगा फाटा जिला हिंगोली से वैष्णवी, अश्विनी, कुंडलिक और पांडु रंग की ये फरमाइश थी। श्रीकांत श्रीवास्तव, श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव, ये दो नाम हैं पीरनगर गाजीपुर के। और इसी गीत को सुनना चाहा बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल ने। और इसी गीत के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई अहमद और मान सिंह की। ये फरमाइश है ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय और शीतल ने और GCF स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निम्मो की ये फरमाइश है। शीतलानगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से कुमार प्रथमेश प्रणाली, कड़ा रोड से कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से। विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है। महेंद्र नागेश, पारस जयेश, ऋषभ संयम, सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा और ऋतु की फरमाइश आपने सुनी।

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, सहल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निज़ामाबाद से इस गीत को सुनना चाहा ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये फरमाइश थी।

लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के, हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए, और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मन चाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर, विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रहेगी।
1: और ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है। ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं। बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जी मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए पहले मुझे।
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरता हूँ अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है, किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है।
1: हाँ हाँ,
0: अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो ज़बान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो
0: जी।
1: कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था? कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूँ? कहाँ आप इतने बड़े जमींदार और कहाँ मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूँ? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
0: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
1: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा? मैं अभी नितालिया को भेजता हूँ।
0: जी। चोबोकोव चले गए, अब नितालिया आएगी। ये क्या? अरे, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या? मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी भाई आंख फड़क रही है।
2: अरे, यहाँ तो आइवन लोमो विराजमान है।
0: आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नितालिया?
2: जी हाँ।
0: क्या?
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
0: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
0: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
0: जी।
2: आपके लिए कुछ खाने को लाओ।
0: जी जी जी, आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है। आप

0: कृपया बैठ जाएं तो।
1: लीजिए बैठ गई
0: जी।
1: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं
0: जी।
1: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
0: कुमारी नितालिया
1: जी,
0: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
1: कहिए
0: जी। मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
1: आपके लिए कंबल लाऊं?
0: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
1: बात क्या है, आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं?
0: देखिए कुमारी मिथालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे, और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
1: क्षमा कीजिए
0: जी,
1: क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
0: जी हाँ, क्यों?
1: यूं नहीं, सोच कर बताइए।
0: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
1: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
0: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
1: इसलिए कि वो बागीचा हमारा है।
0: अजी, मैं चेरी को उस बागीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
1: जी हाँ, मैं भी उसी बागीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
0: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बागीचा आपका है।
1: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
0: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
1: अरे, मगर वो बागीचा आपका कब से हुआ?
0: जब से मैंने होश संभाला।
1: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
0: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी मितालिया, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें यह साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बागीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
1: देखिए, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
0: मैं जानता हूँ कुमारी नितालिया, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं हैं जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
1: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
0: जी,
1: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती हूँ।
0: कुमारी नितालिया, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
1: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बागीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
0: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी नितालिया, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें।
1: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूं कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
0: जी
1: है।
0: नहीं जी, नहीं जी, नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
1: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
0: देखा है ना सीना दूरी। कुमारी नितालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
1: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
0: ओ, मेरे गले में कांटे उगाए हैं। ठहरिए, जरा पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
1: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
0: जी नहीं, वो मेरा है।
1: वो बगीचा हमारा है, और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
0: क्या?
1: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
0: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
1: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
0: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
1: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
0: कुमारी नितालिया, कुमारी नितालिया, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता, तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
1: नहीं, हमारा है।
0: जी नहीं, मेरा है।
1: हमारा है।
0: मैं कहता हूँ मेरा है।

0: जी क्या हो रहा है?
1: बाबा आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है।
2: हमारा है और किसका।
0: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था, और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
0: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
1: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
0: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
0: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लपो मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने की बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे
0: दूंगा। जी हाँ, क्यों नहीं। बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूं, किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं? क्या अधिकार है आपको?
2: ये तो मैं ही जानता हूं मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदि नहीं।
0: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
2: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
0: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
2: अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
0: मैं तो जैसे आपके इस आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूं, आप मेरे पड़ोसी नहीं हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं।
2: क्या कहा?
1: बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
2: अब मैं इसे क्या कहूं?
0: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
1: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
2: मैं कुछ करूं?
1: हाँ।
2: लेकिन मैं क्या करूं?
1: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाएं।
0: खोद लाएं? कुमारी नितालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
2: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
0: आप मेरी यूं खिल्ली ना उड़ाइए। मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
1: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
2: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
0: हाँ, इसका फैसला अदालत में ही होगा।
2: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ, और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालतों में ही।
0: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए, जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे हैं।
2: तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
1: इनके घराने में ठीक किसका था?
2: हाँ, इसका दादा संकी।
0: दादा संकी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
2: अरे, तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
1: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं ततैया मिर्च थी, और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
0: मेरी बही ढंग था झंझनाने लगे, और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और दिल, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे मुझे मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा। मेरी टोपी कहाँ है?
2: अरे तो मक्का हो, अरे भी हो,
0: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही मेरी टोपी। अब दरवाजा किधर है? मेरी टांग सुन हो गई।
2: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
0: हाँ, जा रहा हूँ।
2: इतना और सुनते जाओ। हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ,
1: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
2: चला गया कमीना कहीं का।
1: हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
2: और आस्तीन के इस सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
1: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
2: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: भोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
1: कैसा प्रस्ताव?
2: अरे, ब्याह का प्रस्ताव। कमीना, जलील, गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
1: पहले क्यों नहीं बताया?
2: अरे, मैं क्या बताता? तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
1: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
2: अरे अरे, क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?

0: बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
1: क्या अब उसे मैं बुलाने जाऊं?
0: हाँ बाबा, अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
1: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
0: बाबा आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
1: अरे बेटी नितालिया, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? हे भगवान, अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊं?
0: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
1: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
0: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसे सम्मान किया, कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
1: निदालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। अच्छा। कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
0: वो कब आएंगे?
1: अरे भाई, उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
0: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
1: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
0: कैसे?
1: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया, और अब
0: क्या मेरे कारण?
1: और नहीं तो क्या
0: बाबा, अब आप मेरे साथ वैसा व्यवहार ना कीजिए।
1: अच्छा बाबा, अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो, वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
2: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है,
0: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
2: वो बगीचा मेरा है।
0: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है। आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
2: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बगीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
0: जी हाँ जी हाँ, हमसे भूल हो गई, आप कृपया क्षमा करते।
2: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
0: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब आप कोई और बात कीजिए।
2: वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
0: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
2: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
0: क्यों?
2: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
2: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था, और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
0: डब्बू आपने लिया किससे था?
2: अजी, ये पहले मेरो नोव के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई, और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरो नोव इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरो नोव के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ ना कह सका।
0: 125 रूबल?
2: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
0: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
2: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
0: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। ओ।

0: हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
1: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
0: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
1: जी
0: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। एक पूरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
1: तो सुन लीजिए कुमारी मितालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
0: जबड़ा छोटा है?
1: जी
0: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
1: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
0: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
1: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
0: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
1: जी
0: किस राजघराने में से है, किस स्कूल का दीपक है?
1: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
0: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
1: ना ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा।
0: आप होंगे, होंगे क्या आप हैं?
1: जी
0: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचे को अपना बताया और अब अपने खाज मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
1: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
0: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
1: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
0: लेकिन सच क्या है?
1: आप ही कहिए कि आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं।
0: कहाँ छोटा है?
1: छोटा है।
0: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा
1: दूं। और मेरा बस चले तो मैं वही गोली। मेरा दिल फिर डूबने लगा।
0: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
1: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
0: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं होऊंगी।
1: यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, अरे गणपति गणपति गणपति।
0: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वाकर अमर हो गया है और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
1: ओ मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
0: अब मैं चुप नहीं होंगी।
2: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
0: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
1: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
1: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं?
2: हाँ, तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है, पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान करना।
1: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुटलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
1: अरे काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन, ये मत भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है। हाँ। और मुझे गुस्सा बहुत आता है।
1: ओह।
2: और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि
1: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर बड़ा जोर धड़कने लगा। अरे हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल,
0: हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियां मारा कीजिए।
2: मक्खियां उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं। क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
1: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
2: आइवन।

0: मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
1: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
0: ओ, तुम्हारा तो सर फट गया।
1: हाँ, देर ही कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए।
0: एक मूर्ख क्या समझे,
1: और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा ना सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
0: हाँ, मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
1: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। मेरी जान, आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
0: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
1: मेरी टांग आ गई, मेरा दिल कहाँ टूट गया। डॉक्टर,
0: कमीना, बेशर्म, गधा,
2: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा, पापा जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन, आइवन, बाबा आइवन चले गए।
3: क्या नितालिया, नितालिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो, तो मेरा दिल पीट रहा है। बेटी तो मेरा एक काम करो।
2: क्या बाबा?
3: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
2: जाने दीजिए बाबा, अब आप मरे को क्या मारेंगे?
3: अरे बेटी, मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
2: अपने लिए?
3: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं बाबा, नहीं।
3: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू ही ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
0: ला दो ना।
3: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
2: जिंदा है।
3: लो लो, पानी पी लो, पानी पी लो।
0: मैं कहाँ हूँ?
4: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। हाँ? अब तुम झट से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
0: हाँ? क्या?
4: हाँ बाबा, हाँ, नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
0: क्या सच?
4: चुप चुप। नितालिया बेटी, लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
2: बाबा।
4: आइवन जी, ये लो नितालिया का हाथ, मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
0: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
4: अच्छा?
0: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है।
2: जी, मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
4: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
0: हाँ, याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
2: ये कई गुना घटिया है।
0: जी नहीं,
2: ये आपको मानना पड़ेगा।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: मैं कहती हूँ घटिया है।
0: जी नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया
2: है।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
4: तुम लोग
0: जी है,
4: मैं ही।

अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपकी संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे, हाँ, और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
3: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
2: हाँ,
3: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है। अब उसको सुन के लोगों को बजाना है, समझ गए?
2: जी।
3: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था।
2: जी।
3: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ, वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बिगड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बात बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींद गई मेरा चैन गया, कब जब होश ना था कुछ बात हुई हाय मैं, ये जैसे गया।
2: हाँ।
3: अब आंखों की बनी तनम को बहुत भाग गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में मैं देखो चली आ गई, कहां लाली गई। अब ये जो आता है,
2: हाँ,
3: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना, धिंता का, तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइफ म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक पे आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
2: बिल्कुल,
3: तो जैसे आपने बजाया बजाया तो जैसे जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट दोबारा लेते हैं, तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या है कि जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे
2: जी,
3: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूँ। आज क्या क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस जॉइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है, तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
2: नहीं आती है। जी जी जी
3: जी।
2: तो कोई एक गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था उन दिनों, 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था, या एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की रिकॉर्डिंग?
3: एक दिन।
2: अच्छा,
3: एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विद सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विद कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में, और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11:30 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार, वो भी लाइव, 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए हैं। और जब थोड़ा

0: आ गई, तो एक गाना 2 दिन में भी किए हैं।
1: हाँ जी
0: तो वो ऐसा नहीं है, वो 2 दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना, ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए हैं अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, मैं उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था,
1: जी
0: लाइव लाइव ऑर्केस्ट्रा भी। तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर वो ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस, मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है, उनमें हेडफोन में उनको आता था, जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए, मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून, ये 98 के करीब के गाने हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी, मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
1: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था।
0: हाँ, ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की, एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे दिल लगी। देखिए, जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की
1: जी
0: कृपा होती है।
1: जी
0: उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
1: बिल्कुल
0: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया, ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और प्रेमिला जी, मतलब मिसेस चोपड़ा,
1: पामेला
0: हाँ
1: जी
0: प्रेमिला जी, तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए, वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है, वो इसका टोन ज़्यादा बेटर है।
1: मिलता है।
0: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे, इतने में यश जी आ गए। यश जी आते, हम दोनों चुप हो गए। तो हम दोनों को देखते, यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोलो नहीं बोलो तानसेन क्या बात है। मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है। और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो, मैं बोला अभिजीत ज़्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम, हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारा काम है, म्यूज़िक का हमारा नहीं है, म्यूज़िक का काम है म्यूज़िक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है। तो ही वेरी इज नो वेरी वेल के इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहा है कि अभिजीत सही है, तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
1: बहुत
0: तानसेन
1: बड़ी
0: जी
1: बात,
0: अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
1: क्या बात। और बहुत शानदार गाना गाया उस
0: नहीं नहीं बहुत अच्छा
1: आवाज
0: गाया,
1: में, जो सैफ अली साहब की आवाज
0: सूट
1: थी
0: हुई, और
1: बिल्कुल स्वीट हुई।
0: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता,
1: जी
0: कुछ तो काबिलियत होती है।
1: जी
0: और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, बट जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था आई।
1: जी।
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है
1: बस
0: जी।
1: उस पल का इंतजार होता है,
0: हाँ
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ मगर
1: मतलब वो एक।
0: पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्यभट्ट जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भर के,
1: आहा, अमर प्रेम का।
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूँ कि बस ये आइडियल चीज़ें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। तो मैं चाहूँगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आर डी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज़ या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात, किशोरदा उस वक्त जिंदा थे,
0: और आर डी बर्मन
1: और
0: साहब से या
1: आर डी जी के साथ तो इसने काफ़ी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित
0: अमित
1: कुमार।
0: कुमार?
1: तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफ़ी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के, बोला नहीं, नहीं, नहीं। सेन साहब के लड़के बहुत मतलब, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आया, अमित नहीं आया, इतने में अमित नहीं जाए। तो उनको बोला, देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं, नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं
1: और
0: जा
1: उसके
0: सकता
1: बाद
0: है।
1: में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा,

0: पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही,
1: जी
0: तो जिसका वो गाना था हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना ना दिल से दूर,
1: जी
0: और नीरज साहब के साथ मैं पिक्चर की जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो
1: हाँ
0: किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया,
1: बहुत सुंदर
0: था
1: है।
0: कदम कदम पर इम्तिहान हर इम्तिहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था, और नीरज साहब का लिखा हुआ था जा

0: मेरे नूर।
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई
1: वाह
0: बुझाए,
1: वाह सुंदर।
0: हाय हम तो सबको गले लगाए, हमें

0: जाना।
1: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफ़ी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने सुरमा भोपाली। माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफ़ी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
0: किस्मत।
1: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। माया
0: गीतकार माया गोविंद के साथ आपने
1: गोविंद के
0: काम
1: साथ
0: किया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
1: नहीं,
0: माया
1: उनमें एक
0: गोविंद,
1: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
0: रानी मलिक थी जी।
1: बहुत अच्छी राइटर थी, काफ़ी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफ़ी बड़ा हिट रहा। वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
0: बहुत सुंदर गाना।
1: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना पहला गाना था। इससे
0: अच्छा।
1: पहले उन्होंने अताउल्ला के गाए थे, अच्छा जैसे लादी रे तूने, रफ़ी साहब के वर्जन गाए थे। मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर,
0: वो ये
1: वो
0: था।
1: ये था।
0: हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ पहला गीत गाते समय, क्या उनका वो रहा
1: नहीं वो
0: उनका?
1: गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहाँ काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैंने कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज़ कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। फिर सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया। और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
0: जी। तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे

इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं।

0: भी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे, और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहाँ दिल में नहीं लगोगे।
0: सही कह रहे
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज़ है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत, और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है, तो
0: जी।
1: इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि फलाना राइटर है या

0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहाँ दिल में नहीं लगोगे।
0: सही कह
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज़ है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है। तो
0: जी।
1: इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं ज़रूर कह देता हूँ कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूँ, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूँ, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते हैं।
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहाँ थोड़ा सा आवाज़ 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का ज़माना था, रियाज का ज़माना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज़ 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
1: नहीं,
0: कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा
1: अनुराधा
0: पौडवाल जी
1: जी,
0: हैं, अलका याग्निक जी,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते हैं सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट,
0: अरे क्या
1: जॉली
0: बात।
1: मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, पैमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो,
0: पूर्णिमा के नाम से
1: पूर्णिमा
0: हैं।
1: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेठी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया। और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हों, सोनू जी रहे हों, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं,
0: जी
1: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए। और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
0: नहीं, वो
1: क्योंकि
0: बात नहीं है, वो
1: वो उनको
0: रिस्पेक्ट
1: पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट
0: और
1: कि
0: कला
1: यार
0: के
1: वहाँ
0: प्रति,
1: जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं
0: और
1: करना है,
0: कला के प्रति समर्पण।
1: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
0: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
1: जी बिल्कुल, सुनिए।
0: कौन सा गाना?
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है
0: तुझे चाहना मेरा काम
1: काम
0: है,
1: है। जी
0: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है
1: जी
0: दिलीप
1: जी
0: सेन
1: जी
0: साहब
1: जी
0: ये,
1: जी
0: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है।
1: नहीं, हम
0: और
1: केसर सेन की औलाद हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी, तानसेन के शिष्यों
1: हाँ,
0: में गिने
1: शिष्यों
0: जाते
1: में।
0: थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे, और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में। लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहाँ पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए
1: हाँ,
0: हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक एक चीज़ याद रखिएगा, फोक जो है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी।
1: फोक कहते हैं आमद को, एक चीज़ आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस ज़माने में, आज से 100-200 साल पहले, दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस
0: बिल्कुल
1: तरीके से करके ज्वाइंट करती दे रहती थी। तो वहाँ से ये फोक ट्यूने निकली।
0: शुरुआत।
1: जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं,
0: जी
1: मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही ता जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
0: कई गीतों में आपने ये प्रयोग किया।
1: नहीं, पर मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं,
0: जी

0: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए, उनका एक गाना था, अमें की याते गाम ना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडोप्ट किया उस गाने को, हम मेरी चोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करू ना। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
1: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि वो
0: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक ट्यूनिंग के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को भी हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहाँ हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वैरायटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए, आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले नहीं आ रही है ये दिलीप सेन जा रहा है, या नहीं ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं, आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: जी तब लगेगा जब जी वाला काम दूसरों का दिल जीतोगे।
1: जी चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, कौन सा गाना?
0: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
1: बहुत सुंदर गाना,
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में
1: जी
0: मिला।
1: हाँ,
0: इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: देखिए दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूँगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक
0: अच्छा,
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर।
1: सफर जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी
1: संगीत
0: जी
1: में रहा है।
0: जी जी
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है,
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ
1: बेटे भी
0: गए
1: आने वाले हैं अभी
0: हैं
1: जल्द। जी
0: जी, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो
0: जी
1: आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए,
0: जी
1: कविताओं की मालूमात रखनी
0: भाषा
1: चाहिए,
0: की।
1: भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीज़ें हैं सिंगर के लिए भी ज़रूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं है कि 100 राग हैं या 50 राग हैं या बेसिक दो चार पांच, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण या भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो चार पांच रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए। जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए।
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है,
0: जी,
1: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है। हम हर
0: जी
1: धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर
0: करते
1: संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है,
0: जी
1: प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुना।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश हो
1: मैं
0: जाएंगे।
1: आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूं कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटा कटा जटा टज प्रभावता वितस्थले वीरो विलंब विलंब भुतंग तुंग मार जटा टविगल ज्वल प्रभाव भावितस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर के झपेट दिल दुष्ट को दपेट जर पेट चकल न बजे न कचरा तो न तो होता कटाकट की रिसे न पटा पट पटी पटी पाट कभी गुह की लकार की लजू है जी लकार पड़ी भीड़ भी लगार कटे रखे जनिदान कहे तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारू रघुवंश को अनियारो जन पेजे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठ दंड मुंड दन न उमन न सुख न है कल को भूपत तो को ना वेलो अल बेलो न रेलो रूप रेलो चल राग सनी कर को आन सकते की रहते उमंडी खल खानी झंडी पति सो कमंडी कुल खानी दिने कर को। ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है
0: क्या बात।
1: जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, जो बोलते हैं ना लोग परदेश का है, कहीं का नहीं है, हमारे छंद है आज से 10,000-20,000 साल पहले के, ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा, चल मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा, तो इससे आप कुछ भी रैप वगैरह बना
0: जी
1: सकते हैं।
0: अरे अरे
1: तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विविध भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार।
0: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक स्वामी विवेकानंद की 1892 में मैसूरू की ऐतिहासिक यात्रा की याद में बनाया गया है, जब उन्होंने मैसूर के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर से मुलाकात की थी और शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा के लिए मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारक का भ्रमण किया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने स्मारक में एक पौधा भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट निपटान किया जा चुका है और शेष अवशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई गई। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा सेवानिवृत्त का आज नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल सुबह 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किए। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत 7 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 28 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए, आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी। युवाणी कार्यक्रम में आज हमारी बात के अंतर्गत सुनिएगा स्वतंत्रता संग्राम की नींव, असहयोग आंदोलन और दीन दोस्ती का, क्योंकि कल 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे हम मनाते हैं। और ऑनलाइन ट्यूटर में करियर के बारे में जानकारी दी जाएगी। संध्या 6:00 भोजपुरी लोकगीत सुनिएगा और 6:05 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। संध्या 6:40 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत।

गुड इवनिंग रोहतास। हमारे ये संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:15 से। शाम 7:30 पटना केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद पटना केंद्र से ही हम रिले करेंगे जिले की हलचल।

शाम 7:50 पर आप सुनेंगे हमारा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। श्रोताओं, इसका शेष भाग हम सुनवाएंगे रात्रि 8:15 से। रात्रि 8 बजे से दिल्ली से हम रिले करेंगे इस सप्ताह संसद में कार्यक्रम।

रात्रि 8:30 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8:45 पर समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत, और रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से पेश होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 9:30 विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हम रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रपट ताराने, और रात्रि 10:05 पर 55 मिनट पर एक बार फिर आप सुनेंगे कल के हमारे कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी सासाराम है। शाम के 5:10 हो रहे हैं।

अरविंद सिंह और सौम्य वर्मा की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये हनुमान भजन। आकाशवाणी सासाराम से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये कांवर भजन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में शिव भजन। और अब कार्यक्रम के अंत में हम सुन रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये राम भजन।

और श्रोताओ, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब समाप्त होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी कार्यक्रम में हम अपने सभी युवा साथियों का स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम को लेकर आज हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। नमस्ते दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारी बात के अंतर्गत हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम की नींव, असहयोग आंदोलन और दीन दोस्ती का। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि कल यानी 2 अगस्त को विश्व फ्रेंडशिप डे हम मना

दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारी बात के अंतर्गत हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम की नींव, असहयोग आंदोलन और दीन दोस्ती का। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि कल यानी 2 अगस्त को विश्व फ्रेंडशिप डे हम मनाते हैं। ऑनलाइन ट्यूटर में करियर के बारे में भी थोड़ी बात होगी और फिल्मी गाने तो हम सुनवाएंगे ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी बात के अंतर्गत। पहले स्वतंत्रता संग्राम की नींव, असहयोग आंदोलन। दोस्तों, असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और युगांतकारी अध्याय है। सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला ऐसा प्रयास था जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलने लगी। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत के पीछे कई गहरे कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें स्वशासन या कुछ रियायतें देंगी, लेकिन इसके बदले उन्हें रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून मिला। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग के एक शांतिपूर्ण सभा बुलाई गई, जहां जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इस नरसंहार और खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के धोखे ने महात्मा गांधी को पूरी तरह झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब केवल प्रार्थनाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार के साथ पूरी तरह से असहयोग करना होगा। दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन केवल इसलिए टिक पाया है क्योंकि भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। यदि सभी भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी हुकूमत एक साल में ढह जाएगी। इसी विचार के साथ अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और शांतिपूर्ण था और कुछ इसके तहत कदम उठाए गए, जैसे कि उपाधियों का त्याग। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर और कैसरे हिंद जैसी मानद उपाधियां लौटा दी। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। लोगों ने खादी अपनाई और चरखे को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। आंदोलन के अंतिम चरणों में सरकार को टैक्स देने से भी मना कर दिया गया। दोस्तों, इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग, विद्यार्थियों, वकीलों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, तब 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना घटित हो गई। वहां एक उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी सत्य और अहिंसा के परम पुजारी थे। इस हिंसा से दुखी होकर उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि कई राष्ट्रवादी नेता इस फैसले से निराश हुए, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। दोस्तों, भले ही असहयोग आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्य जैसे कि एक वर्ष में स्वराज को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इससे पहले स्वतंत्रता की लड़ाई केवल पढ़े लिखे

मध्यम वर्ग तक सीमित थी, असहयोग आंदोलन ने इस देश के कोने कोने और आम जनता तक पहुंचाकर एक जन आंदोलन बना दिया। इस आंदोलन ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार और जेल जाने का डर पूरी तरह से निकाल दिया। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया। तो दोस्तों, इस तरह असहयोग आंदोलन ने देशवासियों के भीतर सामूहिक चेतना और देश प्रेम की ऐसी अलग जगाई जिसने आगे चलकर सभी ने अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इसी अभूतपूर्व जन जागृति के कारण इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वास्तविक नींव माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम की नींव असहयोग आंदोलन के बारे में। अब हम सुनवा रहे हैं एक गाना और गाने के बाद हम बात करेंगे दीन दोस्ती का। तो लीजिए, पहले सुनिए ये गाना।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे चिन्मय श्रीपदा, रवनी राफेल और सत्य प्रकाश डी की आवाज़ों में ये गीत। और इस गीत को मैंने लिया था मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी फिल्म से। दोस्तों युवाणी कार्यक्रम में अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिएगा हमारे साथ।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
2: दोस्तों, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है युवाणी कार्यक्रम में और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। चलिए बात करते हैं दिन दोस्ती का। यह कल 2 अगस्त को विश्व फ्रेंडशिप डे हम मनाते हैं। दोस्तों, फ्रेंडशिप डे यानी कि मित्रता दिवस दोस्ती के अटूट और निस्वार्थ रिश्ते को समर्पित एक बेहद खूबसूरत और ख़ास त्यौहार है जो पूरी दुनिया में

ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत सहित कई देशों में हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाने की परंपरा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में सच्चे दोस्तों की क्या अहमियत है और वे हमारे जीवन को कितना सुंदर और खुशहाल बनाते हैं। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर कई तरह के रिश्तों से जुड़ता है। माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों के रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन दोस्ती ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद अपनी मर्जी और समझ से चुनते हैं। दोस्ती का रिश्ता खून का नहीं बल्कि दिल का होता है। इस पावन और अनमोल रिश्ते को सम्मान देने और दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ही हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्तों, फ्रेंडशिप डे मनाने की शुरुआत के पीछे एक भावुक कहानी जुड़ी है। माना जाता है कि साल 1935 में अमेरिकी सरकार ने एक व्यक्ति को मार दिया था। अपने दोस्त की मृत्यु के गम में उसके परम मित्र ने भी आत्महत्या कर ली थी। दोस्ती की इस गहराई और एक दूसरे के प्रति समर्पण को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने अगस्त के पहले रविवार को नेशनल फ्रेंडशिप डे घोषित कर दिया। धीरे धीरे यह दिन पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। एक सच्चा दोस्त जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। सुख दुख के हर मोड़ पर दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या निराश होते हैं तो एक दोस्त ही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें सही सलाह देता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। सच्चे दोस्त कभी हमारी कमियों पर हमारा मजाक नहीं उड़ाते बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। भारतीय इतिहास और पुराणों में भी कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की दोस्ती इसके सबसे बड़े उदाहरण है, जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची दोस्ती में अमीरी गरीबी या जात पात की कोई जगह नहीं होती। दोस्तों, फ्रेंडशिप डे के दिन हम दोस्त एक दूसरे की कलाई पर रंग बिरंगे फ्रेंडशिप बैंड या धागे बांधकर जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं और हम कह सकते हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप डे हमें अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा सा समय निकालकर पुराने दिनों को याद करने और रिश्तों को फिर से मजबूत करने का मौका देता है। दोस्ती एक ऐसा पौधा है जिसे विश्वास, प्यार और सम्मान के पानी से सींचना पड़ता है। यह दिन सिर्फ उपहार देने का नहीं बल्कि दिल से दोस्तों का शुक्रिया अदा करने का दिन है। हमें अपने सच्चे दोस्तों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात दिन दोस्ती का। अब हम सुनवा रहे हैं दोस्ती से ही संबंधित ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ों में, और इसे हमने लिया था दोस्ताना फिल्म से। चलिए अब ऑनलाइन ट्यूटर में करियर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूटरिंग वर्तमान समय में एक बेहतरीन और तेज़ी से बढ़ता हुआ करियर विकल्प है। डिजिटल क्रांति और इंटरनेट की सुलभता ने घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने और देने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। यदि आपको किसी विषय का अच्छा ज्ञान है और आप उसे दूसरों को समझाने में कुशल हैं, तो आप इस क्षेत्र में एक सफल करियर बना सकते हैं। इसके कुछ मुख्य विशेषताएं और लाभ हैं, जैसे कि आप अपनी सुविधा के अनुसार काम के घंटे चुन सकते हैं, किसी भी शहर या देश में रहकर दुनिया भर के छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, प्रति घंटा या प्रति कोर्स के आधार पर

अच्छी कमाई की जा सकती है। अनुभव बढ़ने के साथ फीस भी बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, इस करियर को शुरू करने के लिए केवल एक लैपटॉप, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, वेबकैम और डिजिटल पेन टैबलेट की आवश्यकता होती है, और इसमें शुरुआत करने के लिए आप किसी बड़े ट्यूटरिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब या अपने खुद के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी छात्रों को आकर्षित कर सकते हैं। गणित, विज्ञान, कोडिंग और विदेशी भाषाओं की मांग बाजार में सबसे ज़्यादा है, तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग में अपना करियर बना सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। दोस्तों, अब हम सुना रहे हैं आपको एक एल्बम सॉन्ग्स।

परंपरा टंडन की आवाज में आप सुन रहे थे ये एल्बम गीत। और दोस्तों, इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्ते। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

युवा साथी अभी अपने कार्यक्रम सुन रहे थे युवाणी। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं, लीजिए सुनिए लोकगीत।

सुधा सिन्हा के स्वर में आप सुन रहे थे ये बरसाती लोकगीत। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। अब हम कुछ ही पलों में पटना केंद्र से रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रेलवे पूर्व मध्य रेल की 29 किलोमीटर लंबा दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपया के लागत से मल्टी ट्रैक परियोजना की मंजूरी दे देले बा। एकरा तहत एक खंड पर तीसरका और चौथी लाइन बिछावल जाई। रेल मंत्रालय कहलस कि यह परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडन में से एक पर भीड़ कम हुई आ यात्री तथा माल ढुआई सेवा में बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय बतौलस कि संचालन के पहला साल में यह परियोजना से रोज 22 गो अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 गो अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकी। एकरा से हर साल 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुआई की क्षमता भी बढ़ी। तेल कंपनी सब व्यावसायिक LPG सिलेंडर के दाम में 192 रुपया के कमी कैले बाड़ी। सर घटल दाम आजवे से लागू हो गई बा। इंडियन ऑयल के वेबसाइट पर जारी रेट के लिस्ट के अनुसार व्यावसायिक सिलेंडर के दाम पटना में 3,227 रुपया से कम होके 3,018 रुपया हो गई बा। आयकर विभाग बतौलस कि साल 2026-27 खातिर 31 जुलाई 2026 तक 5,90,00,000 से ज़्यादा आयकर रिटर्न दाखिल कर गई। सोशल मीडिया पोस्ट पर कर्तादान के धन्यवाद देत विभाग कहलस ओ लोगन के विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास के गति देवे वाला ऊर्जा प्रदान करेला। राज्य सरकार शिक्षण स्थानांतरण नियमावली 2026 में बदलाव के लिए बाद शिक्षा विभाग के नया अधिसूचना के अनुसार सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक लोगन के अब वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया से अलग ना रखल जाए। एकरा खातिर 21 जुलाई के जारी अधिसूचना में बतावल प्रावधान के शिथिल कर दिहल गई बा। शिक्षा विभाग साफ कहले बा कि पुराना अधिसूचना के बाकी सब शर्त उसे ही लागू रही। प्रदेश में शिक्षक बहाली के तीसरका चरण TRE3 के तहत बहाल भइल शिक्षक लोगन के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के जाँच शुरू हो गई बा। शिक्षा विभाग सब जिलन के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से 18 महीना के DLED प्रशिक्षण लेके बहाल भइल शिक्षण के ब्यौरा उपलब्ध करावे के निर्देश दिहले बा। विभाग के अनुसार बहाली विज्ञापन अधिनियमन के अनुसार NIOS के 18 महीना के DLED विद्यालय अध्यापक पर मान्यता अर्हता नहींखे। जांच पूरा भइला के बाद नियम मुताबिक आगे के कार्रवाई कैल जाए। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र लोगन खातिर ई कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई बा। योजना के अंतर्गत मौलवी प्रथम श्रेणी से 5 छात्र लोगन के 15,000 रुपया और फौकानिया प्रथम श्रेणी से 5 छात्र लोगन के 10,000 रुपया के प्रोत्साहन राशि सीधे ओ लोगन के बैंक खाता में भेजल जाए। प्रदेश के नगर निकाय में काम करे वाला सफाईकर्मी या गाड़ी चलावेला लोग के हड़ताल के कारण साफ सफाई की व्यवस्था बहुत खराब तरीका से प्रभावित भइल बा। हड़ताल की वजह से गली मोहल्ला में कचरा के ढेर दिखे लागल बा। एकरा से संक्रामक बीमारी फैले के खतरा बढ़ गइल बा। बता दें कि सफाईकर्मी अपन नौकरी पक्का करे समेत और मांग के समर्थन में पिछला 3 दिन से हड़ताल पर बाड़न। आज से विश्व स्तनपान दिवस शुरू हो गई बा। हर साल एक से सात अगस्त तक इस सप्ताह मनावल जाला। एकर मकसद लयिका सब खातिर स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ावल आ माए लोगन के स्तनपान खातिर प्रोत्साहित कल गई बा। यह मौका पर पूरा प्रदेश के स्वास्थ्य स्थानन में जागरूकता कार्यक्रम परामर्श शिविर आ जन जागरूकता अभियान आयोजित कल जा रहा बा। भाजपा के विधान सांसद देवेश कुमार के पद से इस्तीफा दिला के बाद पंचायती राज मंत्री दीपेश प्रकाश के विधान सांसद बने के रास्ता साफ हो गिलवा। देवेश कुमार काल अपन इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के सौंप दिहले। रोहतास जिला के उचौला स्थित सरस्वती विद्या निकेतन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सखी वार्ता कार्यक्रम के आयोजन कल गई। यह कार्यक्रम में लड़की सब जनाना सुरक्षा और जनाना स्वास्थ्य के लिए तरह तरह के सरकारी योजना के जानकारी दिल गई। रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के आलमपुर स्थित राजकीय डिग्री महाविद्यालय में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर साहित्य विचार विषय पर एगो विशेष साहित्यिक गोष्ठी और चर्चा के आयोजन कल गई। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार की अंक एजे समाप्त भेल।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं संजय किशोर
4: और मैं सोमा चक्रवर्ती।
3: आइए एक नजर डालते हैं आज के इस अंक में प्रसारित होने वाले प्रमुख विषयों पर।
4: सबसे पहले कृषि चर्चा करेंगे जिसका विषय है वृक्ष लगाएं पुण्य कमाएं, जिसमें जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वृक्षारोपण किस प्रकार हमारी जीवन, खेती और आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान है।
3: इसके बाद बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की।
4: आज की संक में लोक संस्कृति की सुगंध बिखेरती लोकगीत की मनमोहक प्रस्तुति भी होगी। कार्यक्रम में होगी एक विशेष वार्ता जिसमें कृषि एवं किसान हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे।
3: सामयिक कृषि चर्चा के माध्यम से खेती किसानी से जुड़े नवीनतम विषयों, तकनीकों एवं उपयोगी जानकारियों पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी।
4: तो संजय जी, चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। वृक्ष लगाए पुण्य कमाए। वृक्ष जो है हमारे प्रकृति का एक अनमोल उपहार है और ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन, छाया, फल फूल, औषधियाँ और स्वच्छ वातावरण भी प्रदान करते हैं। और अगर हम देखते हैं कि इस बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और घटते भूजल स्तर जैसी जो समस्याएं हैं, उसका प्रभावी जो समाधान अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है बल्कि एक महान पुण्य कार्य भी है।
3: सही कहा आपने, आज बढ़ते हुए प्रदूषण से सभी प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन और वनों की जो कटाई हो रही है उसके कारण जो है पर्यावरण बहुत ही असंतुलित हो रहा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व भी बन जाता है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं अपने माध्यम से और उनकी देखभाल भी करें।
4: बिल्कुल,
3: ऐसा नहीं कि फिर वृक्ष लगाएं और फिर उनको जानवर चर गए।
4: बिल्कुल, और कहते हैं कि एक वृक्ष जो है अनेक जीव जंतुओं का आश्रय भी बनता है, वर्षा को बढ़ावा देता है, मिट्टी का कटाव रोकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित करता है।
3: बहुत सही कहा आपने, इसलिए वर्षा ऋतु का जो समय है वो वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है और ये बरसात का मौसम चल रहा है। यदि हम अपने जीवन में कम से कम एक पौधे लगाकर उसे बड़ा बना लें, उनको संरक्षित करके, तब वो धरती को हरा भरा और स्वस्थ बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।
4: सही कहा संजय जी, और वृक्ष लगाना केवल प्रकृति की सेवा नहीं है बल्कि मानवता की भी सेवा है। अगर हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि हम सभी अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, जिस प्रकार माँ अपने स्नेह, त्याग और ममता से हमारे जीवन को संवारती हैं, उसी प्रकार वृक्ष हमें शुद्ध वायु, फल फूल, छाया, औषधियाँ और जीवनदायिनी प्रकृति का उपहार देते हैं। इसी भावना को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक वृक्ष माँ के नाम अभियान की भी शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण करना ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपने माँ के प्रति प्रेम और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी

0: कराना है।
1: सही कहा आपने। और यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी माँ के ही नाम पर कम से कम एक वृक्ष लगा ले और उसकी नियमित देखभाल करे तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण मिल सकता है। जिस प्रकार माँ अपने स्नेह, त्याग और ममता से हमारे जीवन को संवारती है, तो हम भी पेड़ के लिए एक माँ के रूप में तैयार करें अपने आप को।
0: सही कहा। इसलिए तो हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी वृक्ष लगाएंगे, पुण्य कमाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य बनाएंगे।
1: बहुत सही। तो अब आइए इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की।
0: बिल्कुल। हम सभी जानते हैं संजय जी कि हमारा जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसे समय पर पूरा करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। ये जो योजना है किसानों को कम ब्याज दर पर सरल और त्वरित कृषि ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे कि वो खेती के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई तथा अन्य जो कृषि उपकरण है उसकी खरीद आसानी से कर सकें।
1: बहुत सही। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है किसानों के लिए कि किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस प्रकार से वो करें।
0: बिल्कुल।
1: इसके माध्यम से किसानों को बार बार ऋण लेने की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है और आवश्यकता के अनुसार किसान जितनी जरूरत हो एक सीमा तक राशि निकाल सकते हैं और फसल बेचने के बाद उसे वापस जमा भी कर सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज दर में छूट का बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है।
0: और संजय जी, आज जो है किसान क्रेडिट कार्ड केवल फसल ऋण तक सीमित नहीं है बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य कृषि संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए भी काफी उपयोगी है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिल रही है।
1: बहुत सही कहा आपने। और इस तरह हम कह सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है, एक कवच के रूप में है। जब किसान को जरूरत पड़ती है तो पैसे देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो जब चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकता है। तो अभी तक लगभग देश भर के 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से लगभग 10 लाख करोड़ का ऋण किसानों तक पहुंच चुका है। यदि प्रत्येक पात्र किसान इस योजना का लाभ उठाए तो कृषि क्षेत्र और कृषि आवश्यकताएं हैं वो बहुत मजबूत होंगी और किसानों के जीवन का स्तर भी बहुत बेहतर हो पाएगा।
0: बिल्कुल। और किसान क्रेडिट कार्ड सभी प्रमुख सरकारी, निजी, क्षेत्रीय और सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। किसान अपने निकटतम बैंक शाखा में आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि समृद्ध किसान, सशक्त भारत की पहचान, किसान क्रेडिट कार्ड बने हर किसान की शान।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये स्लोगन तो किसानों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। अब आगे चलते हैं।
0: बिल्कुल संजय जी, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को एक मनमोहक लोकगीत की प्रस्तुति हम सुनवा दें। और अभी बारिश का मौसम है और ऐसे में कजरी गीत का अपना ही एक अलग अंदाज है, तो क्यों ना एक कजरी गीत हम लोग सुन ले।
1: आपने मन की बात कर दी है, मेरा भी मन कर रहा था कि बरसाती मौसम है तो कुछ ना कुछ गीत जरूर हो और कजरी हो तो क्या बात है।

0: दुनिया से कहीं।
1: तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं वर्षा जल का संरक्षण विषय पर।
2: बिल्कुल, अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जो जल हम आसपास देखते हैं या जो जल आसपास है उसका संरक्षण हम कैसे करें ताकि आने वाले समय में उसका हम उपयोग कर सके।
1: तो एक स्लोगन मैं भी बोल दूं।
2: बिल्कुल।
1: जल है तो कल है, जल बचेगा तभी जीवन बचेगा।
2: बिल्कुल सही,
1: क्या कहना है?
2: एकदम बहुत खूब। और कहते हैं कि वर्षा जल जो है वो प्रकृति का अमूल्य उपहार है। भारत में वर्षा के रूप में बड़ी मात्रा में हमें जल प्राप्त होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है ना बिना उपयोग के ही नदियों में बहकर समुद्र तक पहुँच जाता है।
1: बिल्कुल सही, यदि इस वर्षा जल का उपयोग जो है हम सही तरीके से कर पाएं, उसका संरक्षण कर पाएं, तो हम इसका पूरा सदुपयोग कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि इस जल का जो बर्बाद हो रहा है उसका संरक्षण हम करें।
2: सही बात है। वर्षा जल संरक्षण इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा के पानी को एकत्रित करके उसका सुरक्षित भंडारण करना और उसे भूजल स्तर बढ़ाने के लिए भूमि में पुनः पहुंचाना। इसके लिए घरों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाई जा सकती है, तालाबों में, कुओं में और जलाशयों का निर्माण एवं संरक्षण किया जा सकता है तथा खेतों में मेड़बंदी और छोटे छोटे जल संचयन ढांचे बनाए जा सकते हैं।
1: वर्षा जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है और ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है।
2: बिल्कुल सही कहा संजय जी। और इससे क्या होगा कि जो भूजल स्तर में है

0: उसमें वृद्धि होगी, पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलता रहेगा और सूखे की स्थिति से भी हम काफी हद तक बचाव कर सकते हैं।
1: तो जल संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ये बात तो समझ में आ गई। मेरा ख्याल है कि बाकी जो हमारे श्रोता किसान हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि जल बचाएंगे तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अपने घर में हो, अपने आसपास के किसी क्षेत्र में हो, विद्यालय में हो, कार्यालय में हो, खेत में हो, वर्षा का जल संरक्षित कर सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि वर्षा जल का संरक्षण प्रकृति के प्रति हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है और आने वाले कल की सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: और संजय जी, इसी के तहत एक कैच द रेन अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाला एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य है वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और संरक्षण करना, ताकि भूजल स्तर बढ़े और भविष्य में जल संकट को कम किया जा सके। इस अभियान का मुख्य संदेश है, जहां बारिश हो वहीं और जब बारिश हो तभी वर्षा जल को संचित करें। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स।
1: बहुत ही अच्छा अभियान है और इसके माध्यम से न ही किसान बल्कि सामान्य जन भी जागरूक होकर इस संरक्षण के प्रति अपना दायित्व निभा सकता है।
0: संजय जी, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज के इस अंक में एक विशेष वार्ता जिसमें कृषि एवं किसान हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विशेषज्ञ से उनका विचार हम लेंगे, तो इसी कड़ी में आज हम अपने किसान भाइयों के लिए एक वार्ता सुनवाने जा रहे हैं जिसका विषय है पशुओं में होने वाली बरसाती बीमारियां। और हमारे जो वार्ताकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो हैं डॉक्टर संजय कुमार भारती।
2: बरसात का मौसम पशु बीमारियों के लिए सबसे घातक होता है। पशु कीट प्रभावित घास खाने के बाद कई तरह की बीमारियां, दस्त, गलघोटू आदि से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। वर्षा ऋतु में तापमान में बहुत बदलाव होते रहता है, जिसका कुप्रभाव प्रत्येक श्रेणी के पशुओं में देखने को मिलता है। इस मौसम में वातावरण में अधिक आर्द्रता होने की वजह से पशुओं की पाचन प्रक्रिया तथा उसकी रोग रोधक शक्ति पर भी कुप्रभाव पड़ता है। वर्षा ऋतु में समय बीमारियों फैलने वाले जीव जंतु एवं कीटाणु की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे पशुओं में अनेक बीमारियों के फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। इस कारण से पशुपालकों को काफी नुकसान होता है। हम चर्चा कर रहे हैं बरसात के मौसम में होने वाले मुख्य रोग। परजीवी से होने वाले रोग साधारणतः दो तरह के परजीवी होते हैं, एक अंत परजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। अंत परजीवी, जिसे पेट में कीड़ा अकृमि कहते हैं, इससे उत्पन्न होने वाले रोग से ग्रसित पशु में दस्त, कब्ज, पानी की कमी, चक्कर आना जैसे दिखता है और पशु की पाचन प्रक्रिया में शिकायत रहती है और गोबर पतला होने लगता है। इसके उपचार हेतु उसके गोबर की जाँच करानी चाहिए तथा पशु चिकित्सक से सलाह लेकर परजीवी निशक दवा को 2 सप्ताह के अंतराल में 2-2 बार पिलानी चाहिए। बाह्य परजीवी, जिसे चिचड़ी रोग कहते हैं, चिचड़ी अनेक तरह के बीमारियों के कीटाणु फैलाते हैं। यह पशु में थलेरिया, बेबेसियोसी एवं सर्रा जैसे रोग के कारण होते हैं। इसमें पशुओं में कमजोरी, एनेमिया एवं दूध की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। उपचार हेतु चिचड़ी को मारने के लिए 0.05% मेलाथियोन घोल का छिड़काव पशु के शरीर तथा पशुशाला में करनी चाहिए। छिड़काव के बाद पशु को एक स्थान पर बांध देना चाहिए और उसे अपने शरीर को चाटने नहीं देना चाहिए। छिड़काव करने से पहले पशु को पानी अवश्य पिलानी चाहिए। परजीवी रोगों से बचने के लिए समय मौसम में पशु की नदी तालाब किनारे नहीं ले जाना चाहिए और न ही उसे खुले मैदान की घासों को चरने देना चाहिए। जीवाणु जनित रोग, गलघोटू रोग, इस बीमारी से पशु में तेज ज्वर से ग्रसित हो जाता है और उसके गले में सूजन हो जाती है और एक आवाज उत्पन्न होती है। उसे सांस लेने में असुविधा होती है, परेशानी होती है और पशुओं को काफी तकलीफ होता है, जिससे उसकी मृत्यु एवं दम घुटने से हो जाती है। उपचार एवं बचाव, इस बीमारी से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सही समय पे साधारणतः मई और जून में टीकाकरण करना चाहिए। अगर पशु ग्रसित हो जाए तो स्वस्थ पशुओं से अलग रखकर पशु चिकित्सकों द्वारा जितना जल्द हो सके मिलकर उसका उपचार करवाना चाहिए। लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार को प्रायः 3 दिवसीय बुखार भी कहा जाता है। इस रोग से पशु लगातार 3 दिन तक रोज तेज ज्वर से पीड़ित हो जाता है। पशुओं की कमजोरी इतनी अधिक हो जाती है कि हमेशा बैठा रहता है। उपचार, इसका सबसे आसान उपचार मीठा सोडा तथा सोडियम सैलिसिलेट को बराबर भाग में पिला देना चाहिए। चेचक रोग, यह रोग मुक्त पशुओं के आवास से ज्यादा गंदगी होने के कारण होता है। इसमें पशु की ऐन एवं थन का रंग लाल हो जाता है। इस रोग में पशुओं को तेज बुखार भी हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु होने के बाद पशुओं में रोग निरोधक क्षमता की

शक्ति कम हो जाती है। उपचार एवं बचाव हेतु पीड़ित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग कर लेना चाहिए। अगर पशु ग्रसित हो जाए तो सबसे पहले पोटासियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा कहते हैं, के घोल में संक्रमित जगह को धोएं और उसके बाद उसे जगह पे मलहम लगाने से पशुओं को बहुत आराम मिलता है। विषाणु जनित रोग, मुंह पका और खुरपका, जिसे हम इंग्लिश में FMD फूट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। मुंह पका एवं खुरपका रोग मुख्यतः खुर वाले पशुओं में होता है, जैसे कि अत्यंत संक्रामक और घातक विषाणु रोग की श्रेणी में आता है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में एवं हिरण जैसे जंगली पशुओं में भी होता है। इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार आ जाता है। बीमार पशु के मुंह, मसूड़े, जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग तथा खुर के नीचे की जगह पर छोटे छोटे दाने से उभार आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर एक बड़ा छाला बना लेता है, जो कि बाद में जख्म का रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है और मुंह से लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ाकर चलता है।

0: माउथ डिजीज कहते हैं। मुंह पका एवं खुर पका रोग मुख्यतः खुर वाले पशुओं में होता है, जैसे कि अत्यंत संक्रामक और घातक विषाणु रोग की श्रेणी में आता है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में एवं हिरण जैसे जंगली पशुओं में भी होता है। इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार आ जाता है। बीमार पशु के मुंह, मसूड़े, जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग तथा खुर के नीचे की जगह पर छोटे छोटे दाने से उभार आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर एक बड़ा छाला बना लेता है, जो कि बाद में जख्म का रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है और मुंह से लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ाकर चलता है। दुधारू पशुओं में दूध की उत्पादन एकदम गिर जाती है, वे एकदम कमजोर हो जाते हैं और गर्भवती पशुओं में गर्भपात होने की संभावनाएं बनी रहती है। उपचार एवं बचाव। रोग ग्रसित पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी से दूर रखना चाहिए और मलहम का प्रयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी और 100 ml यानी 100 ml मिलीलीटर पानी से घोल बनाकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर एवं अन्य पशुओं से दूर रखना चाहिए जो कि स्वस्थ पशु है। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाले लार एवं पैर के घाव के संसर्ग में आने वाले वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन पर गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को टीकाकरण करवाना चाहिए। तदुपरांत 8 माह के अंतराल पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। रिंडरपेस्ट। आमतौर पर यह बीमारी जुगाली करने वाले जानवर जैसे साधारणतः तो जो पालतू पशु होते हैं और सुअर में भी होती है। यह काफ़ी संक्रामक और वायरल बीमारी होती है। इस बीमारी से क्रॉस ब्रीड जो पशु मवेशी होती हैं उसमें अधिक प्रभावित होता है। कैसे फैलता है यह बीमारी? रिंडरपेस्ट सांस लेने से फैलती है और इसके अलावा दूषित चारा और पानी पीने से होता है। रिंडरपेस्ट के लक्षण। रिंडरपेस्ट बीमारियों से संक्रमित होने पर पशु दूध देना कम कर देते हैं, साथ ही साथ इनमें भूख की कमी आ जाती है। इसमें 3 दिनों तक बुखार रहता है और पशुओं के नाक बहती है और पेट में दर्द होता है। रिंडरपेस्ट के बचाव। इस बीमारी से बचने के लिए अब सबसे पहले स्वस्थ जानवरों को संक्रमित जानवर से अलग कर लेना चाहिए, उसके बाद पशु चिकित्सक मिलकर इसकी इलाज करवानी चाहिए। चर्म रोग। वर्षा ऋतु में गाय भैंस में चमड़ी का रोग मुख्यतः एलर्जी, फुफंदी एवं चिचड़ी के कारण होता है, जिसके कारण पशुओं के त्वचा पर बहुत तेज खुजलाहट होती है, जिसके फलस्वरूप त्वचा काफ़ी मोटी हो जाती है और मुरझा जाती है। खाज खुजली से पशुओं के सारे बाल झड़ जाते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि पशुओं की त्वचा में काफ़ी गंदी बदबू भी आती है। उपचार। इसका उपचार पशु चिकित्सक द्वारा उसके परीक्षण कराकर तुरंत शुरुआत करनी चाहिए। बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव हेतु पशुपालकों को कुछ उपाय बरतनी चाहिए, जैसे हमेशा पशु और पशुशाला को साफ रखें। सफाई की इस अवधि में एक समस्याएं हो सकती है, लेकिन गंदगी और नमी के कारण पशु को शीत तनाव की अधिक संभावनाएं होती है। पशुशाला को दिन में 2 या 3 बार फिनाइल से अवश्य साफ करनी चाहिए।
1: ये बहुत ही उपयोगी वार्ता थी और इस वार्ता के साथ ही जब हम लोग बरसात में बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है वर्षा का। तो अब जो है धान का समय है, तो धान की रोपनी भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें कि किसान को समुचित जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी होता है।
2: सही बात है। इसके लिए खेत की तैयारी किस तरह से की जा सके, कौन सा खाद उसमें प्रयोग किया जा सके, रोपनी, सिंचाई, तो इसी विषय पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर ले।
1: बिल्कुल।
2: किसान भाई, जब आप धान के बिचड़ा तैयार करते हैं तो बीज को बीज स्थली में आप गिरा रहे हो, जब तक बिचड़े तैयार ना हो जाए उसके पूर्व आपको सबसे पहले मुख्य रूप से खेत को तैयार करना होगा और तैयार करने के बाद ही इन बिचड़ों की रोपनी आप कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए सर्वप्रथम रोपनी के 7-8 दिन पहले खेत की जो मिट्टी है उसको उल्टा पलटा कर ले। खेत को 3 से 4 दिनों तक यूं ही छोड़ देना चाहिए। इससे जो घास पात एवं खेत में पड़े अन्य जैविक पदार्थ हैं वो मिट्टी में दबकर सड़ जाते हैं और इसके बाद कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद डालकर जुताई यंत्र से 2-3 जुताई करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए।
1: जब खाद डाल देते हैं आप खेतों में, उसके बाद रोपनी के समय कतार से कतार की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सामान्य विधि से रोपनी के लिए 20 से 22 दिनों का

0: बिचड़ा और श्री विधि से रोपनी के लिए 10 से 12 दिन
1: और सिंचाई के लिए धान की फसल में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। खेत में पानी का जमाव लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ही रखें। खेत में पानी का सही स्तर रखने पर फास्फेट, लौह और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और खरपतवार भी नियंत्रित रहता है। रोपनी से 1 सप्ताह बाद तक पानी रखना चाहिए और बीच बीच में यथा संभव खेत को पानी से खाली भी रखे ताकि कल्ले काफी संख्या में निकल सके। तो ये धान की रोपनी संबंधित हम लोग बातचीत कर रहे थे अपने किसान भाइयों के लिए।
0: तो अब हम आपको बता देते हैं मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी। कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से घने बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज चमक की संभावनाएं हो सकती हैं।
1: किसान भाई, यदि वर्षा अच्छी हो रही है तो खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। वर्षा के दौरान रासायनिक दवाओं का छिड़काव बिल्कुल ना करें, मौसम साफ होने पर ही करें। पशुओं को सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखें तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं।
0: तो ये थे मौसम की जानकारी। और श्रोता, कि आपके सुझाव और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो अपनी प्रतिक्रियाएं और अनुभव या कोई और बात हमसे अगर साझा करेंगे तो उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो आपके फीडबैक के लिए हमारा ईमेल आईडी है airpatna@gmail.com।
2: खेतों की आवाज, देश की पहचान। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे केंद्र से अब प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत।

बोलबम के नाराबा। श्रोताओं, बिल्कुल ही समय अनुकूल हमने ये गीत चुना था, और ये गीत था दुल्हा गंगा पार के फिल्म से महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। आकाशवाणी सासाराम से इस समय आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। अब हम सुनवा रहे हैं बिहारी बाबू फिल्म से ये गीत शब्बीर कुमार की आवाज़ में। गीत को लिखा है ब्रिज किशोर दुबे ने और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने, और बोल है

0: सुन सोचतानी कि काहे न आपन बिजनेस बढ़ाई।
1: त रोकले के बा?
0: रोकले त कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत कि कैसे मदद मांगी।
1: हमरा से?
0: तोहरा से? त बताओ।
1: आकाशवाणी बाना, हम सुनले बानी कि आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
0: तो ओकरा से हमरा के का फायदा बा?
1: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुंच जाई।
0: तो इहो बता दा कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई?
1: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 870-001-4242।
0: ओ 870-001

0: 4242।
1: हाँ।
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700001 4242 पर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। अब लीजिए सुनिए नदिया के पार फिल्म का एक गीत, जसपाल सिंह की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

सैया से कर द मिलनवा हैराम। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत को लिखा था विनय बिहारी ने और संगीत दिया था ताबुन और राजेश गुप्ता ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं आवत हुई है सवारियां फिल्म का एक गीत क्योम और चंद्राणी मुखर्जी की आवाज़ों में। उमाकांत तिवारी ने गीत को लिखा है और संगीत दिया है दिलीप दत्ता ने। और फिल्म का नाम है आवत हुई है सवारियां।

और इसी के साथ भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 7:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कुछ स्थानीय गतिविधियों के बारे में। पीएम सूर्य घर योजना के तहत डेहरी में सोलर मेला आयोजित। जी हाँ, आम नागरिकों को सस्ती, सुलभ एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य

घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सोलर अधिष्ठापन में तेजी लाने हेतु जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्र, विद्युत अधीक्षण अभियंता सासाराम, इंजीनियर इंद्रदेव कुमार एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता डेहरी, इंजीनियर संतोष कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्रणाली के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें योजना से जोड़ना था। मेले में विशेषज्ञों एवं तकनीकी टीम द्वारा सोलर पैनल की स्थापना, कार्यप्रणाली, रखरखाव, लागत, अनुदान तथा इससे होने वाले आर्थिक लाभ की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उपभोक्ताओं की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।

आज दिनांक 1 अगस्त 2026 को उप विकास आयुक्त रोहतास श्री विजय कुमार पांडे की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 की तैयारियों को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह एवं उससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास निगम रोहतास द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत रोहतास प्रखंड स्थित सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय उचेला प्रखंड रोहतास में छात्राओं के साथ सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों को बाल विवाह, लैंगिक हिंसा, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध विभिन्न सहायता एवं संरक्षण सेवाओं की जानकारी प्रदान करना था।

रोहतास जिले की जीविका दीदियों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला उद्योग केंद्र रोहतास ने उद्यम पंजीकरण अभियान को गति दी है। जिला उद्योग केंद्र रोहतास के महाप्रबंधक आशीष रंजन ने बताया कि जिन जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है और स्वरोजगार या उद्यम गतिविधियों से जुड़ी हैं, वे अपने संबंधित प्रखंड के प्रखंड परियोजना प्रबंधक BPM से संपर्क कर निःशुल्क उद्यम पंजीकरण करा सकती हैं।

आज दिनांक 1 अगस्त 2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित टीबी उन्मूलन अभियान के तहत स्क्रीनिंग, एक्सरे जांच, उपचार सहित अन्य स्वास्थ्य गतिविधियों की प्रखंडवार समीक्षा की गई। बैठक में सिविल सर्जन रोहतास, संचारी रोग पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। तो श्रोताओं, ये थी कुछ स्थानीय गतिविधियां, और अब

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे आया सावन झूम के फिल्म से ये गीत, और अब इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
6: इसलिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
5: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का

0: छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट ना होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
1: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताजा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
2: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए, आपके पास कोई शानदार रेडियो आइडिया है क्या?
4: आइडिया है, कहानी है, ऑडियो कंटेंट है, लेकिन उसे सुनाएगा कौन?
3: आकाशवाणी।
4: जी हाँ, प्रसार भारती के आकाशवाणी नेटवर्क पर कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित हैं।
3: क्या आप प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, कंटेंट क्रिएटर, राइट्स ऑनर या एग्रीगेटर हैं?
4: तो अपने मौलिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भेजिए और अपने कंटेंट को दीजिए आकाशवाणी का विशाल मंच।
3: रेडियो ड्रामा, फीचर, डॉक्यूमेंट्री, स्टोरी टेलिंग, ऑडियो सीरीज, पॉडकास्ट, क्विज
4: और शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम तथा लोक संगीत आधारित कार्यक्रम भी।
3: हिंदी, अंग्रेजी और निर्धारित क्षेत्रीय भाषाओं में नेशनल, रीजनल और लोकल आकाशवाणी स्टेशनों के लिए।
4: आपके कार्यक्रम में हो सकता है विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से जुड़ने का अवसर।
3: चुनिए अपनी भागीदारी का तरीका, रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड या ग्रेटिस मोड।
4: रेवेन्यू शेयरिंग मोड में विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से आय का साझा अवसर, और स्पॉन्सर्ड मोड में अपने ब्रांड, उत्पाद या सेवा के प्रचार के लिए फ्री कमर्शियल टाइम का अवसर।
3: बस ध्यान रहे, कंटेंट मौलिक हो, अधिकार आपके पास हो और आकाशवाणी के कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड का पालन हो।
4: आपके कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव ट्रीटमेंट, टीम, ऑडियो क्वालिटी और व्यावसायिक संभावनाओं का होगा मूल्यांकन।
3: तो फिर इंतजार किस बात का?
4: अपना कार्यक्रम प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में आकाशवाणी पटना के क्लस्टर या नोडल कार्यालय को ईमेल करें।
3: हमारा ईमेल पता है
4: ddgeairpatna@redifmail.com या pecairpatna@gmail.com या
3: hooairpatna@prasarbharati.gov.in।
4: अधिक जानकारी के लिए सीधे आ जाइए आकाशवाणी पटना।
5: आपका आइडिया, आपकी आवाज, आकाशवाणी का मंच।
4: आकाशवाणी के साथ कंटेंट को नई पहुंच
3: और विज्ञापन को नई संभावनाएं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। राज्य के सभी जिलों में भी होगा आयोजन। रेलवे ने दानापुर से फतुहा के बीच 976 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैक परियोजना को मंजूरी दी। भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के विधान पार्षद बनने का रास्ता हुआ साफ। राज्यपाल कोटे से जल्द हो सकता है मनोनयन। और प्रदेश के नगर निकाय के सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की 3 दिनों से चल रही हड़ताल के चलते साफ सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत देश भर में 10,000 स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन

होगा। प्रदेश के सभी जिलों में भी अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार इस कार्यक्रम में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। रेलवे ने पूर्व मध्य रेल के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इस खंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं में बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेगी। इससे प्रतिवर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी।

0: यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं में बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये की कमी की है। घटी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पटना में व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 3,227 रुपये से कम होकर 3,018 रुपये हो गई है। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चलाए जा रहे सहयोग शिविर के तहत अब तक 5,83,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,33,000 से अधिक मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया जा चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
1: राज्य में के सर्वांगीण विकास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु सहयोग शिविर का आयोजन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 19 मई को यह कार्यक्रम लागू किया गया था प्रथम बार और अब तक में 5,83,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं सहयोग शिविर में, जिसमें से 5,33,904 समस्या का निस्तार कर दिया गया है और शेष अभी लंबित है।
0: भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार के पद से इस्तीफे के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के विधान पार्षद बनने का रास्ता साफ हो गया है। देवेश कुमार ने कल अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया। राज्यपाल कोटे से मनोनीत देवेश कुमार का कार्यकाल मार्च 2027 तक था। हमारे संवाददाता ने बताया कि दीपक प्रकाश का राज्यपाल कोटे से जल्द मनोनयन होने की संभावना है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री के रूप में 6 महीने के कार्यकाल पूरा होने पर बिहार सरकार से जवाब मांगा था। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है। प्रदेश के नगर निकाय के सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। गली मोहल्लों में कचरे का अंबार दिखने लगा है, इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। राजधानी पटना में साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस बीच पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने हड़ताली कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है।
2: बेसिकली जो अभी का जो स्ट्राइक है उसमें जो 3 मांगे हैं, इसके आलोक में विभाग के जो सचिव सर हैं उनके साथ जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे बिहार भर के, उनके साथ भी विभाग स्तर पे भी बैठक की गई है। विभाग के स्तर पे भी जो उच्च पदाधिकारी हैं वो लोग भी उसमें मौजूद रहे। उसके बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा भी सभी जो यूनियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे बिहार को, उन लोगों के साथ भी उनकी समस्याओं को सुना गया, क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है। किसी भी यूएलबी के स्तर से ये नहीं होना है, ये बेसिकली एक नीतिगत निर्णय लेने की इसमें बात आती।
0: मुंगेर से हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि कर्मियों ने मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का संकल्प दोहराया है।
3: 300 मांग है सरकारी का, चलो 7वां वेतन एनजीओ का दैनिक सरकारी कर दे, एनजीओ को स्थायी करे, दैनिक का स्थायी करे, प्रशासन उनको बुला के अनुकंपा पर बहाल करे,
4: दैनिक एनजीओ का स्थायीकरण किया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाए, 7वां वेतन मान और अनुकंपा पर बहाल किया जाए। यह मांग लेकर पूरे बिहार में ये 3रा दिन हड़ताल है। सभी हड़ताल यहाँ कर्मचारी, कार्यालय कर्मचारी और सफाई कर्मी, एनजीओ कर्मी, सभी कर्मी हड़ताल पर थे। आज अटेंडेंस नहरायू के आकर सभी स्टाफ को धमकी दिया कि अगर जो तुम नहीं काम करोगे तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और बलपूर्वक उनको कार्यालय खुलवाया गया।
0: गौरतलब है कि सफाई कर्मी अपनी नौकरी स्थायी करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। बेगूसराय की एमपी एमएलए अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 7-7 साल कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में उनके चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर स्थित निजी आवास पर छापेमारी के दौरान 50 कारतूस बरामद हुए थे। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड की पंडौल पंचायत के मुखिया नंद किशोर राम को 12,000 रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

0: किया है। गिरफ्तार मुखिया शिकायतकर्ता से मनरेगा के तहत कराए गए कार्य के भुगतान के एवज में घूस ले रहा था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने सीतामढ़ी में आयोजित जन सुनवाई के दौरान फोन पर रिश्वत मांगने के आरोपी डेटा एंट्री ऑपरेटर को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। मंत्री ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। गया निवासी और भारतीय सेना के हवलदार सुमन राणा ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पुरुष शॉटपुट F57 स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही वे इस स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुष जेवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश के खेल इतिहास का गौरवशाली क्षण है। राज्य में मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई। इस अवधि में किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे अधिक 74.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है।
1: राज्य के अररिया, किशनगंज, मधुबनी एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: कटिहार में मखाना के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अब मखाना से बिस्कुट, ठेकुआ, पेड़ा, बर्फी और जलेबी समेत विभिन्न मिठाइयां तैयार की जाएंगी। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इसके लिए कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत किसानों और मिठाई व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
2: वैल्यू एडिशन भी मखाना के प्रोडक्ट्स का किया जाए, जिससे कि जो मखाना के उद्योग से जुड़े हुए किसान हैं या उस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको बेहतर रेम्यूनरेशन मिल सके। इसी क्रम में मखाना से मिठाई, जलेबी, बिस्किट, ठेकुआ, ये सारी चीजें बनाने का काम शुरू किया गया है। जो हमारे मखाना से लिंक्ड FPOs हैं वो भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए, और उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं।
0: मधुबनी जिले में केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विद्यालय का संचालन फिलहाल वाटसन प्लस टू स्कूल के अस्थायी भवन से किया जाएगा। इधर शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी भवन के लिए 5 एकड़ से अधिक भूमि की लीज प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मॉडल स्कूल निमी के पास उपलब्ध कराई गई इस भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण होगा। आज से विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू हो गया है। प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक यह सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर प्रदेश भर में स्वास्थ्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श शिविर और जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। श्रावणी

0: मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने कल से गया मधुपुर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गया से मानपुर तिलैया नवादा वारिसलीगंज शेखपुरा किउल जमुई झाझा और जसीडीह होते हुए मधुपुर पहुंचेगी। मुंगेर न्यायालय परिसर के नए भवन के प्रथम तल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर नष्ट हो गए। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। कटिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फोटो और वीडियो डालने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले ने जुलाई महीने में राज्य में मेडी टेली कंसल्टेशन सेवाओं में पहला स्थान प्राप्त किया है। दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट केंद्र में आज 24वीं राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन बिहार का 33वां स्थापना दिवस पूरे सैन्य सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जहानाबाद जिला आज अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रोहतास जिले के उचैला स्थित सरस्वती विद्यानिकेतन और सारण के अवधपुर आंगनवाड़ी केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को महिला सुरक्षा और महिला स्वास्थ्य से लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गयी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। राज्य के सभी जिलों में भी होगा आयोजन। रेलवे ने दानापुर से फतुहा के बीच 976 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैक परियोजना को मंजूरी दी। भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के विधान पार्षद बनने का रास्ता हुआ साफ। राज्यपाल कोटे से जल्द हो सकता है मनोनयन। और प्रदेश के नगर निकाय के सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की तीन दिनों से चल रही हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रमाणित जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप ये जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: धान रोपनी का कार्य प्रभावित हो रहा है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों में पानी की कमी बनी हुई है, जिसके कारण जिले में धान रोपनी की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। जिले में अब तक 38% धान की रोपनी हो पाई है। जिले की अधिकांश छोटी बड़ी नदियां सूखी हुई है। ऐसे में किसान निजी बोरिंग, डीजल और बिजली चालित पंप सेट तथा अन्य वैकल्पिक जल स्रोतों के सहारे खेतों में पानी पहुँचाकर धान की रोपनी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में भागलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में पठन पाठन कार्य का शुभारंभ किया। इनमें नवादा जिले के 6 राजकीय डिग्री कॉलेज रोह, सिरदला, मिसकौर, गोविंदपुर, काशीचौक और अकबरपुर शामिल है। नवादा के मिसकौर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने शैक्षणिक गतिविधियों का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान विषयों में स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू की गई है। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। वहीं आगामी चरण में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में भी स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान बिहार के 551 नव स्थापित सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालयों का उद्घाटन किया। इनमें नवादा जिले के 14 आदर्श विद्यालय भी शामिल हैं। इस अवसर पर इंटर मॉडल स्कूल आदर्श विद्यालय नारदीगंज में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी ने किया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालयों के विकास पर विशेष जोर दिया। वहीं नवादा वासियों को केंद्रीय विद्यालय की सौगात भी मिली है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 से 5 तक नामांकन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन पहल कर रहा है। योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रति माह 300 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इससे जोड़ने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी ने बैंकों और अधिकृत वेंडरों के साथ बैठक कर लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों के आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। साथ ही बैंकों, विद्युत विभाग और अधिकृत वेंडरों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। जिले के गोविंदपुर प्रखंड की पहाड़ियों में अवस्थित ककोलत जलप्रपात की प्रवेश शुल्क दरों में एक बार फिर संशोधन किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ कुमार कृष्णा ने बताया कि अब ककोलत आने वाले सैलानियों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रवेश शुल्क 20 रूपए तथा शनिवार और रविवार को 50 रूपए निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले मई माह में प्रवेश शुल्क बढ़ाकर 100 रूपए कर दिया गया था। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नवादा जिले में पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 72,450 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रतिदिन 2,415 आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर सभी पात्र परिवारों का राशन कार्ड बनाया जा सके।
1: अभी आप सुन रहे थे नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी पटना के साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा में मैं अभिषेक दास आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस उपचुनाव में 34.31% मतदान हुआ, जो वर्ष 2010 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए इस विधानसभा क्षेत्र का अब तक का सबसे कम मतदान प्रतिशत है। यह आंकड़ा वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव की तुलना में लगभग 7% कम है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद वे इस उपचुनाव में कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रमुख प्रत्याशियों में एनडीए की ओर से
3: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।
1: नवादा जिले में औसत से कम वर्षा होने के कारण

0: स्वागत है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम लेकर हाजिर हैं फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। आज आपके साथ है आपका रेडियो दोस्त विनोद। श्रोताओं, आप भी अपने मनपसंद गाने को सुन सकते हैं इस नंबर पर फोन करके। हमारा फोन नंबर है 0618422130। श्रोताओं, लेते हैं कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो मनपसंद
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: सर, कैसा मौसम है आजकल उधर का?
1: जी बारिश, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, लेकिन 8-10 दिन से बारिश नहीं हुई है।
0: तब तो बहुत खेती किसानी में तकलीफ हो रही होगी सर।
1: जी अभी तो नहीं हो रही है खेती किसानी की, लेकिन पानी गिरना तो जरूरी है।
0: जी पानी तो गिरना चाहिए, चूंकि सीजन है पानी गिरने का और सावन का महीना भी शुरू हो गया है, आजकल तो पानी बिल्कुल होना ही चाहिए।
1: जी जी लेकिन बारिश होगी तो फसलों के लाना अब जो फसल में भी लाभदायक रहेगा, अगली फसल के लाने ले भी लाभदायक रहेगा।
0: जी जी सर, एक बात बताइए, आज इस रेडियो को आप पूरे परिवार के साथ सुनते हैं कि अकेले में सुनते हैं सर?
1: जी अकेले ही सुनते हैं, थोड़े बहुत अब्बा सुन लेते हैं, लेकिन हम अकेले ही सुनते हैं।
0: सर आज अपने अब्बा को सर नाम बता दें।
1: अब्बा का नाम है बदरुद्दीन खान।
0: बदरुद्दीन खान, बोलिएगा सर जरूर मेरे तरफ से नमस्कार। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं सर आज?
1: जी फिल्म का नाम है गोपी किशन, सत्री नकुल बरसात में।
0: आज आप जरूर सुनेंगे सर अपने मनपसंद का यह गीत।

0: श्रोताओं, हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग अब हम आपको सुनाएंगे।
1: दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 बजे की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को

दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक

0: महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जाँच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के ब्रिजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ NTA ही नहीं बल्कि UPSC रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akashvani. A review of this week's Parliament proceedings read by Ashish.
2: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हेलो मन पसंद कार्यक्रम का शेष भाग।
3: हेलो मन पसंद,
4: मोनू केसरी बोल रहे हैं मोहनिया से।
3: केसरी जी मोहनिया से, कैसे हैं सर?
4: ठीक है सर।
3: क्या सुनना चाहते हैं आप?
4: सर गाने के बोल है, सावन का महीना आया है, कटाक से पानी बरसता है, यही सर गाना सुनना है।
3: कौन सा फिल्म का गीत है सर ये? कौन सा फिल्म से?
4: फिल्म का नाम मालूम तो नहीं है, गाने का बोल आपको बता दिए।
3: इसको आप गुनगुना सकते हैं?
4: हम गाते नहीं है, अपना बोल दिए।
3: अच्छा चलिए ठीक है सर, लीजिए सुनिए अपने मन पसंद का यह गीत पूरे परिवार के साथ।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद, प्रणाम सर।
0: प्रणाम सर, कौन बोल रहे हैं साहब? अपना परिचय दीजिए।
1: मैं मोतीवाला बोल रहा हूँ, गढ़नोखा खरौद से।
0: अच्छा, गढ़नोखा से। मेरा नाम सर विनोद है। आपने फोन किया है सर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र। क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: हम सुनना चाहते हैं गंगा धाम का एक तो गाना है,
0: गंगा धाम।
1: गंगा धाम।
0: जी
1: अथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी।
0: हाँ, पैदल ही जइबे तोर दुआरी।
1: हाँ, सावन का महीना कल से सर शुरू हो
0: जी जी
1: रहा
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। आप सर पूरे परिवार के साथ सुनिएगा इस गीत को।
1: जी जरूर, हमारे दो मित्र हैं लाल बिहारी सिंह आरा से,
0: जी
1: और एक है राजकिशोर चौहान।
0: ठीक है सर, लीजिए सुनिए अपने मन पसंद का यह गीत।

0: हेलो मनपसंद जी, स्वागत है सर।
1: जी आप विनोद बाबू बोल रहे हैं?
0: जी जी विनोद जी बोल रहे हैं सर।
1: जी आप मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर।
0: आपको भी सर रेडियो परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
1: हम सदाबहार रेडियो श्रोता सं ताजपुर मोरबा जिला समस्तीपुर बिहार से भाई कारी राय
0: जी, भाई कारी राय कारी पुंज राज आर्यन पुंज आकर्षण पुंज। सर आपने फोन किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं सर?
1: आपको फिल्म दो रास्ते का गाना सुना दीजिए।
0: जी
1: हुआ गाना है
0: जी,
1: खिजा के फूल पे आप ही कभी बाहर नहीं, मेरे नसीब में दोस्त तेरा प्यार नहीं।
0: ओ, दो रास्ते फिल्म से।
1: जी जी जाती गाना दो रास्ते फिल्म का।
0: जी जी
1: और तो अच्छे हैं आप सर?
0: सर बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? पूरे परिवार सब ठीक ठाक है ना?
1: जी जी
0: सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत।

इसी गीत के साथ दीजिए अनुमति फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद से। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। अपने दोस्त विनोद को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। अब हमारे केंद्र से प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान, बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का उड़ान कार्यक्रम में। मैं हूं राजेश और एक सप्ताह और गुजर गया और हम आ गए ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर। पहले तो आप सबों का बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अब पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, खास करके बीबीए और बीसीए की पढ़ाई को लेकर। भरोसा जो हमने इतने वर्षों में कायम किया है उड़ान कार्यक्रम के साथ, सचमुच सचमुच बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ तो काम आ रहे हैं अपने युवाओं के लिए। हमने बार बार कहा है कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ जाइए, और ऐसे में आज की तारीख में बीसीए और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है। बीसीए और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है। पिछले 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए कोर्स को लेकर जो संस्थान खड़ा है आर्किड बिजनेस कॉलेज, जी हां आर्किड बिजनेस कॉलेज, उसी की तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं कि आपके अंदर आप सबों तक जानकारियां पहुंचाई जाएं। कल को कोई भी लड़का ये ना कहे कि मुझे तो जानकारी थी ही नहीं। बीसीए और बीबीए, बीसीए और बीबीए, बीसीए और बीबीए एकदम माला जपता है आपका राजेश इन कोर्सेज को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे बच्चे बीसीए और बीबीए करके सफल हो जाते हैं। और आर्किड बिजनेस कॉलेज

किस तरीके से नर्चर करता है। हमने पिछले कुछ एपिसोड में स्टूडेंट्स की बातें आपको सुनवाई थी, एकदम सही सही जो उन्होंने कहा मैंने आपके सामने भेज दिया, और उसके बाद आप लोगों को हाँ ऐसा लगा कि सचमुच बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत उम्दा है, हाँ आपने जानकारियां जाननी चाहिए। तो आर्केड बिजनेस कॉलेज को हम थैंक यू कहना चाहेंगे, आर्केड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर पटना और सगुना मोड़ पटना में है। अगर जो आपको कोई जानकारियां चाहिए तो आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं 7520800 ये नंबर है, इस पर पूरी और सही और सटीक जानकारियां दी जाती हैं और दी गई हैं, और तभी तो इतने सारे फोन कॉल आ रहे हैं। आर्किड बिजनेस कॉलेज के बारे में एक बात और बता दें, हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़े रहे हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त है, जी हाँ स्थायी मान्यता प्राप्त।

0: आरकेट बिजनेस कॉलेज को हम थैंक यू कहना चाहेंगे। आरकेट बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर पटना और सगुना मोड़ पटना में है। अगर जो आपको कोई जानकारियां चाहिए तो आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं 7520800 ये नंबर है। इस पर पूरी और सही और सटीक जानकारियां दी जाती हैं और दी गई हैं और तभी तो इतने सारे फोन कॉल आ रहे हैं। आर्किड बिजनेस कॉलेज के बारे में एक बात और बता दें, हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़े रहे हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। अब आप कहिएगा कि स्थायी मान्यता क्या होता है और वो भी बीसी और बीबीए के लिए, तो सुनिए।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800। याद रखें 7520800800।
0: समझ में आ गया। कोर्स को करते करते अगर बीच में ही मान्यता खत्म हो जाए या कहीं हेल्ड अप कर दिया जाए तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए वैसे संस्थान को चुनना चाहिए जहां से आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर हो। ढेर सारी बातें होंगी लेकिन उससे पहले एक बार फिर नंबर बता दें। आर्केड बिजनेस कॉलेज का बीसी और बीबीए के लिए 27 वर्षों से लगे हैं 7520800 और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं आशीष जी, आशीष आदर्श, जो डायरेक्टर भी हैं और करियर काउंसलर भी हैं। ढेर सारे सवाल आए थे, हाँ, तो हमने सोचा एक बार फिर से, हालांकि इन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था उसके बावजूद भी आए थे सवाल, तो हमने सोचा इन्हीं से आंसर ले लें। और वो सवाल ये है कि अगर बीसीए और बीबीए में से और साथ में अगर इंजीनियरिंग रहे तो किसे चुनना चाहिए। हाँ आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका, और बताइए। अब
4: देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक डेटा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, आज के डेट में एक डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आज हमारे देश में जो इंजीनियर्स की जो संख्या, इंजीनियर्स की जो संख्या है वो लगभग 14 लाख के आसपास में है। मैं ये 14 लाख उनको बोल रहा हूँ जिनके पास बीटेक की डिग्री है। इस 14 लाख में से मात्र 4 लाख के पास जॉब है, मात्र 4 लाख के पास। उसके अतिरिक्त 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है कहीं, या किसी ने बिजनेस कर लिया। और बाकी 7 लाख लोग निकल गया, बाकी 7 लाख आज भी रोड पर जॉब के लिए ढूंढ घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो टहल रहे हैं, उतना पैसा लगा करके, इतना समय लगा करके। मेरा यही कहना है, यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपकी, आपका जो जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप ज़रूर करिए और आप देखिए उसका कितना फ़ायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप एमसीए कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। एमसीए करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो आईटी कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन MCA, वो MCA आप कीजिए BCA करने के बाद में, या BCA करने के बाद भी इवन बहुत सारी IT कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि BCA एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मैं, मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, बीसीए करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़, आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और बीसीए करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप बीसीए करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के एमसीए कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
0: वाह आशीष जी, आपने बहुत ही विस्तार से, अच्छे से समझाकर, आंकड़ा देकर आपने जवाब दे दिया। कितने अपडेट रहते हैं आप। बहरहाल, कार्यक्रम चल रहा है उड़ान। आशीष आदर्श जी हमारे साथ बैठे हैं, डायरेक्टर हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज के, और ये कार्यक्रम भी हम लेकर आ रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से।

0: बीसी और बीबीए के कोर्स पर चर्चा चल रही है, सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है। अगर इसके विषय में आपको जानकारी दिल चाहिए तो 27 वर्षों से लगा है आर्केड बिजनेस कॉलेज इसी बीसी और बीबीए के कोर्स को लेकर। इससे बेहतर जानकारी शायद हाँ कोई नहीं दे सकता और अस्थाई मान्यता प्राप्त भी है बीसी और बीबीए कोर्स के लिए। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से पटना में राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ 2 सेंटर हैं। इसके नंबर नोट कीजिए 7520800 जी हाँ, ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। आशीष जी एक बात बताइए, आर्केड बिजनेस ग्रुप का तो बहुत सारा कॉलेजेज है, बहुत सारे क्लासेस कराए जाते हैं, छोटा सा एक छोटी सी जानकारी आप दे दीजिए।
1: देखिए आर्केड ग्रुप के ऑल टुगेदर 3 कॉलेजेस है, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज सगुना मोड़ और एक एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक नया परिसर है, 2017 में शुरू हुआ, ये नेवरा में है, मतलब दानापुर स्टेशन से लगभग 10 मिनट लगता है जाने में। वहां पर हमने बीसी बीबीए के अतिरिक्त एमबीए एमसीए, बीएड पहले से वहां चल रहा है, एमबीए और एमसीए ये दोनों प्रोग्राम शुरू किए हैं और ये हमने 2025 से शुरू किया है। और आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि सारे जो जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सब हमारी फुल हो रही हैं और काफ़ी अच्छे संख्या में छात्र आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि जब हमारे पास एमबीए एमसीए की व्यवस्था है यहाँ पे, अब वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ, हमारे यहाँ जो है छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड खुद आराम से हम सारा प्रोसेसिंग करा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है कि हम कैसे इसको करेंगे, तो हम तो सभी स्टूडेंट्स को ही कहते हैं कि भाई तुमको कोर्स करना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी है, तुम हमारे पास चले आओ, तुम्हारा सारा काम, सारा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, सारा कुछ हम तुमको समझाएंगे, समझा करके सारा प्रोसेसिंग तुम्हारा करा करके तुमको हम पेपर दे देंगे। तो सारी चीज़ें उसके बाद से फिर एक दो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है, जा करके एक जगह फॉर्म जमा करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जितनी भी सारा गाइडेंस हमारी तरफ से होगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारी इन सुविधा के दौरान के साथ साथ में आप एक बहुत ही स्मूथ तरीके से अपना कोर्स हमारे यहाँ से पूरा कर सकते हैं।
0: और सब कुछ अगर स्मूथली हो जाए तो क्या कहने, करियर की बात है भैया, समझने की जरूरत है, हाँ भटकने की जरूरत नहीं है। आर्केड बिजनेस कॉलेज 27 वर्षों से स्टूडेंट का भरोसा है बीसी और बीबीए के लिए। अगर जो आप चाहते हैं जानकारियां लेना या यहां से पढ़ना, तो हम कहेंगे फिर भी जाइए, देखिए, समझिए, परखिए, तब जुड़िए। हम कभी नहीं कहते कि जाइए और इस कार्यक्रम को सुन के एडमिशन ले लीजिए, ना ना ना, कभी नहीं, करियर की बातें हैं। और नंबर हम बताते हैं, फोन नंबर, बात कीजिए, समझदारी डेवलप कीजिए और तब जाकर कहीं हाँ जुड़िए। 7520800800 ये नंबर है, 7520800800। और ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से बीसी और बीबीए के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। स्थायी मान्यता का क्या मतलब होता है?
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
4: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
0: समझ गए ना? तो चलिए आगे बढ़ते। आशीष जी एक बात, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, चकाचौंध है, विज्ञापन है, सब कुछ है, कैसे डिसाइड करें, कैसे इस विज्ञापन के चक्कर में ना पड़े, क्या करना चाहिए वहां जाकर सिलेक्शन करते समय इंस्टीट्यूशन का, ये बता दीजिए आप।
1: देखिए एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है। अगर आपको कोई वैसा स्टूडेंट मिल जाए जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीज़ें मिली, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बीसीए किया या बीबीए किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता, परसेंटेज कितना है। और हम ये बात आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही, बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
0: एंड ऑफ द डे यानी कोर्स के खत्म होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण तो यही है ना कि रोजगार मिले, नौकरी मिले, इसीलिए बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने नब्ज को पकड़ा है। अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा व्यवहार मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा,

0: का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, और जब पढ़ाई अच्छी होगी तो कंपनीज आएंगे तो नौकरी भी मिलेगी। जी हाँ, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे टीचर्स के बारे में। हम आपसे पूछेंगे कि टीचर्स की क्या स्थिति है, टीचर्स कैसे होने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, जो लोगों ने देर से रेडियो खोला है, कि उड़ान कार्यक्रम चल रहा है और आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। बीसी और बीबीए के लिए अगर जानकारियां चाहिए तो डायल कीजिए 7520800800। हाँ, टीचर्स, व्हाट अबाउट टीचर्स?
1: देखिए, टीचर तो किसी भी संस्थान की आत्मा होती है। आपके यहाँ अगर अच्छे टीचर होंगे तभी वो एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा एक आपको नॉलेज दे सकते हैं। टीचर्स के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आप स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो वो हमेशा ही, अभी आप रिव्यूज़ देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइए, abcollege.org भी है और abcollege.in भी है। abcollege.org राजेंद्र नगर कैंपस का है, abcollege.in सगुनामुड़ कैंपस का है। आप वहां जाकर रिव्यूज़ देखिए या गूगल में डालकर रिव्यूज़ देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज का क्या स्थान है, उसकी क्या विश्वसनीयता छात्रों के बीच।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, टीचर्स किसी संस्थान की आत्मा होते हैं। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप उड़ान कार्यक्रम के इस अंक में आए और आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, खास करके चकाचौंध से बचकर कैसे सिलेक्शन करें आप संस्थान का, इंजीनियरिंग और बीसी और बीबीए में कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है, ये आपने बताया, बहुत अच्छा लगा और स्टूडेंट इसका जरूर लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम उड़ान चल रहा है, बस कुछ देर में आज का उड़ान खत्म होगा और अगले सप्ताह की तैयारी हम शुरू करेंगे। आप स्टूडेंट हमें फोन कर सकते हैं बीसी और बीबीए की पढ़ाई की जानकारी लेने के लिए, नंबर है 7520800 7520800800। आर्केड बिजनेस कॉलेज बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पटना में, पिछले 27 वर्षों से बीसी और बीबीए की पढ़ाई में लगा है, बहुत ही उम्दा संस्थान। आप चाहें तो 7520800800 पर बात करके जानकारियां ले सकते हैं। आज का उड़ान कार्यक्रम खत्म करने का अपने राजेश को दीजिए इजाजत, भरोसा रखिए सही और सटीक बातें लेकर आऊंगा। चलूं आज के दिन, करियर की बातें होती है इसलिए चलूं आज। हाँ, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, ये आकाशवाणी सासाराम है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में समाचार संध्या, हमारे दिल्ली केंद्र से रिले।

0: केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं आज।

0: छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
0: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट

0: नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
1: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5

0: उनसे हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
1: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कम्पिटिशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कम्पिटिशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
0: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
2: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 9 बजे हैं। लोकधारा कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए भरत सिंह भारती और साथियों के स्वर में ये बरसाती गीत।

भरत सिंह भारतीय और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे ये बरसाती गीत। और अब इन्हीं के स्वरों में हम सुन रहे हैं ये गंगा गीत।

आकाशवाणी सासाराम से इस समय आप सुन रहे हैं लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए प्रेम रंजन सिंह के स्वर में ये बरसाती गीत।

प्रेम रंजन सिंह के गए इस बरसाती लोकगीत के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल। आरंभ में लीजिए सुनिए भूपेंद्र सिंह की आवाज में नक्श लालपुरी की यह गजल।

महफिल कार्यक्रम में अब हम सुना रहे हैं अस्क अम्बलवी की ये गजल मिताली सिंह की आवाज़ में।

और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मेहदी हसन की आवाज़ में यह गज़ल। रचना है साहिल मामदानी की और संगीत ललित सेन का।

और इसी के साथ महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। अब हम थोड़ी देर में आपके लिए रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

पुरानी फिल्मी गीतों के चाहने वालों में से शायद ही कोई होगा जिसने ये गीत ना सुना हो। जिस फिल्म का ये गीत है उसके निर्माता, निर्देशक और नायक की हम बात करने वाले हैं। इस कलाकार को हम क्या कहें, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, कॉमेडियन, ये कलाकार था ही अलबेला। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भगवान दादा की।

भोली भाली सूरत मगर दिल के सच्चे थे भगवान दादा। पहलवानी के शौक के कारण सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते। भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1913 को हुआ। वास्तव में उनका नाम था भगवान आबाजी पालव, एक मिल मजदूर का बेटा। भगवान बचपन से ही फिल्मों के सपने देखा करता। हालात से मजबूर भगवान दादा को बहुत जल्द पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर वो मजदूरी करने लगे और करने लगे तकदीर के बदलने का इंतजार।

बतौर अभिनेता उनकी सबसे पहली फिल्म थी क्रिमिनल, जो एक साइलेंट यानी मूक फिल्म थी। 1938 में बनी फिल्म बहादुर किसान का उन्होंने सह निर्देशन किया। 1938 से 1947 तक भगवान दादा लो बजट की स्टंट और एक्शन फिल्में बनाते रहे, जो मजदूर वर्ग में काफी लोकप्रिय थीं। उस दौरान यानी 1941 में एक उल्लेखनीय तमिल फिल्म उन्होंने बनाई, वन मोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थवमणि देवी ने भूमिकाएं अदा की। 1942 में भगवान दादा ने फिल्म निर्माण कंपनी बनाई, जागृति पिक्चर्स। फिल्म निर्माता तो बन गए, मगर कमोबेश मुफलिसी का दौर अब भी जारी था।

मुंबई आकर भगवान दादा जब फिल्मों में काम पाने का प्रयास करने लगे तब मूक फिल्मों का जमाना था। किसी फिल्म निर्माण कंपनी में मजदूरी के साथ साथ वो छोटी छोटी भूमिकाएं भी करने लगे। अपने काम के साथ साथ भगवान दादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब गए।

नाम जी। और लॉटरी लगी, 1.25 लाख की नहीं बल्कि लाखों की। 1947 की बात है, जागृति पिक्चर्स के लिए चेंबूर्स में जागृति स्टूडियो का इंतजाम किया गया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने एक सामाजिक फिल्म के निर्माण की तैयारी की। नायक तो वो स्वयं थे ही, नायिका के रूप में उस समय की मशहूर अदाकारा गीता बाली को चुना गया। फिल्म के संगीत का जिम्मा उठाया भगवान दादा के जिगरी दोस्त सी रामचंद्र ने। रुपहले पर्दे पर फिल्म आई अलबेला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म की अपार सफलता ने भगवान दादा का जीवन बदल कर रख दिया। सी रामचंद्र के संगीत में बंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शोला कुछ ऐसे भड़का कि सुनने वालों के दिल आज तक धड़क रहे हैं।

फिल्म अलबेला के गीतों की एक और खास बात यह है कि जिन गीतों पर नृत्य किया है भगवान दादा ने, उनके साथ डांस करने वाले बाकी कलाकार असल में नर्तक नहीं थे बल्कि स्टंट्समैन थे, जो आमतौर पर भगवान दादा के साथ एक्शन फिल्मों में मारधाड़ वाले दृश्यों में भाग लेते थे। तो अलबेला के ये खासियत भरे बाकी गीत भी सुन लेते हैं।

अलबेला की सफलता का स्वाद चखने के बाद उसी टीम के साथ भगवान दादा ने 1953 में फिल्म बनाई झमेला, जिसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगवान दादा ने एक और फिल्म बनाई लाबेला, जिसके निर्माण में उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत झोंक दी, मगर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई। किस्मत ने उनसे फिर किनारा कर लिया।

आगे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भगवान दादा छोटी छोटी चरित्र भूमिकाओं में दिखने लगे। ये फिल्में थी झनक झनक पायल बाजे, चोरी चोरी और मिस बॉम्बे। गरीबी ने अपना रंग कुछ ऐसा बिखेरा कि जुहू बीच पर बना 25 कमरों वाला बंगला बेचना पड़ा। किसी जमाने में हफ्ते के सातों दिन वो अलग अलग मॉडल की कार से जाया करते, वो सातों गाड़ियां बिक गईं। भगवान दादा के सभी सहकारी उन्हें छोड़कर चले गए सिवाय सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और राजेंद्र कृष्ण के। 4 फरवरी 2002, दादर की एक चौल में बने दो कमरों के मकान में ये अलबेला कलाकार भगवान को प्यारा हो गया। कभी

0: अलबेले कलाकार भगवान दादा पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के साथ सारम केंद्र से बोल रहे हैं।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। रसरंग कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स।

अभी आप सुन रहे थे रुबना लैला को। अब हम आपको सुना रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में चंदा की डोली एल्बम से नुसरत बदर की ये रचना।

नुसरत फ़तेह अली खां की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये रचना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। ऐरा गैरा नथु खैरा, अब हम सुनवा रहे हैं इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज़ में समीर की ये रचना।

सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे ऐरा गैरा नथु खैरा एल्बम से ये रचना। और अब कार्यक्रम के अंत में हम सुना रहे हैं आपके बरस एल्बम से सुनीता राव की आवाज में श्याम अनुरागी की ये रचना। संगीत है आनंद राज आनंद का।

और इसी के साथ रसरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। श्रोताओं, चित्रपट तराने कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं सावन के कुछ सदाबहार नगमे। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज तीसरा दिन है। श्रोताओं, सावन सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक एहसास है जो दिल में दबी मोहब्बत और यादों को जगा देता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आसमान से बरसी है मोहब्बत की बूंदें, दिल झूम उठा है देखकर काली घटाएं, चलो आज फिर जी लेते हैं वो लम्हे लेकर सावन के गीतों की हसीन सदाएं। तो चलिए श्रोताओं, इस सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं हिंदी सिनेमा के उस सबसे सदाबहार नगमे से जो सावन आते ही हर जुबान पर गुनगुनाने लगता है। जिया मिलन फिल्म का वो गीत जो सुनील दत्त और नूतन जी पर फिल्माया गया है, जिसमें सुरों की सादगी और सावन की मस्ती दोनों है। आइए सुनते हैं।

अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ।

शोर नहीं बाबा, शोर। श्रोताओं, इस गाने की ये मासूमियत आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। वैसे सावन का ये मौसम बड़ा अजीब होता है। बाहर बारिश की बूंदें गिरती है तो अंदर दिल में बेईमानी जाग उठती है। मौसम ऐसा करवट बदलता है कि इंसान न चाहते हुए भी किसी की यादों में खो जाता है। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ में फिल्म लोफर का ये जादुई गीत, जो आज भी हर आशिक के दिल की धड़कन है।

सचमुच रफ़ी साहब की आवाज़ ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। श्रोता, सावन की बारिश जब रिमझिम बरसती है तो समा और भी रुमानी हो जाता है। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी की फिल्म मंजिल का वह गाना तो आपको याद ही होगा, जिसमें मुंबई की बारिश और किशोरदा की आवाज़ ने एक अलग ही जादू बिखेरा था। कहते हैं इस गाने को सुनते ही सूखी जमी पर भी मोहम्मत की फसल लहलहा उठती है। तो आइए डूब जाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की इस खूबसूरत जुगलबंदी में।

रिमझिम गिरते सावन ने तो वाकई मन में एक ऐसी आग लगा दी है जिसे सिर्फ संगीत ही बुझा सकता है। लेकिन श्रोताओं, सावन सिर्फ मिलन का मौसम नहीं होता, कभी कभी यह सावन अपनों से दूर बैठे दिल को बड़ा तड़पाता है। जब पिया पास न हो तो यह ठंडी हवाएं और कड़कती बिजली तीर की तरह चुभती है। फिल्म चांदनी का यह गाना

बीरा की उसी तड़प और सावन की पहली बारिश के एहसास को बयां करता है। सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की आवाज में सुनिए दिल को छू लेने वाला यह नगमा।

श्रोता, उम्मीद है आज के नगमों ने आपके दिलों के तारों को अवश्य छुआ होगा। और अब अंत में यही कहूँगा कि बरसते सावन में बस इतनी सी दुआ है, हर दिल में मोहब्बत रहे और हर चेहरा मुस्कुराता रहे। श्रोताओं, अब इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट तराने।

कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से और 8:20 से आप सुनेंगे पत्र आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी।

सुबह 8:45 पर प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे पटना केंद्र से, और सुबह 9:10 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका

सुबह 9:30 पर और रात्रि 9:30 पर हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10:05 से सुनिएगा हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर और सुबह 10:30 लोक माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम से लोकगीत और 10:45 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। और दिन के 11 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हमारी शाम की सभा में कल शाम 5:10 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित होगा विज्ञान एवं पर्यावरण। संध्या 6:00 आप सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत और 6:05 पर हम पटना केंद्र से रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन। संध्या 6:10 पर ग्रामीण कार्यक्रम होगा गांव घर, इसमें चर्चा होगी मित्रता कितनी जरूरी क्योंकि कल फ्रेंडशिप डे है और एक वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा भोजपुरी से क्यों दूर हो रही है नई पीढ़ी, वार्ताकार होंगे समरेश कुमार सिन्हा। संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रसारित होगा सांझ गीत और 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले का हलचल हम रिले करेंगे पटना केंद्र से। शाम 7:50 से आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। रात्रि 8:30 बजे हम प्रसारित करेंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण। रात्रि 9:45 बजे समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 बजे से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत और रात्रि 9:15 बजे गजलों का हमारा कार्यक्रम होगा महफिल। रात्रि 10:00 बजे से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स और रात्रि 10:30 बजे होगा कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी कल की सभा समाप्त होगी।

तो अभी आप सुन रहे थे कल के कार्यक्रमों के बारे में। यह आकाशवाणी सासाराम है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज

ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंति चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।